एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, सितंबर 1948 के भाद्रपद मास की तिथि 21, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के सितंबर महीने की 13 तारीख प्रातः के 5:58 होने वाले हैं। आरंभ होती है आज की सभा।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार।

0: ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशलक्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

अनूप जलोटा की आवाज में आप सुन रहे थे आज का श्री रामचरितमानस गान, और यह गया भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम समर्पण, जिसमें आज हम लेकर आए हैं चंद फिल्मों से ली गई भक्ति रचनाएं।

0: रुकिए जनाब, अंदर जाना अलाउड नहीं है।
1: अरे भाई मैं टाउन हॉल का केयरटेकर हूँ, अमनुल्ला खान नाम है मेरा, ये देखिए आई कार्ड।
0: जाइए।

कार्यक्रम अभिवरण पौने 7 बजे होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम, 7 बजे कार्यक्रम जोहार चाईबासा, 8 बजे समाचार प्रभात का प्रसारण होता है मॉर्निंग न्यूज 8:15 बजे, 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे, उसके बाद लोक संगीत कार्यक्रम माटी की महक में। और 9 बजे आज का विविधा कार्यक्रम होगा, 9:30 बजे रसरंजन, 10 बजे फिल्म संगीत, 10:30 बजे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर कार्यक्रम में विवरण, 5:05 पर जय भारती समर्पित है फौजी भाइयों के लिए।

5:30 बजे आप सुन सकते हैं खेती गृहस्थी कार्यक्रम। 6 बजे मुख्य समाचार होंगे। 6:02 पर क्षेत्रीय भाषा में हो अखरा।

6:30 बजे विविधा कार्यक्रम होगा, 7 बजे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले में आप आजकल का प्रसारण, 7:15 बजे से आपकी पसंद कार्यक्रम, 7:30 बजे से 9:15 बजे तक महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के अंतर्गत भारत और खेला जाने वाला फाइनल क्रिकेट मैच, और 8 बजे फरमाइशी गीत भी होंगे रजनीगंधा कार्यक्रम में। 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे इंग्लिश न्यूज, 9:15 बजे क्रिकेट मैच का प्रसारण जारी रहेगा, 10 बजे महफिल कार्यक्रम। साढ़े 10 बजे सुरों के रंग, 11 बजे हिंदी समाचार, 11:05 पर इंग्लिश न्यूज, उसके बाद क्रिकेट मैच का प्रसारण समापन तक, और सभा संपन्न होगी रात्रि 12:15 बजे। तो ये था आज का कार्यक्रम अभिवरण।

जोहार चाय बासा, पेश खिदमत है ये कार्यक्रम। आगाज फिल्म तोहफा के शीर्षक गीत से, आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की। प्यार का तोहफा लाया हूँ तेरे लिए, दिल सजाया हूँ चांदनी की चादर ओढ़े तेरी राहों में आया हूँ। तेरी हंसी में फूल खिले, तेरी आंखों में शाम ढली, तेरे नाम की धुन बजती है, सांसों की हर सरगम में मिली।

तेरी हंसी में जैसे कोई मीठी धुन उतर आई, तेरी आँखों ने मेरी दुनिया में नई सुबह सजाई।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, अब आइए सुनते हैं सुखविंदर सिंह और साथियों को। फिल्म का नाम है स्लमडॉग मिलियनेयर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444999 या 1800345406 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप सुन रहे थे जज्बाए वतन परस्ती से लबरेज चंद नगमे।

0: सिलसिला। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाजों में।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

चिलचिलाती धूप से लौटकर अभी बैठा ही था कि खिड़की पर किसी ने उंगलियों से दस्तक दी, बूंदों की छमछम छमछम, जैसे कोई बिछड़ा अपना चुपके से लौट आया हो। बादल आज सिर्फ बादल नहीं थे, वे आकाश की आँखों से उतरे हुए खत थे, जिन्हें बारिश पढ़ पढ़ कर मेरे आंगन में रख रही थी। एक एक बूंद में कोई पुराना चेहरा चमक रहा था। मैं और मेरी तन्हाई और बूंदों की वह छमछम, शायद यही तो जिंदगी है, बरसना, भीगना।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

नहीं आती तो उनकी याद बरसों नहीं आती, नहीं आती तो उनकी याद बरसों नहीं आती, और जब याद आते हैं अक्सर याद आते हैं। शामीन, अब आइए सुनते हैं फिल्म रूप तेरा मस्ताना का गाना। युगल स्वर हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: कुछ पन्ने धूप में रखे हैं, कुछ को तह करके दिल की दराज में रखना है। हर बात को लफ्जों की चौकट तक लाना ज़रूरी नहीं, कुछ खामोशियों को खामोश ही रहने देना है।
1: तू हंस पड़ी या फूल झड़ी।

कार्यक्रम जोहार चाईवासा में अगली पेशकश फिल्म बंदिश से। तन्हाई कोई खाली कमरा नहीं, वो भीतर जलता हुआ धीमा सा दिया है, और जब वो दिया छनकता है तो कंगना बोल उठता है। सुनते हैं बंदिश से, बोले मेरा कंगना।

कार्यक्रम जो है चाई भाषा में, ये आ गई आखिरी पेशकश। कुछ निशान बस मेरे नाम हैं, कुछ परदेश ऐसे होते हैं जो दिल की दराज में ही रह जाते हैं। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म राजा हिंदुस्तानी का नगमा।

ध्वनि तरंगों की ताल पर अभी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र। अब आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से आप सुन सकते हैं समाचार प्रभात प्रातः ठीक 8 बजे।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में

0: बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document...
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें, तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मंत्री ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
4: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजिश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आर्यना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रैविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
0: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्य के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंस मॉर्निंग न्यूज। We'll be right back. Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. BRICS leaders condemn 2025 Pahalgam terror attack in Jammu and Kashmir, call for zero tolerance towards terrorism.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन। नई दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसम्मति से मंजूर। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का आह्वान। आकांक्षी जिला गिरिडीह के विकास की हुई उच्च स्तरीय समीक्षा। केंद्रीय प्रभारी सुनील बर्नवाल ने सुधार के दिए निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध पत्थर खनन मामले में कार्रवाई। चुट्टूपालू और ओरमांझी में 8 स्टोन क्रशर सील, 11 यूनिट ध्वस्त। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव आज। 21 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए होगा मतदान। और राज्य में अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान। आज बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद के विरुद्ध कतई बर्दाश्त न करने वाली नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है, चाहे उसकी वजह कुछ भी क्यों न हो और उन्हें अंजाम देने वाला कोई भी हो।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जिला नोडल प्रभारी सुनील बर्नवाल ने आकांक्षी जिला गिरिडीह में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। समाहरणालय में आयोजित बैठक में डीसी रामनिवास यादव, उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी समेत सभी अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए वरिष्ठ अधिकारी सुनील बर्नवाल ने कहा कि गिरिडीह में काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह 117वें नंबर पर था, जो घटकर 77वें नंबर पर आ गया है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह को 25वें नंबर पर आने की जरूरत है।
2: हमें 25 के अंदर लाना कि हमारा ये इंडिकेटर्स पीछे चल रहा है, इसमें मेहनत करने की जरूरत है। एंटी नेटल चेकअप केवल अवेयरनेस क्रिएट करने से ही काफी इंप्रूवमेंट। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाना, स्कूलों में ट्रांजिशन रेट बढ़ाना, इसमें बहुत रिसोर्स नहीं चाहिए बट एफर्ट चाहिए। हमारे पदाधिकारियों को गांव-गांव विजिट करना चाहिए, लोग इसके महत्व को समझें और इसका लाभ लें।
0: पूर्व मध्य रेल का महाप्रबंधक डिम्पी गर्ग ने धनबाद मंडल के विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने पतरातु स्टेशन पर यात्री सुविधा, सुरक्षा, संरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया, साथ ही एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गर्ग ने बताया कि हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन के लिए कई प्रोजेक्ट सैंक्शन हैं।
3: पूरे सेक्शन का जायजा ले रहा हूँ, कहाँ पे हमें क्या इश्यूज हैं और कैसे हम अपना मूवमेंट बेटर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लोडिंग बढ़ा सकते हैं। कई सारे प्रोजेक्ट सैंक्शनड हैं, हम लोग धीमे धीमे करके कंप्लीट करेंगे। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन में ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट एक साल में हम लोग तेजी पकड़ेंगे इन प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में और लास्ट माइल प्रोजेक्ट्स उनको सबसे पहले उनको कंप्लीट करेंगे और साथ में बाकी प्रोजेक्ट्स को भी टेकअप करेंगे।
0: उच्च न्यायालय के आदेश पर चुट्टूपालू और ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और स्टोन क्रशिंग के खिलाफ संयुक्त जांच दल ने 19 इकाइयों पर कार्रवाई की। जांच में सीटीओ लैब्स मिलने पर 8 क्रशर सील किए गए, जबकि अवैध रूप से संचालित 11 क्रशर को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और नियमों तथा पर्यावरण मानकों की नियमित निगरानी की जा रही है।
4: हाईकोर्ट का निर्देश है, इस एरिया में बहुत माइंस चल रहा है, तो उनको आदेश दिया गया कि आप एक टीम बना के इसका जांच कराइए, तो उसी के अंतर्गत ये जांच हो रहा है। जिनका वैध है, वैध मतलब कि जिनके पास लाइसेंस है और उनका कोई कागज फेल हो गया है, तो वो फिर जमा करेंगे, वो विभागीय प्रक्रिया है।
0: रांची जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक हुई, जिसमें नोटिस वितरण और सुनवाई की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में डीसी ने कहा कि नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सुनवाई 14 अक्टूबर 2026 तक होगी और राजनीतिक दलों से मतदाताओं तक सूचना पहुंचाने, दस्तावेज के साथ सुनवाई में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करने और BLA 2 के जरिए BLO को सहयोग करने का आग्रह किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची और इंस्टाग्राम पेज यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2026-27 के लिए आज चुनाव होगा। 21 कार्यकारिणी सदस्यों और 3 प्रमंडलीय क्षेत्रीय उपाध्यक्षों के लिए निर्वाचन के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रांची स्थित मारवाड़ी भवन में मतदान होगा। मतदान समापन के बाद मतों की गिनती कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रभारी पवन शर्मा ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
5: सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इस हॉल के अंदर जो व्यक्ति आ जाएंगे उनको वोट देने के अधिकारी रहेंगे। जो इस हॉल के अंदर आएंगे उन्हीं को। दूसरी बात, 40 काउंटर हमने बनाए हैं। चार चार वोटरों के लिए एक एक रूम तैयार हमने किया है और उसमें 4 केबिन बने हुए हैं। हर केबिन में एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर और एक बैलेट बॉक्स डालने के लिए बक्सा रखा हुआ है।
0: लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के मासियातु गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कल स्कूल में छुट्टी के बाद दोनों बच्चियां गांव के पुलिया के पास नहाने गई थीं। इस दौरान गहरे गड्ढे में डूबने से दोनों की मौत हो गई। धनबाद के गोमो स्टेशन पर RPF ने वन्यकारी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन WILP के तहत दून एक्सप्रेस के जनरल कोच से 48 जिंदा कछुए बरामद किए गए हैं। कछुओं को 3 थैले और एक बैग में भरकर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया था। तलाशी के दौरान कछुओं के मिलने के बाद RPF ने सभी को जब्त कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। और अब मौसम। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के प्रभाव से झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 16 सितंबर तक राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। रांची के ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय पावर ग्रिड अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2026 का सफल समापन हुआ। प्रतियोगिता में पावर ग्रिड के विभिन्न क्षेत्रों की टीमों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों में

0: खेल भावना और टीम वर्क को बढ़ावा देना था। मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक नितिन कुमार श्रीवास्तव ने विजेता और उपविजेता टीमों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। पुरुष टीम वर्ग में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और महिला टीम वर्ग में कॉरपोरेट सेंटर विजेता बने। वहीं पुरुष एकल में हिमांशु और महिला एकल में प्रोनामी बोरा ने खिताब जीता। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लिखता है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर लगी मुहर, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अगले वर्ष अप्रैल मई में पंचायत चुनाव, चल रही तैयारियों में जिलों में लिया जा रहा है जायजा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राधास्वामी संगठन के खिलाफ FIR दर्ज, 12 नामजद। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड चैंबर चुनाव जारी, तैयारियां पूरी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन, नई दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसम्मति से मंजूर, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का आह्वान। आकांक्षी जिला गिरिडीह के विकास की हुई उच्च स्तरीय समीक्षा, केंद्रीय प्रभारी सुनील बर्णवाल ने सुधार के दिए निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध पत्थर खनन मामले में कार्रवाई, चुटुपालू और ओरमांझी में 8 स्टोन क्रशर सील, 11 यूनिट ध्वस्त। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव आज, 21 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए होगा मतदान। और राज्य में अगले 4 दिन तक मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान, आज बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मेरी बिटिया की आंखों की रोशनी छोटी सी उम्र में ही कमजोर हो गई है, रात में उसे ठीक से दिखाई ही नहीं देता।
2: कहीं तुम्हारी बेटी में विटामिन ए की कमी तो नहीं हो गई है?
1: विटामिन ए वो क्या होता है बहन?
2: विटामिन ए शरीर के विकास और खासकर आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी बिटिया की आयु क्या है?
1: 4 वर्ष।
2: अपनी बिटिया को विटामिन ए की खुराक पिलाओ, ये 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतर पर दी जानी चाहिए।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: तुम्हारी माता जी का स्वास्थ्य अब कैसा है?
5: क्या बताऊं भाई, कल माता जी के स्वास्थ्य की जांच के लिए उन्हें गांव के सरकारी अस्पताल में ले गया था, पर वहां तो डॉक्टरों ने उनकी ठीक से जांच ही नहीं की। अब आम आदमी कहां फरियाद करे?
4: अरे डायल करो 104 नंबर।
5: वो क्या है भाई?
4: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन, जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों से संबंधित शिकायत, जैसे अस्पताल में डॉक्टर का न होना, दवाई का न होना या अन्य कोई गड़बड़ी की जानकारी दर्ज कराई जा सकती है।
6: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

हवाई भाषा केंद्र है एफएम के 101.7 MHz पर। अब आइए सुनते हैं लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम माटी की महक, जिसमें आज की कलाकार हैं फूलमती पाटपिंगुआ और साथी।

माटी की महक लोक संगीत के इस दैनिक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे फूलमती पाटपिंगुआ और साथियों से हो लोकगीत। यह आकाशवाणी चाईवासा है, 9 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं आज का विविधा कार्यक्रम।

0: नमस्कार, सुप्रभात। आज की विविधा में मैं हूं आपके साथ अंजू रानी। बरसात का मौसम है, गर्म पानी पिए, ताजा भोजन खाएं, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। चलिए आज हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं। आज का दिन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर से 17 सितंबर 1948 के बीच हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया एक सैन्य अभियान था। इसे पुलिस एक्शन भी कहा जाता है। ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेजर जनरल जे एन चौधरी ने किया था। हैदराबाद के सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने भारत से अलग एक स्वतंत्र देश बने रहने का फैसला किया था। वहाँ के राजा का संगठन द्वारा जनता पर अत्याचार किए जा रहे थे, इसलिए ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। इस सैन्य कार्रवाई के कारण नाम ऑपरेशन पोलो इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में पोलो के सबसे ज्यादा 17 मैदान थे। 5 दिन के संघर्ष के बाद 17 सितंबर 1948 को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम, हैदराबाद रियासत आधिकारिक रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बन गई। तो चलिए हमने जाना ऑपरेशन पोलो के बारे में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, भेंटवार्ता सुनेंगे। मानव तस्करी किस प्रकार से की जाती है और इससे हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को किस तरह से बचाया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भेंटवार्ता सुनेंगे संजय बिरुवा जी को। चलिए, खास मेहमान को आमंत्रित किया है, आइए जाने हम उन्हीं से उनका परिचय। नमस्कार।
1: जोहार। नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार बिरुवा है। मैं किशोर न्याय परिषद के सदस्य के रूप में जिले में कार्यरत हूँ। इस क्षेत्र में काम करते हुए लगभग मेरा 10 वर्ष हो चुका है।
0: मानव तस्करी, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे समझाएंगे?
1: किसी भी व्यक्ति का
0: जी,
1: किसी भी व्यक्ति को बहला फुसला के, प्रलोभन दे करके उसका स्थान परिवर्तन को हम मानव तस्करी के रूप में ले सकते हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे कि बोलचाल की भाषा में, जैसे अंतर्राज्यीय मानव तस्कर जो होते हैं वो बाहर से आ करके ऐसे परिवार को चिन्हित करते हैं जो बहुत कमजोर हैं, ऐसे परिवार को चिन्हित करके बहला फुसला करके इनको इस राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है।
0: अच्छा।
1: चोरी छुपे।
0: अच्छा, चोरी छुपे।
1: हाँ, चोरी छुपे ले जाया जाता है, किसी को पता नहीं चलने। इसको मानव तस्करी को हम बोल सकते हैं कि मानव तस्करी है।
0: इस तरह से किया जाता है।
1: अच्छा। और मानव तस्कर कौन लोग होते हैं? मानव तस्कर वे होते हैं, वो अपने ही परिवार के लोग ही होते हैं, है ना?
0: अच्छा अच्छा, जी जी।
1: अपने ही परिवार के लोग होते हैं, इसलिए उनको ज्यादा विश्वास रहता है कि मेरे परिवार के लोग हमको जहाँ भी भेज रहे हैं सही जगह भेज रहे हैं। हाँ,
0: क्योंकि उनको पता नहीं चलता है किस गलत सोच से वो लेके जा रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है क्योंकि वो परिवार वाले ही होते हैं। जी जी जी,
1: परिवार कहे कि जो मानव तस्कर जो रहता है वो मतलब ऐसे आदमी को गांव में, ऐसे आदमी को
0: चिन्हित
1: करके रखे रहता है कि वो गांव का आदमी ही बहला फुसला करके
0: जी जी जी
1: फलाना दलाल के यहाँ पहुंचा देता है।
0: तो सर, एक बात है, जैसे दूसरा जगह ले जाया जाता है, उन्हें तो कुछ जरूर लाभ होता होगा तभी वो करते हैं। जो मानव तस्कर होते हैं, कुछ लाभ होता होगा उनको, बिना लाभ के तो वो नहीं करेंगे। उनका उनका विचारधारा सही नहीं होता है, उन्हें या तो पैसों का लोभ होता है, कुछ तो कारण होगा।
1: हाँ, पैसा का ही लोभ होता है ना।
0: पैसा का ही
1: इसमें होता। जो भी मानव तस्कर है बाहरी जो है वो मैंने स्थानीय दलाल को कमीशन के रूप में पैसा देते हैं।
0: पैसा देते हैं वो पैसे के लोभ में काम करते हैं।
1: जो ऐसे जो मानव तस्कर जो किए जाते हैं, जो मानव तस्कर को शिकार हुए हैं, उनको मैंने मेट्रो सिटी में, दिल्ली में, बॉम्बे में, गुजरात में, चेन्नई में, ऐसे जगह में ले जाकर के इनको मैंने बेच दिया जाता है, या तो फिर बंधुआ मजदूर के रूप में काम करवाया जाता है।
0: अच्छा, आप जहाँ काम कर रहे हैं सर, आप जिस पद में हैं, ये मानव तस्कर लोगों के लिए या इन बच्चों को जो भी तस्कर हो जाते हैं, जो भी ले जाया जाता है गाँव के बच्चों को, बड़ों को, तो उनको आप लोग किस तरह से बचाते हैं, कैसे आप लोग उनके लिए काम करते हैं?
1: हाँ, मेरा पद तो चूंकि किशोर न्याय परिषद का है, जिसमें हम लोग केस देखते हैं जो विधि का उल्लंघित बच्चों का केस मैं देख रहा हूँ।
0: अच्छा।
1: और ऐसे जो मानव तस्कर का जो है उसका जो CNCP चाइल्ड नीड एंड केयर प्रोटेक्शन के अंतर्गत में ये लोग आते हैं, ऐसे केस को बाल कल्याण समिति देखते हैं।
0: अच्छा।
1: मैं भी बाल कल्याण समिति का पहले सदस्य रह चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: उसमें दो टर्म में 6 साल उसमें मैं काम कर चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए उसको रोकने के लिए पूरा जिले में, पूरा राष्ट्र में,
0: अच्छा,
1: विंग बना हुआ है, जैसे कि पूरा टीम बनी हुई है।
0: अच्छा।
1: यहाँ पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के रूप में उसका यूनिट है, उसमें सारे लोग, बहुत लोग काम कर रहे हैं उसमें।
0: अच्छा।
1: दो सोशल वर्कर हैं,
0: ठीक है,
1: जो गांव-गांव घूम करके अवेयरनेस करते हैं।
0: अच्छा।
1: और ऐसे जहाँ से बच्चे ट्रैफिकिंग हुए हैं या कहीं, तो ऐसे बच्चों को ला करके बाल कल्याण समिति में रिपोर्टिंग करते हैं।
0: अच्छा।
1: उसके आधार पर फिर हम लोग बच्चे को ट्रेस करते हैं कि कौन गाँव का बच्चा कहाँ से ट्रैफिकिंग हुआ है। पोर्टल में ऐसे बच्चों को हम लोग डाल देते हैं ताकि उसका ट्रेस हो जाए बच्चे को।
0: अच्छा।
1: ऐसे जितने बहुत बच्चे हमारे क्षेत्र से ट्रैफिकिंग हुए हैं, ऐसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को बाल कल्याण समिति के द्वारा वापस पुनः परिवार में पुनर्स्थापित किया गया है,
0: फिर ला करके आप लोग परिवार को आप सौंप देते हैं
1: और इनका पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित किए हैं।
0: अच्छा। अच्छा सर, ये जब मिल जाते हैं बच्चे तो घर तक आप पहुँचा देते हैं, उनका देख रेख आप करते हैं, कुछ कानून भी तो बना होगा सर?
1: हाँ, कानून बना है ना, इसमें कानून बना है, काम कर रहा है। जो न्याय अधिनियम 2015 के तहत जो कानून बना है,
0: अच्छा,
1: उसमें बाल कल्याण समिति है जो जुडिशरी फर्स्ट क्लास जुडिशरी मजिस्ट्रेट का पावर लेकर के हैं ये।
0: अच्छा।
1: ऐसे बच्चों का निदान वो करते हैं।
0: अच्छा।
1: और इसमें चाइल्ड लाइन,
0: अच्छा,
1: चाइल्ड लाइन में 1099।
0: अच्छा।
1: 1099 को हम लोग,
0: ठीक है,
1: कुछ भी ऐसा आपको सूचना मिलता है या आपके जानकारी में अगर है कि यहाँ से बच्चा मिसिंग है, यहाँ से बच्चा का ट्रैफिकिंग होने वाला है, तो आप निसंकोच 1099 पे कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं, या तो आप स्थानीय थाना को दे सकते हैं। अगर आपको थाना जाने में आपको थोड़ा संकोच लगता है तो आप निसंकोच 1099 पे कॉल कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरी पहचान गोपनीय रखा जाए, तो निश्चिंत रहिए कि आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। सभी से अपील करना चाहूंगा इस नंबर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, आपके जानकारी में अगर ऐसा कुछ भी केस बच्चों से संबंधित या किस संबंधित आपको अगर जानकारी में मिलती है, तो आप निसंकोच 1099 का उपयोग करें, फोन करें, जानकारी दें, ताकि हम मानव तस्करी को रोक सके।
0: जी जी, आपने जिस तरह से विस्तार रूप से बताया सर, मेरे सवाल करने से पहले आपने सारे जवाब दे दिए कि मैं ये जानना चाह रही थी। मेरे मन में एक सवाल था कि अगर किसी को कहीं से कोई सूचना मिलती है किसी बच्चे की खो जाने की या अपने के किसी खो जाने की, तो हम किस तरह से आप तक बात पहुँचाएंगे या आप तक किस तरह से बात रखेंगे, ये मेरा सवाल था, लेकिन आपने उसका जवाब भी दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल आगे और है, वर्षों से सर कहीं कहीं बच्चे रह जाते हैं, छुप जाते हैं, भूल जाते हैं वो परिवार कहाँ से थे, नाम तक पता होता है उनको, उन बच्चों की पहचान आप लोग कैसे करते हैं, कैसे घर तक पहुँचाते हैं?
1: उससे बच्चों को भारत में,
0: जी,
1: पूरे भारत में बच्चे कहीं पर भी है, अगर बच्चे का नाम पता से थोड़ा भी बच्चे का, तो वो लोग बच्चे को
0: जो मेल खाता हो
1: संबंधित जिले को मैंने भेज दिया जाता है।
0: अच्छा,
1: बच्चे को,
0: अच्छा अच्छा,
1: संबंधित जिले में बच्चे आ जाने के बाद में हम लोग एक बच्चे का, मतलब बहुत पहले बच्ची खोई थी, नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत बचपन में खोई थी बच्ची और हम लोग के पास में आई थी, और बच्ची का हम लोगों ने नाम जोंको, जोंको उसका सरनेम था, तो सरनेम के आधार पर हम लोग गाँव में, हम लोग मैंने जोंको लोग कहाँ कहाँ रहते हैं।
0: आप लोगों के पास सिर्फ एक था जोंको?
1: हाँ,
0: जोंको, उस आधार पर आपने
1: सरनेम के आधार पर,
0: सरनेम के आधार पर आपने उनको ढूंढा।
1: बाद में मीडिया का सहारा तो लेते ही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी, मीडिया का सहारा लिए
0: जी जी जी,
1: तो बच्चे का फैमिली ट्रेस आउट हो गया।
0: अच्छा अच्छा, इस तरह से आप लोग कोई भी बच्चे अगर कहीं वर्षों से खोए हुए हैं और अपने परिवार को भूल चुके हैं कि मैं कहाँ से हूँ, किस दिशा, वो नहीं जान पाते हैं बच्चे,
1: इसमें हम लोग का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिंहभूम
0: जी जी जी,
1: हर ब्लॉक में के तहत PLB पैरा लीगल वॉलंटियर काम कर रहे हैं।
0: अच्छा,
1: तो जितना भी इंटीरियर अगर है बच्चा, तो हम लोग इन लोगों का सहयोग लेते हैं। इन सहयोग लेकर के ऐसे बच्चों का हम लोग फैमिली ट्रेस आउट करवाते हैं। इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है।
0: अच्छी बात है सर। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मान लिया ये तो ट्रैफिकिंग वाली बात हो गई, तस्करी की बात हो गई, कभी कभी कुछ बच्चे भटक जाते हैं, कैसे वो स्वेच्छा से कहीं जा रहे हैं या फिर कभी कभी बच्चे नाराज होकर के कहीं निकल जाते हैं, ऐसी स्थिति में बच्चे भटक जाते हैं, को आपकी टीम तक कैसे पहुंचाया जाता है?
1: कोई भी बच्चे के लिए जो आपको लगता है कि बच्चा देख रेख और संरक्षण वाले बच्चे आपको लग रहे हैं कि मैंने ये बच्चा मिसिंग है, या फिर बच्चा मिसिंग होने की सूचना आपको अगर थाना में, सर्वप्रथम तो थाना में आपको देना चाहिए।
0: जी जी जी,
1: अगर थाना में अगर नहीं लेते हैं तो आप 1098 का भी उपयोग कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: हर केस में आप 1098 का उपयोग कर सकते हैं, इसकी सूचना दे सकते हैं,
0: क्योंकि लग ही जाता है, क्योंकि बच्चा अगर भटक गया है, कोई भी बच्चा हो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पहचान हो जाती है कि ये शायद ये बच्चा भटक गया है या फिर कहीं भागा हुआ है, कुछ भी हो, जैसे भी, तो मालूम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो हमारे लोग हैं, जो जनता है, उनका भी बहुत बड़ा इसमें हाथ होना चाहिए कि वो तुरंत से जो आपने नंबर बताया तो उस पर वो डायल करे या फिर थाना को सूचना दे, है ना।
1: 1098 का तो निरंतर हम लोग प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, गांव-गांव में PLB के द्वारा भी किया जा रहा है, चाइल्ड लाइन के द्वारा भी किया जा रहा है, बाल कल्याण समिति के द्वारा भी किया जा रहा है। निरंतर हम लोग इस नंबर को हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्कूल में अवेयरनेस करवाया गया है। अभी आप कोई भी स्कूल में जाकर के पूछिएगा तो 1098 मुंह में रखा हुआ है, तुरंत बच्चे लोग बोल देंगे। मैंने ये तो अवेयरनेस हम लोग किए हैं, लेकिन इस नंबर का उपयोग हमको नहीं लगता है कि मैंने जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं लोग। मैंने संकोच करते हैं इस नंबर को उपयोग करने के लिए कि मतलब क्या किसी के बारे में जानकारी देंगे तो हम फंस ना जाए, लेकिन हम निश्चित करते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, आपकी सारी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
0: निसंकोच बताना चाहिए, अगर ऐसी कोई भी बात हो तो बता देना चाहिए, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। सर एक और बात है, जैसे ये तो हो गई तस्करी की बात, जो कहीं से आप खोज निकालते हैं या फिर सहायता करते हैं, बच्चों की अपनी मानसिकता होती है, गलती कर बैठते हैं, उन बच्चों को क्या आप जो बाल कल्याण समिति के द्वारा उनको भी संरक्षित किया जाता है?
1: हाँ, एकदम किया जाता है। अच्छा। ऐसे मैंने काउंसलर हमारे पास में है।
0: अच्छा,
1: बाल कल्याण समिति के पास में काउंसलर है, DCP यूनिट में काउंसलर है।
0: अच्छा,
1: और हमारे किशोर न्याय परिषद में भी काउंसलर है।
0: अच्छा,
1: इनके द्वारा काउंसलिंग दिन प्रतिदिन किया जाता है।
0: अच्छा,
1: दिन प्रतिदिन। इसकी जानकारी आप बाल कल्याण समिति में आकर के दे सकते हैं।
0: अच्छा,
1: बाल कल्याण समिति का ऑफिस है हॉस्पिटल कंपाउंड में, आई हॉस्पिटल के बगल वाला बिल्डिंग में, वहाँ पर अभी तो फिलहाल चल रहा है।
0: जी जी जी,
1: वहाँ पर आकर के आप शरीर भी दे सकते हैं, जा करके वहाँ पर आवेदन देने से तुरंत बच्चे को रेस्क्यू करके पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का पूरा काम किया जाता है।
0: उनकी जो भी है काउंसलिंग करके उनको सुधार आ जाता है। पढ़ाने लिखाने की भी व्यवस्था है?
1: पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था तो है ही, जैसे कि हमारे पास में कोई केस आता है तो ऐसे बच्चों को हम लोग, जो बच्चे अगर मान लिया स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनको पुनः वही स्कूल में हम लोग एडमिशन
0: अच्छा
1: के लिए लेटर बढ़ा देते हैं स्कूल में। और अगर बच्चा, अगर मैंने ड्रॉप आउट है, बच्चा नहीं पढ़ा है, तो उसको, ऐसे बच्चों को बालिका के लिए हम लोग भेजते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकित करवा आते हैं। बच्चे बॉयज के लिए तो फिर इधर छोटा नागरा में कुछ है, एकलव्य विद्यालय वगैरह।
0: अच्छा,
1: वो सब में हम लोग
0: भेज दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र के बच्चे।
1: हाँ, किसी भी क्षेत्र के बच्चे को, मैंने जिले के अंदर का होना,
0: जिले के अंदर का होना चाहिए।
1: जिले में काम कर रहे हैं
0: जी जी जी, आप जिले में कार्य कर रहे हैं तो उस जिले का,
1: जी
0: जी जी।
1: अगर मान लिया दूसरा जिले का बच्चा हमारे पास आ गया तो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, संबंधित जिले को ट्रांसफर कर देते हैं।
0: जो जिस जिले का बच्चा है, बालक या बालिका है, तो उस जिले को सौंप दिया जाता है। अच्छा जी, आप जिले स्तर पर कार्य कर रहे हैं।
1: जिला स्तर पर
0: जी जी। जागरूकता फैलाने के लिए सर आप लोग क्या क्या करते हैं? जैसे
1: जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग जितने भी स्कूल हैं, मानव तस्कर को रोकने के लिए 109 एक्ट का मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करे। पहले भी मैंने बोला कि जैसे आपको थोड़ा भी भनक लगता है, थोड़ा भी जानकारी अगर आपके पास में है कि फलाना का तस्करी हो सकता है, इसके पीछे में कुछ लोग लगे हुए हैं, या तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने माँ पिताजी भी चाहते हैं कि मतलब बच्चा काम करने जाए, बच्चा को कुछ पैसे लेकर के
0: बेच। अच्छा, ऐसा भी केस, ऐसा भी मिल जाता है,
1: ऐसा भी केस आ जाता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो इसको थोड़ा सा जानकारी, जैसे जानकारी मिलता है तुरंत 109 का उपयोग करके इसकी सूचना को देखे, ताकि हम लोग मानव तस्करी को रोक सके। और ग्रामीण मुंडा को भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ग्रामीण मुंडा अगर कोई मिसिंग है गांव से, तो इसकी जानकारी मुंडा के द्वारा भी
0: मिलना चाहिए, उनकी भी जी जी
1: उनके भी जिम्मेदारी
0: जिम्मेदारी बनती है जी,
1: उनके भी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मुंडा मानके की है कि मतलब इससे भी बच्चे अगर मान लिया मिसिंग है, तो इसकी जानकारी लिखित में ना सही, लेकिन आप 109 का उपयोग करके
0: करके भी दे सकते हैं,
1: या तो उपयोग करवा करके आप,
0: अगर मन में संकोच या डर है कि आप स्वयं नहीं करना चाहते हैं, तो किसी के द्वारा भी आप सूचित करें। जी जी सर, जो गलती से चले गए या किसी के द्वारा ले जाया गया वो अलग चीज है। कभी कभी जैसे आपने कहा कि कभी कभी माँ बाप भी स्वेच्छा से बेच देते हैं, या कि कुछ पैसा कमाए, मेरा बच्चा वहाँ चला जाए, तो ऐसे में कैसे समझाना चाहिए माता पिता को कि अपने बच्चों को इस तरह से ना भटका या ना लेके जाए अपने राज्य से बाहर? या
1: देखिए, सरकार का इतना सुंदर व्यवस्था
0: जी,
1: आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है।
0: बिल्कुल सर। जी जी,
1: आवासीय विद्यालय है
0: जी, बिल्कुल जी,
1: गांधी बालिका विद्यालय
0: जी,
1: यहाँ पर पूरी व्यवस्था के तहत बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है
0: जी। रहना, खाना,
1: खाना, ड्रेस हुआ, किताब हुआ, कॉपी हुआ, सारा चीज, यहाँ तक कि स्टाइपन भी बच्चों को वहाँ पर
0: दिया जा रहा है जी। अच्छा,
1: अब इतने सुंदर व्यवस्था का आप फायदा नहीं उठा रहे हैं।
0: बिल्कुल, जो अपने बच्चे हैं आप उनको कहीं और लेके जा रहे हैं ताकि वो कमाए, उससे अच्छा है कि जैसे उनको शिक्षा दी जाए।
1: शिक्षा सबसे बड़ा चीज है, शिक्षा आप जितना आप शिक्षा से बच्चों को जोड़ेंगे, ऐसी स्वतः खत्म हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी,
1: के कारण ही ये सब हो रहा है
0: जी जी।
1: शिक्षा से जुड़ेंगे लोग, इसीलिए सरकार का पूरी कोशिश है कि मैंने एक भी ड्रॉप आउट ना रहे, और हमारे जिले में अच्छा काम भी किया है, बट कम ही अभी तो ऐसा है, कस्तूरबा गांधी आने के बाद में तो मैंने सब भी शिक्षा से जुड़ रहे हैं।
0: तो यहाँ पर सर सिर्फ बच्चों की या छोटों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हम अभिभावकों से भी गलती हो जाती है, तो उनको भी जागरूकता की जरूरत है, उनको भी सहयोग।
1: यहाँ पर जो मानव तस्करी के जो मिले रहते हैं, हम पहले ही बोले हैं कि मैंने अपने ही सगे संबंधित लोग ही होते हैं।
0: बिल्कुल सर जी, पहले ही आपने कहा जी जी जी,
1: संबंधित लोग ही होते हैं, ताकि मेन तस्कर जो है, मेन दलाल जो है, पहले तो खुद आकर के गांव-गांव घूम करके बच्चों लोग को बाला फुसला करके, ग्रामीणों को बाला फुसला के ले जाते थे, तो उसमें तो तुरंत पहचान हो जाता था
0: कि
1: बाहरी है, पकड़ाने का डर रहता था। अब वो क्या करता है, गांव के लोग को ही पकड़ करके ये सब काम करवाया जा रहा है,
0: इसमें पता ही नहीं चल पाता,
1: पता ही नहीं चल पाता है कि कौन क्या है। तो घर घर का आदमी रहेगा तो आदमी विश्वास करेगा ही भाई।
0: बिल्कुल सर, हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, भारत निर्माण के लिए आज का जो सबसे गंभीर मामला है मानव तस्करी को रोकने के लिए, आप सब आगे आए और 109 का प्रयोग करके इसकी सूचना, सिर्फ आपको सूचना देना है, बाद बाकी काम टीम का है,
0: टीम का है,
1: बहुत बड़ी टीम काम कर रही
0: जी,
1: है
0: जी।
1: बस आपको उतने ही, बस खाली आपको इसकी जानकारी हमें हमारे तक पहुंचाना है
0: जी। बिल्कुल हाँ। तो ये गुप्त रूप से भी दिया जा सकता है, इसमें किसी तरह का संकोच की आवश्यकता, डरने की भी आवश्यकता नहीं है। आप नंबर का उपयोग करें, सूचना आप तक पहुंच जाएगी, आप कार्य करेंगे, सबके लिए है, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए है। आपने सर बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे श्रोता जरूर इससे लाभ लेंगे, क्योंकि हमारी सहभागिता होगी इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने में। आपने समय दिया हमारे कार्यक्रम को, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपने सुना भेंटवार्ता, विषय था मानव तस्करी। इसे बचने के लिए, इसे रोकने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं गुजरी संदेश।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम।

0: भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत। भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: 5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।
1: हम खेद है कि हम इनकी ताकत पूरा नहीं सुना पा रहे हैं। इसी के साथ आज का हमारा विधा का ये सफर यही समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अंजू रानी को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज का विविधा कार्यक्रम अंजू रानी देवगम के साथ।
1: परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

रस रंजन पेशी खिदमत है फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। इसमें ये है फिल्म रजनीगंधा का शीर्षक गीत, गुलकारा हैं लता मंगेशकर।

पत्थर के सनम। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ये है इस फिल्म का शीर्षक गीत। फनकार हैं मोहम्मद रफ़ी।

आज के रसरंजन कार्यक्रम में ये आ गया फिल्म नाम का नगमा। गुलकारा हैं लता मंगेशकर।

नकीना। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत, आवाज़ मोहम्मद अजीज़ की।

मैंने प्यार क्यों किया, याग्निक इस फिल्म का गीत कमाल खान और अलका याग्निक की आवाज़ों में है।

रस रंजन, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज़ाना 9:30 बजे आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का ये कार्यक्रम।

कार्यक्रम रसरंजन के बाद ये है फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हम लेकर आए हैं चंद मिले जुले नगमे, और ये नगमा है फिल्म लक्की का। ये शीर्षक गीत है अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। क्षमा करें, ये नगमा है गुलकारा आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर

किताब में कई पन्ने भीगे हुए हैं, कुछ पर वक्त की उंगलियों के निशान हैं। हर निशान को पढ़ने वाला कोई मिले यह ज़रूरी नहीं, कुछ निशान बस मेरे नाम हैं। तन्हाई कोई खाली कमरा नहीं, वह भीतर जलता हुआ धीमा सा दिया है, जिसकी लौ में चेहरे आते जाते हैं, पर हर चेहरा कहानी नहीं होता।

ये आ गया फिल्म कोयला का नगमा, प्रीति सिंह और कुमार सानू की आवाज़ों में।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चंद मिले जुले के नगमे। यह आकाशवाणी चाईबासा है फिल्म के 101.7 MHz पर। साढ़े 10 बजने वाले हैं और अगला प्रसारण थोड़ी देर में आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कीजिए थोड़ा इंतज़ार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में मैं हूँ आज आप सभी के साथ अमृता
1: और मैं हूँ रौनक। आप सभी श्रोताओं को जोहार नमस्कार।
0: श्रोताओं आइए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में अच्छा और बुद्धिमान है जो सदैव सत्य बोलता है, धर्म के अनुसार आचरण करता है और अपने व्यवहार से दूसरों को श्रेष्ठ, सुखी एवं प्रसन्न बनाने का प्रयास करता है।
1: मनुष्य की वास्तविक अच्छाई उसके ज्ञान और धन में नहीं बल्कि उसके सत्य, धर्म पूर्ण आचरण और दूसरों के प्रति अच्छे व्यवहार में होती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी सम्मान पाता है और समाज के लिए भी उपयोगी बनता है।

0: कभी तो हंसाए।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रची। और अमृता, अब आप बताइए हमारे श्रोताओं को मौसम के बारे में।
2: बिल्कुल, मौसम के बारे में अगर बात करें तो आज से मौसम साफ रहेगा, पर उमस जो है परेशान करेगी।
1: अच्छा।
2: हाँ, रांची समेत पूरे झारखंड में रविवार से अगले 6 दिनों तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है, और इस दौरान दिन में धूप तीखी होगी और अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी।
1: हालांकि वायुमंडल में मौजूद नमी के कारण रांची और राज्य के कुछ हिस्सों में एकाध बार हल्की बारिश होने की संभावना है।
2: जी जी।
1: झारखंड में फिलहाल मॉनसून की स्थिति सामान्य है।
2: जी।
1: और अब हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और सूर्योदय के बारे में बताइए अमृता।
2: हाँ, सूर्योदय के बारे में बता दें कि सूर्योदय आज जो सूर्योदय का समय था वो था 5:35 और सूर्यास्त का समय 6:56 है।
1: बिल्कुल।
2: तो बातों के साथ अपने श्रोताओं को सुनाया जाए प्यारा सा गीत।

0: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल सेफ्टी ही है गारंटी, क्योंकि PNG है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो PNG। अधिक जानकारी के लिए 06541253000 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद BPCL's PNG।
2: श्रोताओं, अब बारी है इतिहास के पन्नों को पलटने की। जैसा कि आप जानते हैं, आज 13 सितंबर है। साल के 9वें महीने का ये 13वां दिन इतिहास के पन्नों में अपनी खास जगह रखता है, अपनी खास अहमियत रखता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। सन 1500 में आज ही के दिन यानी 13 सितंबर को पुर्तगाली खोजकर्ता पेट्रो अल्वारेज कैबाल कालीकट पहुंचे और भारत में पहली यूरोपीय फैक्ट्री खोली।
3: आज ही के दिन 1791 ईस्वी में फ्रांस के राजा लुई 14वें ने नया संविधान अंगीकार किया।
2: और सन 1922 में आज ही के दिन एल अजीजिया में पृथ्वी पर अब तक का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
3: और आज ही के दिन 1923 में स्पेन में सैन्य तख्ता पलट, मिगेल डे प्रिमो रिवेरा ने सत्ता संभाली और तानाशाह सरकार की स्थापना की। ट्रेड यूनियनों को 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।
2: और 2000 में भारत के विश्वनाथन आनंद ने शेनयान में पहला फिडे शतरंज विश्व कप जीता।
3: 2002 में इसराइल ने फिलिस्तानी अधिकृत गाजा पट्टी पर हमला किया।
2: और 2007 में आज ही के दिन नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के वैज्ञानिकों ने

0: और श्रोताओं, आपको बताते चले कि 2009 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में कोच्चि के चार्ल्स डायस को मनोनीत किया गया और 2013 में तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के हेरात शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया।
1: और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और ये खुद नहीं चमकता बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। बता दें, आज ही के दिन 13 सितंबर साल 2009 में चंद्रमा पर बर्फ खोजने का इसरो नासा का अभियान असफल हुआ था।
0: बातें तो बहुत सारी हो गई, चलिए अपने श्रोताओं को सुनाते हैं एक
1: प्यारा सा गीत।

0: और अब श्रोताओं एक नजर डालते हैं आज के दिन उन हस्तियों के बारे में जो इस दुनिया में आए। तो अमृता, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सन 1978 में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रहे भारती पवार का जन्म आज ही के दिन हुआ था।
1: हाँ, और आज ही के दिन सन 1939 में भगवत रावत जो कि प्रसिद्ध कवि एवं निबंधकार थे उनका भी जन्म हुआ था।
0: 1926 में भारत की महिला क्रांतिकारी नगेंद्र बाला का जन्म हुआ था।
1: और 1946 में मेजर रामास्वामी परमेश्वरन जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे उनका भी जन्म हुआ था।
0: और अब बातें करते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा महिमा चौधरी के बारे में। महिमा चौधरी का असली नाम रितु चौधरी है, लेकिन पर्दे की अदाकारा खुद पर्दे पर महिमा चौधरी कहलाना पसंद करती है। परदेश से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली महिमा हिंदी सिनेमा जगत की उन हीरोइनों में से हैं जो अपनी अदाकारी और किरदारों के जरिए लोगों के दिलों पर कई सालों तक राज किया। आज ही के दिन यानी 13 सितंबर साल 1973 को महिमा चौधरी का जन्म हुआ था।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और उनपे फिल्माया गया फिल्म परदेश जो है वो काफी लोगों ने सराहा, उनकी अदाकारी को सराहा, तो क्यों ना उनपे फिल्माया एक प्यारा सा गीत
0: अपने श्रोताओं को हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल।

0: हाँ, और आधे मतलब आज ही के दिन सन 2012 में रंगनाथ मिश्र, जो कि भारत के भूतपूर्व 21वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे, उनका भी निधन हुआ था।
1: और भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ दास का निधन भी आज ही के दिन हुआ था।
0: 1921 में भवानी रॉय, जो कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी और मोहन बगान के दिग्गज फुटबॉलर थे, उनका भी निधन हुआ था। तो बातों ही बातों में आइए आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची अमृता और रौनक के साथ।
1: तो अब बताते चले अपने श्रोताओं को कुछ सेहत के बारे में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि मॉनसून का टाइम है और समय ऐसा है कि कभी धूप होता है और कभी बारिश, और जब बारिश होती है तो मौसम जो है काफी ठंडा हो जाता है, धूप होती है
0: नमी
1: तो
0: आ जाती है बहुत ज्यादा
1: जी, और जैसे धूप होता है तो फिर गर्मी लगना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से लोगों में जो है वो क्या बोलते बुखार,
0: तबीयत खराब होने लगती है।
1: तो आपको एक चीज और भी बता दें कि मॉनसून में जो है आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं लेकिन सावधानी के साथ। कारण बताते हैं आपको, इसलिए क्योंकि उस समय जो है हरी पत्तेदार सब्जियां जो है हमारी सेहत के लिए तो फायदेमंद मानी जाती है और इनमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं,
0: इसलिए इन्हें नियमित आहार में शामिल करना बेहद जरूरी है। लेकिन मॉनसून में इनके सेवन को लेकर सावधानी बरतने की भी बात कही जाती है, तो बताइए अमृता।
1: हाँ, इसलिए क्योंकि बारिश के दौरान बढ़ी हुई नमी और गंदगी जो है हानिकारक सूक्ष्म जीव जो है वो पनपने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर देता है, और हमें पता है कि जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं सभी में नमी की मात्रा ज्यादा
0: बहुत ज्यादा होती है। और क्यों बढ़ जाता है खतरा, ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बिल्कुल, कारण ये है कि पानी अधिक होने के कारण इन पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और छोटे कीड़े आसानी से जमा हो जाते हैं और सामान्य दिनों में जो तेज धूप कई सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम कर देती है और बारिश के समय में उनकी सक्रियता जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं जो हैं जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है उन्हें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
0: और सब्जियों को ना अमृता पहले काफी अच्छे से साफ करें, उन्हें अच्छे से धोएं, ताकि ना मिट्टी, गंदगी और कीटनाशकों का अवशेष हट सके। इसके बाद नमक या सिरका मिले पानी में 10 से 15 मिनट तक भिंगो कर रखिए।
1: इससे क्या होगा, इसमें छुपे हुए कीड़े और कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो हटाने में आपको मदद मिलेगी। धोने के लिए सादे व हल्के गुनगुने पानी का उपयोग करें। बहुत कम पानी में सब्जियों को जो है वो बनावट खराब हो जा सकती है, इसलिए कुछ पोषक तत्व भी
0: कम हो सकते हैं।
1: है ना, ये बहुत ज्यादा गर्म पानी ना इस्तेमाल करें बल्कि हल्का गुनगुना पानी आप इस्तेमाल करें। और जो जब जब भी आप मॉनसून में बाजार जाके सब्जियां लेते हैं तो कई बार हम क्या करें,
0: ध्यान रखें,
1: कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक हफ्ते का सब्जी या चार दिनों का सब्जी एक ही साथ
0: लेते हैं,
1: तो वैसा ना करें बल्कि
0: हरगिज नहीं करें,
1: कम मात्रा में सब्जियां लें और थोड़ी थोड़ी सब्जियां आप इस्तेमाल करें। इससे जो है आपका सेहत भी अच्छा रहेगा और आपको
0: और ताजी सब्जियां खाएं।
1: बिल्कुल।

0: प्यारे से गीत के बाद अमृता, अब हम अपने श्रोताओं को कहीं बाहर ले चलते हैं।
1: बिल्कुल, मेरा भी मूड ऐसा हो रखा है, इतना प्यारा सा गीत सुनने के बाद मुझे भी लगा कि मैं भी कहीं घूम आऊं।
0: तो हम अपने श्रोताओं को औली ले चलें।
1: बिल्कुल,
0: क्या कहती हैं?
1: एकदम एकदम ले चलिए, और इतनी खूबसूरत जगह ना।
0: तो जरा इसके बारे में अपने श्रोताओं को हम बता दें कि समुद्र तल से लगभग 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित औली एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। ग्रीष्म ऋतु में हरे भरे बुग्याल, वर्षों में बादलों की अटखेलियां और शरद ऋतु में स्वच्छ नीला आकाश इसे हर मौसम में अलग रूप प्रदान करते हैं।
1: हाँ, औली की यात्रा के बाद जो है आपकी स्मृतियां बस जाती है, हिमालय की वह विराट शांति जो कुछ देर के लिए ही सही जीवन की भागदौड़ को थाम लेती है, शायद यही औली का सबसे बड़ा आकर्षण है। उसे केवल देखा नहीं जाता, भीतर कहीं लंबे समय तक
0: महसूस किया जाता है।
1: हाँ, तो जोशी मठ जो है औली का प्रवेश द्वार है। यहाँ से औली जाने के दो मार्ग हैं, एक सड़क मार्ग और दूसरा रोपवे। जैसे जैसे ट्रॉली ऊपर जाती है ना, नीचे फैली घाटियां, देवदार के वन और दूर चमकती हिमालय की चोटियां एक एक कर सामने आती जाती हैं। लगता है मानो बादलों के बीच से कोई आदर्श रास्ता खुल गया हो। कुछ ही मिनटों में जोशी मठ पीछे छूट जाता है और सामने खुलता है हिमालय का विराट दृश्य। यहाँ घूमने के कई स्थान हैं, जिसे देखना हो तो बनता ही है।
0: बिल्कुल,
1: तो आपको बता दें कि समुद्र तल से लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह विस्तृत घास का मैदान उत्तराखंड के सुंदरतम बुग्यालों में गिना जाता है, जिसके चारों ओर घने शंकुधारी वन और बांज के पेड़ हैं। इस घास के मैदान पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह चांदी के समान चमक उठता है। वसंत और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ रंग बिरंगे जंगली फूलों की चादर बिछ जाती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर ट्रैक करते हैं, क्षेत्र जो है समतल से उबर खाबर पर्वत श्रृंखलाओं में बदलता रहता है। यह ट्रैक छोटे छोटे जंगलों से भरे हुए यहाँ हरियाली धीरे धीरे बर्फ से ढके क्षेत्रों में बदल जाती है।
0: और अमृता, यहाँ की दो झीलें बहुत मशहूर हैं, कृत्रिम झील और चिनाब झील, तो जरा श्रोताओं को बताइए इनके बारे में।
1: बिल्कुल, कृत्रिम झील जो है इसका निर्माण स्कीइंग ढलानों पर कृत्रिम हिम तौर पर करने के उद्देश्य से किया गया था। यहाँ के शांत जल में प्रतिबिंबित हिमालय का दृश्य अत्यंत मनोहारी लगता है। यह झील बर्फ बनाने वाली मशीनों के लिए जलाशय का काम करती है। ये मशीनें सुनिश्चित करती हैं कि प्राकृतिक हिमपात कम होने पर भी ढलानों पर पर्याप्त बर्फ रहे। बर्फ की इसी उपलब्धता ने औली को एक विश्वसनीय शीतकालीन खेल केंद्र में बदल दिया है। आसपास हाइकिंग और बर्ड वॉचिंग भी की जा सकती है। और आपको बता दें कि चिनाब झील जो यह एक छोटी क्रिस्टलीय पानी की झील है, यह शांत झील हरे भरे जंगल और ओक तथा देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। यहाँ ट्रैकिंग की भी की जा सकती है। बर्फ से ढके परिदृश्यों के बीच कठिन रास्तों पर अनुभव करते हुए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत नजारे भी साथ साथ चलते हैं। चिनाब झील के आसपास ऑर्किड, प्रिमोला और पॉपी जैसे रंग बिरंगे फूल मन मोह लेते हैं।
0: और यहाँ एक मंदिर भी बहुत मशहूर है अमृता, क्या आप जानती हैं उसका नाम?
1: बिल्कुल, नरसिंह मंदिर। और यह मंदिर जो है भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित है। इसकी भव्य वास्तुकला ध्यान खींचती है। बारीक नक्काशी और अलंकृत मूर्तियां भी सुशोभित इस मंदिर की पत्थर की दीवारों और लकड़ी के खम्भों सदियों पुरानी कारीगरी की झलक जो है आपको पेश करती है।
0: और यहाँ कैसे पहुँचे तो इसके बारे भी हम अपने श्रोताओं को बता दें कि निकटतम हवाई अड्डा है देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार से औली के लिए बस या फिर जोशी मठ तक किराए पर टैक्सी भी ले सकते हैं। जोशी मठ उत्तराखंड के प्रमुख शहरों जैसे देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली से भी जोशी मठ के लिए बसें उपलब्ध हैं। जोशी मठ से औली 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दूरी तय करने के लिए आपको रोपवे या सड़क मार्ग का उपयोग करना होगा।
1: हाँ बिल्कुल, तो श्रोताओं को
0: जब इतने अच्छी बातें हो रही हैं पर्यटन की, तो एक जाहिर सी बात है कि खूबसूरत गीत तो हमारे श्रोताओं के लिए बनता है अमृता।
1: जी बिल्कुल।

0: श्रोताओं को बता दे कि खेल जगत में जो है अभी क्या खास होने वाला है। तो बताएं कि ये जो सितारे हैं एशियन गेम्स के 35 खेलों में देंगे चुनौती, लिखेंगे भारत की नई कहानी। एशिया खेल महाशक्ति बनने की बढ़ रहे भारत की नजर हांगजो के 107वें पदक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने पर है, और 19 सितंबर को जो है 4 अक्टूबर तक जापान के आइची नोगया में होने वाले खेलों में भारतीय दल के कई ऐसे सितारे हैं जिनसे पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद है।
1: और आठवीं बार एशिया का ताज पहनने उतरेगी टीम इंडिया।
0: बिल्कुल
1: 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम रविवार को श्रीलंका के खिलाफ महिला T20 एशिया कप के फाइनल में उतरेगी, तो उसकी नजरें 8वीं बार खिताब जीतने पर होगी।
0: हाँ, दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अगेय हैं। भारत के लिए शेफाली वर्मा का शानदार फॉर्म और दीप्ति शर्मा की गेंद व बल्ले से उपयोगिता सबसे बड़ी ताकत है। वहीं 2024 के फाइनल में श्रीलंका से मिली हार का हिसाब चुकता करने की चुनौती भी हरमनप्रीत कौर की टीम के सामने होगी। और आपको ये भी बता दें कि यूएस ओपन टियाफो को हराकर पहली बार फाइनल में पहुंचे अमेरिकी टेनिस का सूखा खत्म करने उतरेंगे सेल्टन, है ना। अमेरिकी टेनिस के लिए 22 साल से चले आ रहे ग्रैंड स्लैम खिताब के सूखे को खत्म करने की जिम्मेदारी अब बेन सेल्टन के कंधों पर है। चलिए बातों के बाद साथ ही अपने श्रोताओं को आइए सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: और अभी चलते चलते अमृता, हम अपने श्रोताओं को थोड़ा सेहत से जुड़ी कुछ बातें भी बता दें
1: जी बिल्कुल
0: कि जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें अपना खास ख्याल रखें,
1: बिल्कुल
0: हमेशा ताज़ा खाना खाएं, गुनगुना पानी पिए,
1: जी,
0: बाहर
1: और
0: जाएं
1: खास
0: तो
1: करके अभी,
0: हमेशा,
1: हाँ ये जो मौसम
0: खासकर
1: है,
0: ये जो
1: हाँ
0: मौसम है, बाहर जाएं तो हमेशा रेनकोट छाता वगैरह
1: बिल्कुल
0: रखें, बाहर का तला भुना खाना खाने से
1: बिल्कुल
0: थोड़ा
1: बाहर का
0: परहेज
1: खाना,
0: करें।
1: बिल्कुल बाहर का खाना जितना हो उतना कम खाए ना, उससे
0: और
1: संक्रमण की जो है
0: हाँ,
1: संभावना
0: खतरा
1: ज्यादा हो
0: बढ़ा
1: जाती है।
0: रहता
1: बिल्कुल
0: है,
1: हाँ
0: और घर का ही बना हुआ खाना खाए तो ज्यादा बेहतर है।
1: जी बिल्कुल, और फल खाएं ज्यादा से ज्यादा, हरी सब्जियां खाएं, उन सब चीजों का सेवन ज्यादा करें, खास करके घर में अगर बुजुर्ग हैं और छोटे बच्चे हैं तो उन पर
0: उनका
1: ज्यादा
0: ख्याल
1: ख्याल
0: ज्यादा
1: रखें। हाँ
0: रखें।
1: क्योंकि वो जल्दी संक्रमित हो जाते हैं, तो उनका ख्याल ज्यादा रखें, और आप भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रखें, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियां जो
0: तो
1: हैं,
0: आप पे ही होती
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: और हमेशा सकारात्मक रहें
1: बिल्कुल
0: और खुश
1: सकारात्मक,
0: रहें।
1: हाँ खुश रहें, सकारात्मक
0: जब
1: रहें,
0: आप खुश रहेंगे तो तभी अपने
1: बिल्कुल
0: घर वाले का अच्छे से
1: ख्याल रख
0: ख्याल रख
1: पाएंगे।
0: पाएंगे और खुशी दे पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो आप भी खुश रहें और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें, और इन्हीं
0: इन्हीं
1: सब
0: सब
1: बातों को
0: खूबसूरत बातों के साथ हमें
1: मुझे
0: दीजिए
1: इजाजत,
0: इजाजत। नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: जोहार।
1: जोहार।

मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं आपके पसंदीदा गीत कार्यक्रम आपकी पसंद में। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं फिल्म नमस्ते लंदन का ये प्यारा सा गीत राहत फतेह अली खान के स्वर में। संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

श्रोताओं, अभी जो गीत आपने सुना, इस गीत की फरमाइश आई थी बराबांबे सुपाई से। देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देबेन की, चकरधरपुर ग्राम गोलिया लोहार से कोमल बेसरा, बसंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म बॉम्बे से। इस गीत को गाया है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति ने, संगीत दिया है A.R. रहमान ने और गीतकार हैं महबूब। श्रोताओं, इस गीत को सुनना चाहा है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीशु तासु, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, औरंगाबाद से राजेश सावल पाटिल और शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। इन सबों की फरमाइश पे आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। अभिजीत गांवकर, सरिता गांवकर, सिद्धांत गांवकर, प्रिंस एकांश गांवकर और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गांवकर, वैशाली गांवकर, श्वेता सुमित गांवकर और कुमारी ध्वनि गांवकर, इन सबों ने फरमाइश की है फिल्म बेताब के इस खूबसूरत गीत की, जिसे गाया है सबीर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: सेफ्टी ही है गारंटी, क्योंकि पीएनजी है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 06541253000 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद बीपीसीएल्स पीएनजी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म दुश्मन से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है उत्तम सिंह ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी। इस गीत को सुनना चाहा है मनी गाशी रातुका से, मोहम्मद वकील राही, विजय कुमार विजय, फिरोज आलम, नाज प्रवीण, आलम शेख, सबान आलम, चांदनी नाज और मगनपुर से अमजद अली अब्बास आलम।

इसी गीत के साथ हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारी बहनों का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: मुस्कान हो चेहरे पर, उत्साह हो मन में और उम्मीदों से भरा हो हर नया दिन। इसी खूबसूरत ऊर्जा के साथ आप सभी रेडियो सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी सखी खुशबू और आप सुन रही हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
1: और मैं हूं आपके सखी सुभाषिनी। आप सभी को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला हमेशा की तरह आज भी कुछ नया, कुछ उपयोगी और कुछ ऐसा होगा जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़ सके।
0: बिल्कुल सुभाषिनी, और आज हमारी चर्चा भी ऐसी ही है जो सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। सखियों, हम सब जानते हैं कि प्रकृति का अपना चक्र होता है, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी ठंड, और मौसम के साथ साथ हमारे शरीर की जरूरतें भी बदलती रहती है। और इसी बात का हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आहार जो है वो मौसम के अनुसार हो।
1: बिल्कुल खुशबू और बहनों, मौसम तो बदलते ही रहते हैं, और मौसम बदले तो हमारी दिनचर्या, खान पान, पहनावा और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां भी उसी के अनुसार बदलनी चाहिए। तो सखियों, अक्सर हम मौसम बदलने को तो महसूस करते हैं, लेकिन अपने शरीर में जो बदलाव होते हैं उन बदलावों पर उतना ध्यान नहीं देते, जबकि हर मौसम में हमारे शरीर पर अलग तरह का प्रभाव पड़ता है।
0: और छोटी सी भी लापरवाही कई बार हमें परेशानी में डाल सकती है, इसलिए मौसम चाहे कोई भी हो, हमें अपने शरीर के संकेतों को समझना चाहिए। मसलन गर्मियों में शरीर को पानी और ठंडक की ज्यादा जरूरत होती है, बारिश के मौसम में साफ सफाई और भोजन की स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वहीं सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के साथ साथ पौष्टिक आहार और शारीरिक सक्रियता भी जरूरी हो जाता है।
1: बहुत पते की बात कही तुमने। और सखियों, हम सभी जानते हैं कि अच्छे भोजन का हमारी जीवन में विशेष महत्व होता है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा और पोषण देने के लिए भी होता है।
0: बिल्कुल सुभाषिनी, और इसलिए बहनों, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अलग अलग मौसम में हमारे भोजन की थाली का स्वरूप भी बदल जाता है। जैसे अगर बात करें गर्मी की, तो उसमें हमें तेज धूप और पसीने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। साथ ही जो मौसमी फल होते हैं, जैसे जिसमें पानी की अधिक मात्रा होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, जैसे पानी से भरपूर मौसमी खाद्य पदार्थों को भी भोजन में शामिल किया

0: जाना चाहिए।
1: और साथ ही बहनों, बहुत ज़्यादा जो तला भुना मसाला मसालेदार खाना होता है, या कह ले भारी भोजन जो होता है, उसे खाने के बजाय हल्का और संतुलित भोजन खाना ही अच्छा होता है। साथ ही गर्मियों के मौसम में भोजन की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। बाहर खुले में रखे भोजन से बचना चाहिए और साफ पानी ही पीना चाहिए।
0: बिल्कुल सुभाषनी, तुमने बहुत सही बात कही। अब बात करते हैं बारिश के मौसम की। जैसे कि सुभाषनी में भी ने भी बताया, सखियों, बारिश में वातावरण में नमी बढ़ जाती है और कई तरह के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में साफ सफाई और भोजन की स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए।
1: फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करें, भोजन को ढककर रखें और कोशिश करें कि ताज़ा भोजन ही खाएं, और बाहर का जो खुला और अस्वच्छ भोजन रहता है उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए।
0: हालांकि बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े
1: हाँ
0: खाने का मन तो जरूर करता है वो सुभाषनी, है ना। और पकौड़े और बारिश की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन स्वाद के साथ सेहत का संतुलन भी जरूरी है सखियों। कभी कभार स्वाद के लिए ठीक है, लेकिन रोज रोज तला भुना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल। अब आते हैं सर्दियों के मौसम पर। इस मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मौसमी फल, दालें और अन्य पौष्टिक पदार्थों को अपनी थाली में शामिल हम कर सकते हैं।
0: और सर्दियों में लोग अक्सर ज्यादा घी, तेल और तला भुना, है ना, वो खाना शुरू कर देते हैं सखियों। लेकिन ठंड के नाम पर ज्यादा तला भुना खाना भी सही नहीं है। हमें स्वाद के साथ मात्रा और पोषण का भी ध्यान देना चाहिए। और एक जरूरी बात, सर्दियों में प्यास कम लगती है सुभाषिनी, इसलिए हमें फिर भी प्यास ना लगे तब भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल। यानी मौसम कोई भी हो, हमारी थाली में संतुलन और विविधता होना जरूरी है। और सखियों, एक खास बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि परिवार के लिए पौष्टिक भोजन जब आप बनाती हैं तो उस समय अपनी सेहत को भी नजरअंदाज ना करें, अपने लिए भी ध्यान रखें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तभी पूरे परिवार की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगी। तो सखियों, अच्छी सेहत किसी एक मौसम की जरूरत नहीं है, बल्कि हर दिन की जरूरत है।
0: बिल्कुल, मौसम के हर रंग का आनंद ले बहनों, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि जिंदगी का हर मौसम है ना, वो खूबसूरत है। बस उसे जीने का अंदाज स्वस्थ और सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि हर मौसम का अपना रंग है और हर मौसम की अपनी पहचान है। मौसम के संग बदले आहार तो सेहत बनेगी हमारी शान। और बात जब सही आहार की हो तो हमारा तन भी स्वस्थ रहता है और मन भी खुश रहता है। और जब मन खुश होता है और मौसम सुहाना होता है, तो फिर क्यों ना इस मस्ताने मौसम का आनंद लिया जाए।
1: बिल्कुल।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: RBI कहता है
5: तरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आपकी चाय। EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है, इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है। ना भाई ना। अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सेफ्टी ही है गारंटी, क्योंकि PNG है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो PNG। अधिक जानकारी के लिए 06541253000 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद BPCL's PNG।
7: इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी बहनों का एक बार हम फिर स्वागत करते हैं। और खुशबू, जैसा कि बहने इंतजार कर रही होंगी, आज रविवार है और आज का हमारा जो खास कार्यक्रम वट वृक्ष, तो बहनों आपको लिए चलते हैं वट वृक्ष की छाया में। उम्र का एक पड़ाव ही तो पार हुआ है, सफर अभी बाकी है। उम्र का एक पड़ाव ही तो पार हुआ है, सफर अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे तो पूरा आसमान अभी बाकी है। वट वृक्ष के तहत बहनों आज हम बातें करेंगे जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की, यानी सेवानिवृत्ति, या कह

0: रिटायरमेंट की।
1: बिल्कुल सुभाषनी, तुमने इतने अच्छे तरीके से उम्र के पड़ाव को बताया बहनों को, सखियों को। अक्सर लोग इसे काम का अंत मान लेते हैं, लेकिन असल में ये ढलती शाम नहीं होती है, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और नई सुबह है।
0: यानी जीवन की एक ऐसी शुरुआत है ना खुशबू, जहां जिम्मेदारियों की पाबंदी नहीं बल्कि अपने सपनों को जीने की आजादी होती है। कई ऐसे बेहतरीन काम हैं जिसे लोगों ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद ही अंजाम दिया है।
1: बिल्कुल, जीवन का एक ऐसा पड़ाव जिसके ख्याल से कुछ लोग थोड़ा ठहर जाते हैं तो कुछ लोग मुस्कुरा उठते हैं, लेकिन यकीन मानिए सखियों, जिंदगी की आखिरी किताब का आखिरी पन्ना नहीं है ये, बल्कि एक नए और बेहद रोमांचक चैप्टर की शुरुआत है ये।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और जरा सोचिए बहनों, पिछले 30 या 35 सालों से जो सुबह कैसी रहती होगी, सुबह अलार्म का बजना, चाय की जल्दी, दफ्तर जाने की टेंशन, काम की डेडलाइन, सालों साल हमारी जिंदगी इसी ढर्रे पर चलती रहती है, मानो हम घड़ी की सुइयों के गुलाम बने रहे हैं।
1: लेकिन रिटायरमेंट के अगले ही दिन जब आप बिना अलार्म के उठते हैं तो एक सुकून की धूप आपके आंगन में आती है, तो आप ये ना समझे कि आप अब समाज या परिवार के लिए उपयोगी नहीं रह गए, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब तक आपने जो भी काम किया है, जो भी आपकी जिम्मेदारी थी, और अब आपको उन सब को पूरा करने का समय मिल गया है और आप पूरा कर भी चुके हैं, जिससे आपको खुशी होगी।
0: बिल्कुल, यह उम्र का ढलना नहीं बल्कि अनुभव का शिखर तक पहुंचना है। अब आपके पास एक ऐसी दौलत है जो हर किसी के पास नहीं होती, और उस दौलत का नाम है वक्त और तजुर्बा। अब समय है आप अपने अधूरे सपनों को उड़ान देने का।
1: अब तक जो आपने दफ्तर की सेहत सुधारी, अब खुद की सेहत सुधारने का समय है। सुबह की सैर, योग और भरपूर नींद को अपना दोस्त बनाइए, अपने शौक पूरे कीजिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कंप्यूटर सीखिए, फोटोग्राफी सीखिए, और ऐसे बहुत से काम हैं जो आप सीख सकते हैं इस उम्र में भी।
0: बिल्कुल, और इसके अलावा उम्र के इस पड़ाव में समाज को देने के लिए भी आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास जो 30-40 सालों का प्रोफेशनल तजुर्बा है, उसे युवाओं के साथ साझा कीजिए। किसी संस्था से भी आप जुड़ सकते हैं, बच्चों को मुफ्त पढ़ाइए, क्योंकि जो सुकून किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर मिलता है ना, वो दफ्तर के किसी इंक्रीमेंट में नहीं मिलता।
1: अब तक आपकी जिंदगी की घड़ी की सुइयां है ना, वो दफ्तर के हिसाब से चलती थी, लेकिन अब जो समय शुरू हुआ है उसका रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में है। यह जीवन के पूर्ण विराम नहीं बल्कि एक खूबसूरत अल्प विराम है, जिसके बाद एक हसीन सवेरा शुरू होने जा रहा है, एक नए आसमान में उड़ने का आमंत्रण है।
0: तो आपसे हम बस इतना ही कहेंगे कि इस नए चैप्टर को शानदार तरीके से खोलिए कि देखने वाले तालियां बजाने पर मजबूर हो जाए। तो खुद से प्यार कीजिए, अपने परिवार को वक्त दीजिए और खुलकर मुस्कुराइए, और साथ ही ये खूबसूरत सा गीत भी सुनिए।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सखियों, आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और जैसा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है सुभाषिनी, तो ऐसे में बारिश का मौसम जहाँ बहुत सुकून देने वाला होता है, हरियाली वाला होता है, लेकिन इस मौसम में संक्रमण की भी काफी संभावना बढ़ जाती है। तो इस मौसम में संक्रमण से बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं इस मौसम में नमी और जगह जगह जमा पानी के कारण संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है।
1: और जो दूषित पानी होता है, और उससे दूषित पानी और भोजन से पेट संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। जबकि मच्छरों के बढ़ने से जहां पानी जमा रहता है ना, वहां मच्छर का लार्वा पनपता है, तो उससे मच्छर बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं, या फिर डेंगू कह ले, डेंगू मलेरिया इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
0: बिल्कुल, इसलिए बारिश का मजा लेते हुए हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। सखियों, संक्रमण से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि संक्रमण से बचाव ही बहुत जरूरी होता है ना।
1: और पीने के लिए स्वच्छ और उबला या सुरक्षित पानी ही इस्तेमाल करें, यानी उबाल कर पानी को ठंडा करके छान कर पिए। अगर कोई सुविधा नहीं है, आपके पास फिल्टर नहीं है या मशीन जो आती है वो नहीं है, तो भोजन को ढककर रखें और ताजा और अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाए। यानी कि जो आधा पका हुआ खाना रहता है ना, वो भी हानिकारक होता है।
0: बिल्कुल, और फल और सब्जियों को भी अच्छी तरह से धोकर ही इसका उपयोग करना चाहिए। यानी बारिश के मौसम में सखियों, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खास करके खाने पीने की वस्तुओं पर। और इसके अलावा हमें घर और आसपास पानी जमा भी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी मच्छरों के पनपने

0: का कारण बन सकता है, जैसा कि सुभाषिनी ने भी बताया।
1: और
0: मच्छरों से बचने के लिए इस मौसम में मच्छरदानी, खिड़की की जाली और जरूरत पड़ने पर मच्छरों से बचने के लिए अन्य उपायों का भी उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का शिकार ना होना पड़े।
1: बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा खुशबू तुमने, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए मच्छरों से बचने के लिए। और घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, कोई शिशु है, तो उसे हम लोग सुला देते हैं कहीं पर बेड पर या चौकी पर कहीं पर, तो दिन में भी उस समय मच्छरदानी का उपयोग जरूर करना चाहिए उसके लिए। और बारिश में भीगे कपड़ों को तुरंत बदले, अगर आप कहीं से भीग के आई है या कपड़े भीग गए हैं तो तुरंत बदल ले और शरीर को अच्छी तरह से सुखा ले। फिर हाथों को साबुन से बार बार धोना भी संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा और सरल उपाय है।
0: बिल्कुल, और यदि बारिश के मौसम में आप बीमार हो जाए, यदि बुखार हो जाए या लगातार उल्टी, दस्त या सांस लेने में परेशानी हो या अन्य कोई गंभीर लक्षण दिखाई दे, तो डॉक्टरी सलाह जरूर से ले।
1: साफ पानी, स्वच्छ भोजन और स्वच्छ वातावरण बरसात में स्वस्थ रहने का यही सबसे अच्छा मंत्र है, क्योंकि बारिश का मौसम तभी सुहाना है जब हम रहें स्वच्छ और मुस्कुराते रहें।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ आइए सुनते हैं सखियों एक प्यारा सा गीत।

0: तो खुशबू, इतनी सी छोटी सी हंसी और छोटी सी खुशी जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो खुशियां ही है ना, छोटी छोटी खुशियां हमें बहुत जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, और जितने भी हमारे जो टेंशन होते हैं ना, वो झट से दूर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो अब हमारे पास बातें करने के लिए भी अभी समय नहीं है, क्योंकि घड़ी की सुइयां कह रही है कि अब हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। तो अगले दिन हम फिर बातें करेंगे ढेर सारी बहनों से। तब तक के लिए हम बहनों से आज्ञा लेंगे। और
1: लेकिन जाते जाते आपको
0: हाँ
1: बता दे सके हो कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और अब अपनी दो सखी खुशबू,
0: और सुभाषिनी को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। गृहलक्ष्मी
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिर लक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती। कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं गणेश मिश्रा एवं साथी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत भारती। कलाकार थे गणेश मिश्रा एवं साथी। ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे खड़िया भाषा में लोकगीत। कलाकार हैं आशावंती, इक्का और साथी।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब से बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और बाधाओं ने ये साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
0: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं, पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री कजाखस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर

बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Addressing the open session of BRICS summit at Bharat Mandapam in New Delhi, Mr. Modi said BRICS nations have therefore placed special emphasis on enhancing resilience among the grouping. In the session on resilience, innovation, cooperation and sustainability, Mr. Modi also emphasized on timely identification of challenges, preparations for them and taking immediate action. He said that a consensus has been reached on a BRICS integrated early warning system for the prevention of and response to infectious diseases. He added that early warning data integration guidelines have been formulated for disaster management.
1: आज के interconnected world में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने BRICS समूह में resilience बढ़ाने पर विशेष बल दिया है. चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है. इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है. डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है.
0: Prime Minister Modi cautioned that weaponization of technology and critical minerals can become a hurdle for progress. He said BRICS nations have stressed on inclusivity in adoption of technology.
1: Technology aur critical minerals ka weaponization hamari saajha pragati mein badha ban sakta hai. Isliye humne technology ke adoption mein inclusivity par bal diya hai.
0: Mr. Modi said they have set up a BRICS Digital Center of Excellence for smart grids and energy storage, which will help make clean energy systems more reliable, efficient and accessible. Prime Minister said that the benefits of solutions developed within BRICS should be made adaptable and accessible to meet the needs of the Global South. Mr. Modi further stated that the BRICS Logistics Supply Chain Cooperation Framework will help make supply chains more reliable and resilient. Under the umbrella of innovation, the BRICS incubator network will connect startups and incubators. After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral meetings with President of Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev, President of Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., President of Egypt Abdel Fattah el-Sisi, President of South Africa Cyril Ramaphosa, and President of Burundi Evariste Ndayishimiye. He will also hold meetings with Vice President of Nigeria, Kashim Shettima, and Vice President of Uganda, Jessica Alupo. Finance Minister Nirmala Sitharaman today met the Iranian Minister of Economic Affairs and Finance, Sayed Ali Madnizadeh, in New Delhi. Ms. Sitharaman thanked Iran's productive engagement in the deliberations in the finance track. The Minister of Finance informed that during the meeting, both sides exchanged views on issues related to economic growth and the potential for cooperation in areas of mutual interest. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall, with extremely heavy rainfall at isolated places in Gujarat today. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall conditions over Madhya Pradesh, West Madhya Pradesh, Saurashtra and Kutch during the day. The Met Department predicted heavy rainfall over coastal Andhra Pradesh, Rajasthan, Haryana, Punjab, Chandigarh, Uttarakhand, West Bengal, Sikkim and parts of Northeast India for the day. In men's cricket, India will begin the three-match T20 international series against Afghanistan today at the Arun Jaitley Stadium in Delhi. The first match will start at 7 p.m. Indian time. In the Women's T20 Asia Cup cricket final, India will face defending champion Sri Lanka in Dubai this evening at 8 p.m. Indian time. Both India and Sri Lanka have reached the final unbeaten. And that is the end of this news bulletin.
2: Pradeshik Samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा. पहले मुख्य समाचार. भारत के संयुक्त सचिव ए मुथु कुमार का पश्चिमी सिंहभूम दौरा, प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना की समीक्षा की, जागरूकता रथ को किया रवाना। दुमका का मसानजोर डैम बनेगा मत्स्य उत्पादन और व्यापार का बड़ा हब, केंद्र की इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग योजना से रोजगार के खुलेंगे नए अवसर। झारखंड के हर जिले में आईसीयू की सुविधा सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा, टेली आईसीयू से लोगों को मिल रही मदद। चतरा पत्थलगढ़ा नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना के लिए रेलवे ने तेज की सर्वे प्रक्रिया, रेलखंड की ड्रोन वीडियोग्राफी को मिली मंजूरी। और रांची में खेलो इंडिया अस्मिता ट्रैक साइकिलिंग झारखंड लीग का आयोजन, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हुए सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और कृषकों को योजना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान भारत सरकार के संयुक्त सचिव ए मुथु कुमार भी मौजूद थे। श्री मुथु कुमार ने कहा कि किसानों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी सहज एवं सरल माध्यम से पहुंचाना आवश्यक है। इससे पहले श्री मुथु कुमार ने कल प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कृषकों से योजना के क्रियान्वयन के दौरान आ रही समस्याओं एवं चुनौतियों की जानकारी लेने के साथ सुझाव प्राप्त किए।
3: पोटेंशियल को हम लोग टैप कर पाए, इसके विवरण में काफी विस्तृत चर्चा हुआ। डिपार्टमेंट के लोग भी थे, हमारे किसान बंधु लोग भी थे, पॉजिटिव वे में हम लोग चर्चा किए हैं। और जिला के स्तर से भी जो उपाय पूरे समय दिए हैं, मैं सबको धन्यवाद दूंगा और इसको हम लोग और ऐसे आगे बढ़ाएंगे।
2: दुमका का ऐतिहासिक मसानजोर डैम अब केवल सिंचाई और पर्यटन तक सीमित न रहकर आधुनिक मत्स्य उत्पादन और व्यापार के एक बड़े हब के रूप में विकसित होने जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: केंद्र सरकार की इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग योजना के तहत मसानजोर डैम के समीप 4 हेक्टेयर क्षेत्र में अत्याधुनिक हैचरी, प्रोसेसिंग यूनिट, फीड मिल और फिश मार्केटिंग सहित पूरी सप्लाई चेन विकसित की जाएगी। 110 करोड़ रुपए की इस केंद्र प्रायोजित योजना से स्थानीय विस्थापितों और मछुआरों को उनके मत्स्य उत्पादन का उन्हें उचित मूल्य मिल सकेगा। दुमका से बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों तक मत्स्य व्यापार के नए द्वार खुलेंगे। इसके साथ ही जिले के 10 अमृत सरोवरों और अन्य जलाशयों में भी मत्स्य पालन और झींगा पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्षेत्र में आजीविका और रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
2: भारतीय जनता पार्टी देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाएगी। हजारीबाग में इसे लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप यादव ने कार्यक्रम की जानकारी दी।
5: सेवा संकल्प अभियान पूरे 1 महीने तक पूरे देश में मनाया जाएगा। 2047 में जो विकसित भारत का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसमें कैसे आमजन लोग जुड़े, हमारे बच्चे कैसे जुड़े और देश में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी देने का कार्यक्रम करेंगे। फिर रक्तदान शिविर लगाएंगे, वृक्षारोपण के माध्यम से इस तरह विभिन्न तरह का 25 तरह का कार्यक्रम है। अभी
2: रांची में 14वें ईस्ट जोन क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के बाद अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि झारखंड के प्रत्येक जिले में आईसीयू की सुविधा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही दूरदराज तथा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 बेड वाले टेली आईसीयू के माध्यम से जिला स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की मदद उपलब्ध कराई जा रही है। 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के 150 से अधिक विशेषज्ञ और 200 से अधिक चिकित्सक भाग ले रहे हैं। रांची में रिंग रोड स्थित ट्यूलिप हॉस्पिटल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 सितंबर को अस्पताल में हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के निर्देश पर रांची के सिविल सर्जन ने अस्पताल का पंजीकरण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन विस्तृत जांच पूरी होने और सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में खाद्य एवं जन वितरण प्रणाली से जुड़ी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 2,64,89,400 रुपए की राशि जारी की है। इस राशि से सभी जिलों में सेमिनार, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग और पंपलेट के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रखंड में 5 नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन होगा। विभाग ने संबंधित गतिविधियों के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा पत्थलगढ़ा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के लिए रेलवे ने सर्वे प्रक्रिया तेज कर दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
6: चतरा को बिहार के गया जिले के परैया से जोड़ने वाली परियोजना को पूर्व में ही रेल मंत्रालय ने विशेष रेल परियोजना घोषित किया है। वहीं अब चतरा पत्थलगड्डा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के सर्वे की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। इस रेल खंड के लिए जल्द ही सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। सर्वे के लिए ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जाएगी। जिले के उपायुक्त रवि आनंद ने इसकी अनुमति दे दी है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
2: FSSAI ने भ्रामक दावों, मिस लेबलिंग और खाद्य मानकों के उल्लंघन समेत 115 खाद्य उत्पादों को चिन्हित किया है। रांची समेत पूरे झारखंड में इन उत्पादों की बिक्री और स्टॉक की जांच तेज कर दी गई है। रांची के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सौरव सिंह ने बेड़ो और इटकी में खाद्य संस्थानों में छापेमारी की और विक्रेताओं को इससे जुड़े निर्देश दिए।
7: रिटेल आउटलेट जितने भी हैं, स्टोर हैं, वहाँ पे जांच किया। जो भी फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, लेबल वाले हैं या मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट वाले, FSSAI ने 115 प्रोडक्ट का जारी किया था लिस्ट, जिसमें से हम लोग रेगुलर इंस्पेक्शन करके उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं और बेचने पे भी रोक लगवा रहे हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, तो उसको अभी हम लोग रोकने का काम कर रहे हैं।
2: 5 दिन बाद भी कोडरमा के वृंदाहा वाटरफॉल में डूबे जहानाबाद के छात्र सागर कुमार का शव अब तक पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका है। पटना से आई NDRF 9 बटालियन की 30 सदस्यीय टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। NDRF के टीम कमांडर मुकेश कुमार ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
8: हम लगातार यहाँ अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको ढूंढ करके निकालें। पहाड़ी के साइड साइड में जो खेत हमारे डिवर ज्यादा करके वहाँ पे अपना परचेज किए हैं। वाटरफॉल है जो काफी ज्यादा वेग से बह रहा है, तो हमें नीचे जाने में, सेवल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हमारे अपना काम कर रहे हैं।
2: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। देवघर राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल समापन पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड देवघर द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मेला के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले विद्युत विभाग के अधिकारियों, कर्मियों और मानव दिवस कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान करीब 120 लाइनमैन और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सरायकेला छऊ को देश की सीमाओं से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाले प्रख्यात नर्तक, कलाकार और छऊ के गहरे जानकार अंचित कुमार आचार्य का निधन हो गया। उन्होंने 87 वर्ष की आयु में राउरकेला स्थित अपने आवास पर सुबह अंतिम सांस ली। उनके निधन से सरायकेला के छऊ कलाकारों और कला जगत में शोक की लहर है। खेलो इंडिया अस्मिता ट्रैक

साइकिलिंग स्टेट लीग 2026 का रांची के खेलगांव स्थित सिद्धू कानू वेलोड्रोम स्टेडियम में शुभारंभ हुआ, जिसमें राज्य के 15 जिलों की महिला साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में वुमेन एलीट और वुमेन जूनियर वर्ग की विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों ने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार के संयुक्त सचिव ए मुथु कुमार का पश्चिमी सिंहभूम दौरा, प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना की समीक्षा की, जागरूकता रथ को किया रवाना। दुमका का मसानजोर डैम बनेगा मत्स्य उत्पादन और व्यापार का बड़ा हब, केंद्र की इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग योजना से रोजगार के खुलेंगे नए अवसर। झारखंड के हर जिले में आईसीयू की सुविधा सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा, टेली आईसीयू के माध्यम से लोगों को मिल रही मदद। चतरा पत्थलगढ़ा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के लिए रेलवे ने तेज की सर्वे प्रक्रिया, रेलखंड की ड्रोन वीडियोग्राफी को मिली मंजूरी। और रांची में खेलो इंडिया अस्मिता ट्रैक साइकिलिंग झारखंड लीग का आयोजन, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हुए सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अनुरंजनी। कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं सिप्रा बोस।

सेफ्टी ही है गारंटी, क्योंकि पीएनजी है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 0654125300 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद बीपीसीएल पीएनजी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार थी सिप्रा बोस। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ।
1: श्रोताओं, आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं उस विषय का नाम है मेरी बेटी मेरा अभिमान। श्रोताओं, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे आसपास गांव शहरों में बेटियों को लेकर कैसी कैसी बातें सामने आ रही हैं। आजकल ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनके घर में एक लड़के का जन्म हो। हर 100% में से 90% लोगों की उम्मीद लड़कों पर ज्यादा रहती है, पर अगर लड़के के जन्म की जगह लड़की का जन्म हो जाता है तो वह लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और उसके साथ बुरा बर्ताव करने लग जाते हैं। हमारी आज की नई पीढ़ी में बहुत बदलाव आ गया है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी लोग पुरानी अवधारणाओं को मानते हैं। हमारा आज का नाटक इसी विषय पर आधारित है कि किस तरह एक औरत को गर्भ अवस्था में सारे ससुराल वाले प्यार करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं कि उनकी बहू एक बेटे को जन्म देगी और उनका वंश आगे बढ़ाएगी, परंतु जब लड़की का जन्म हो जाता है तो उससे कैसा बुरा बर्ताव करते हैं और वह औरत कैसे साहस के साथ जिंदगी की लड़ाई को लड़कर जीत लेती है और कैसे अपनी बेटी को अकेले जिंदगी में सफल बनाती है। आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
2: सुमन, सुमन बेटा, जल्दी से दरवाजा खोलो। कहाँ हो तुम? जल्दी दरवाजा खोलो।
3: पिताजी, आ गए आप? क्या हुआ, आप ऐसे जोर जोर से आवाज क्यों लगा रहे हो? सब ठीक तो है ना पिताजी?
2: सब ठीक है बेटा, मेरे लिए जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ क्योंकि फिर मुझे बाजार भी जाना है।
3: पिताजी, अभी तो आप आए हो और फिर दोबारा इतनी जल्दबाजी में बाजार क्यों जा रहे हो?
2: बेटा, तुम्हारी बुआ का फोन आया था, वो बता रही थी कि तुम्हें देखने के लिए आज शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। तुम तैयार है ना? मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ।
3: पर पिताजी, माँ के जाने के बाद आपकी और घर की देखरेख मैं ही करती हूँ, पर अगर मैं भी शादी करके चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको खाना बनाकर कौन खिलाएगा?
2: अरे बेटा, हर लड़की को एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम बेफिक्र रहो।
3: ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो।
1: इस प्रकार शाम को सुमन को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। उन्हें सुमन बहुत पसंद आती है, सुमन के घर वालों को भी लड़का बहुत पसंद आता है और फिर रिश्ता पक्का हो जाता है। 2 महीने बाद सुमन की शादी हो जाती है और सुमन अपने ससुराल चली जाती है।
4: सुमन बेटा, यहाँ आना, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
3: माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ।
5: सुमन, मेरे लिए खाना लगा दो।
3: जी, अभी लाई खाना।
4: सुमन, मेरे कपड़े धो देना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है।
3: जी दीदी, धो रही हूँ अभी।
4: हे भगवान, इस घर में कोई भी काम समय पे नहीं होता, एक काम करवाने के लिए 4-4 बार बोलना पड़ता है। मैंने कब से चाय के लिए बोला था, पर तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता। बड़ी बहू को देखो, घर बच्चे ऑफिस सब कुछ आराम से संभाल लेती है।
3: ये लीजिए माँ, आपकी चाय। वो मैं सुरेश को खाना दे रही थी ना, इसीलिए चाय लाने में देरी हो गई है।
4: ठीक है, जाओ जाकर और काम कर लो।
5: सुमन, यहाँ आओ।
3: जी बोलिए, कुछ चाहिए था क्या आपको?
5: यहाँ टेबल पर मेरी एक फाइल रखी थी और वो फाइल मुझे मिल नहीं रही है, मुझे मीटिंग में भी जाने के लिए देरी हो रही है।
3: नहीं जी, मैंने तो टेबल पर कोई फाइल नहीं देखी। आप रुकिए, मैं कमरे में ढूंढती हूँ।
5: रहने दो, तुम क्या फाइल को ढूंढोगी, तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं।
3: जी मुझे याद आया, वो बड़ी भाभी के बच्चे सुबह सुबह एक फाइल को लेकर गए थे, मुझे लगा कि शायद बड़ी भाभी ने ऑफिस के काम के लिए मंगवाई होगी।
5: अरे यार, कैसी अनपढ़ औरत पल्ले पड़ गई है, तुमसे ठीक तो भाभी है जो सारे काम को और पूरे ऑफिस को सही ढंग से मैनेज कर लेती है। अगर भाभी को फाइल चाहिए होती तो वो सीधा वो मुझसे मांगती, बच्चों से थोड़ी ना कहती।
3: आप एक बार भाभी से पूछ लीजिए, शायद वो फाइल अपने ऑफिस में लेकर गई होगी।
5: ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
3: एक बार बड़ी भाभी के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद बच्चों ने फाइल वहीं रखी हो। अरे बच्चों, ये तुमने क्या किया? यह फाइल तुम्हारे चाचा जी की थी और तुमने इसे फाड़ दिया। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? बड़ों की चीजों को हाथ नहीं लगाते।
1: शाम को आरती के बच्चे रोते हुए अपनी माँ आरती के पास जाते हैं और झूठ बोलते हैं कि हमारी सुमन चाची ने हमें बहुत सारा मारा। फिर आरती सुमन के पास आकर उसे बहुत बुरा बर्ताव करती है और गुस्से में उसे यहाँ तक बोलते हैं कि खुद तो शादी को 4 साल हो गए और घर को एक वारिस भी नहीं दे सकी और मेरे बच्चों को देखकर जलती रहती है। इन सब बातों को सुनकर सुमन हर समय उदास रहने लग जाती है। वो हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाती है और आखिरकार कुछ महीनों बाद सुमन को माँ बनने की खुशी मिल जाती है और सुमन बहुत खुश होती है। इस तरह सभी खुश होते हैं और सुमन की भी प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो जाते हैं। डिलीवरी का समय आ जाता है।
4: सुमन बेटा, तुम्हारी डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है। अब जल्दी से मुझे मेरे पोते का मुंह दिखा दो। अब और इंतजार नहीं होता।
3: पर माँ जी, पोते ही का क्यों? अगर लड़की हुई तो वो भी तो आपके ही बेटे का अंश होगी।
4: देखो सुमन, ऐसी खुशी के मौके पर ये लड़की का नाम मत लो। मुझे देखो, मेरे पास भी 2 लड़के हैं और तुम्हारी बड़ी जेठानी उसको देखो, उसके पास भी 2 लड़के हैं और लड़कों से ही वंश आगे बढ़ता है।
5: हाँ सुमन, मुझे भी मेरा राजकुमार प्यारा सा बेटा चाहिए। मेरे दिल में बेटे को लेकर बहुत सारे अरमान हैं।
3: ठीक है जी, जैसे परमेश्वर की इच्छा होगी। हाय, मर गई। बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं होता। कोई है क्या? मुझसे सहन नहीं होता दीदी। माँ जी, मेरे पास आओ, मुझे अस्पताल लेकर चलो।
4: सुमन, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो?
3: दीदी, मुझे अस्पताल लेकर चलो। मुझे डिलीवरी का पेन हो रहा है और मुझसे सहन नहीं हो रहा।
4: सुमन रुको, मैं अभी देवर जी को फोन करती हूँ, वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं।
3: जल्दी करो दीदी।
4: हेलो देवर जी, आप जल्दी घर आ जाइए, सुमन को लेकर हॉस्पिटल जाना है।
5: ठीक है भाभी जी, मैं अभी आता हूँ। चलो सुमन, जल्दी अस्पताल चलते हैं।
2: आप सभी में से सुमन के साथ कौन आए हैं?
5: हाँ जी डॉक्टर साहब, बोलिए।
2: क्या आप सुमन के पति हैं?
5: जी।
2: बधाई हो, आपके घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है।
5: डॉक्टर साहब, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है, सुमन को तो लड़का हुआ होगा ना?
2: आप कैसी बातें करते हो, सुमन को एक प्यारी सी लड़की हुई है।
1: सुमन के ससुराल वालों की चाहत ये थी कि सुमन एक लड़के को जन्म दे, परंतु जब सुमन ने एक लड़की को जन्म दिया तो उनके घर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया और सुमन की सास और उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया और सुमन की सास ने उससे कहा कि इस मनुष्य को लेकर मेरे घर से निकल जा, क्योंकि तू हमारे घर को एक चिराग नहीं दे सकती। इस तरह सुमन ससुराल को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई और सुमन को अपने मायके आए हुए अपनी बेटी के साथ 5 साल बीत गए।
2: सुमन बेटा, तुमसे मिलने हमारे गांव के स्कूल के मास्टर जी आए हैं, वो तुमसे तुम्हारी बेटी के बारे में बात करना चाहते हैं।
3: नमस्ते सर जी, कैसे हो आप?
6: नमस्ते सुमन, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो और आपकी बेटी कैसी है?
3: मैं ठीक हूँ सर जी, बस अपनी बेटी के भविष्य की चिंता रहती है, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ लिख नहीं सकी, अब मेरी बेटी का भविष्य भी पता नहीं कैसा होगा।
6: सुमन बेटा, आपके पापा ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है और आपके ससुराल की स्थिति के बारे में भी बता दिया है। आप बेफिक्र रहो, आपकी बेटी का भविष्य सुरक्षित है।
3: भविष्य सुरक्षित है, पर कैसे?
6: क्या आपको नहीं पता सरकार लड़कियों के लिए कितनी सुविधा प्रदान कर रही है? अब कोई भी लड़की अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं है।
3: सर जी, आप मुझे विस्तार से इस बारे में समझाइए, ताकि मैं अपनी बेटी का भविष्य को उज्जवल बना सकूं।
6: सुमन बेटा, अब सरकार लड़कियों का जो

0: पढ़ाई का खर्चा है मुफ्त में उठाती है। स्कूल में लड़कियों के लिए मिड डे मील और स्कूल की वर्दी की व्यवस्था की गई है।
1: अच्छा सर जी, सरकार लड़कियों के लिए इतनी व्यवस्था करती है?
0: हाँ बेटा, सरकार ने लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं।
1: धन्यवाद सर जी, आज आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। अब मैं अपनी बेटी को बेफिक्र होकर पढ़ाऊंगी और उसके सपनों को पूरा भी करूंगी।
2: इस तरह सुमन अपनी बेटी को बहुत पढ़ाती है और उसकी बेटी सुहानी पढ़ लिख कर एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है और शहर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में सुहानी की ड्यूटी होती है। और सुमन और उसके पिता इस बात से बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन सुमन की सास की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और सुमन की सास को उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जिसमें सुहानी की ड्यूटी होती है। पर सुमन के ससुराल वाले इस बात को नहीं जानते थे।
3: हाय, मैं मर गई, मैं मर जाऊंगी बेटा, अब शायद मैं नहीं बचूंगी।
4: अरे माँ, आप ऐसा मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगी।
3: हाँ माँ जी, आप ठीक हो जाओगी, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाय, मुझे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझसे सहन नहीं हो रहा है।
4: डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया, आप प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए।
3: आप चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी।
4: धन्यवाद डॉक्टर साहब।
3: आपकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है, अब वो खतरे से बाहर हैं, परंतु अगर उनको यहाँ लाने में थोड़ी सी देर हो जाती तो शायद हम उनको नहीं बचा पाते।
4: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, सुमन की सास का ट्रीटमेंट होने के बाद जब सुमन की सास खतरे से बाहर आ जाती है तभी अचानक से सुमन भी वहाँ आ जाती है।
3: माँ, आप यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना?
4: सुमन, तुम यहाँ, और ये डॉक्टर तुम्हें माँ क्यों बोल रही है?
5: सुरेश, यह मेरी बेटी है जो आज इतनी बड़ी डॉक्टर है।
3: क्या मतलब, ये तुम्हारी वही बेटी है जिसे हमने घर से बाहर निकाल दिया था?
5: हाँ माँ जी, ये मेरी वही बेटी है जिसको आपने अपशगुन कहकर घर से निकाल दिया था। पर देखिए, आज इस बेटी ने ही आपको नई जिंदगी दी है, आपको मौत के मुँह से बाहर निकाला है।
3: मुझे माफ कर दो सुहानी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा यही समझती थी कि लड़के ही घर का चिराग होते हैं और लड़कों से ही घर रोशन होता है।
6: दादी जी, अगर मेरी माँ मेरा साथ ना देती और मुझे इतना पढ़ाती लिखाती नहीं तो शायद मैं आज इतनी बड़ी डॉक्टर ना बनती। और मुझे और मेरी माँ को मेरी लड़की होने पर बहुत गर्व है।
4: सुमन, मुझे माफ कर दो, आज तुमने हमारी आँखें खोल दी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती, बल्कि अगर उनका साथ दिया जाए तो वो घर का चिराग बनकर घर को रोशन करती है।
5: आप ठीक कह रहे हैं और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है।
4: चलो सुमन, हमारी बेटी के साथ घर चलो।
3: हाँ बहू, अब घर चलो।
5: आज मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी मेरा अभिमान है, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है।
2: श्रोताओं, बेटियां परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है और यह अनमोल तोहफा किसी किसी को नसीब होता है।
7: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर अनुभवों को हमसे साझा करें, तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिसका आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
0: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
0: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
4: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई, भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
0: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
5: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का GDP पूरे यूरोप अमेरिका के GDP से ज्यादा है और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में ये आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है।
1: जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
0: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गीर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, कार्यक्रम जय भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म सिटी लाइट्स सिटी लाइट्स के इस खूबसूरत गीत के साथ स्वर है अरिजीत सिंह के और धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

दोस्तों श्रेया घोषाल के स्वर में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म सिंघम से। इस गीत को की रचना की है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत बद्ध किया है अजय गोगावले और अतुल गोगावले ने।

0: सेफ्टी ही है गारंटी, क्योंकि पीएनजी है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 06541253000 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद बीपीसीएल पीएनजी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म वीरजारा से। इस गीत को गाया है उदित नारायण ने, संगीत दिया है मदन मोहन ने और रचना है जावेद अख्तर की।

दोस्तों, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के स्वर में आइए सुनते हैं अगला गीत। संगीत है आनंद राज आनंद का, रचना है आनंद राज आनंद और देव कोहली की फिल्म का नाम है मेजर साहब।

दोस्तों कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: इसी प्यारे से गीत के साथ हमारा कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जीएसएससी नियुक्ति घोटाले की सीआईडी जांच में लीपापोती किए जाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली नेताओं, अधिकारियों और बिचौलियों के नाम सामने आने पर बयानों से उन्हें हटाने और छोटे आरोपितों पर कार्रवाई कर बड़े आरोपितों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री मरांडी ने आज कहा कि बयानों की पूरी वीडियोग्राफी हो और मूल वीडियो बयान तथा सभी डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएं ताकि जांच में किसी तरह की छेड़छाड़ न हो। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का आग्रह किया है। धनबाद जिले के कतरास स्थित केशलपुर कुमारपट्टी में आज सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धंसने से 3 लोगों की मौत होने की सूचना है। वहीं कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष विमलेश चौबे ने मृतकों के परिजन के लिए मुआवजा और स्थानीय प्रबंधन से बचाव कार्य तेज करने की मांग की है।
2: मांग हम लोग कर रहे हैं, लोकल जो मैनेजमेंट है और स्थानीय प्रशासन आके कम से कम जो भी यदि है तो उसको रेस्क्यू करके निकाला जाए। अब इसका तो अब कोई विकल्प है नहीं, और हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जो गरीब लोग को मुआवजा मिलना चाहिए उसको चिन्हित करके उसको मुआवजा मिले, किसी का परिवार पेट पालने के लिए कर रहा है।
1: धनबाद के नीरसा स्थित चापापुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में कोयला चोरी के खिलाफ छापेमारी के दौरान सुरक्षा टीम और ग्रामीणों के बीच आज झड़प हो गई, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल में सूखी लकड़ी चुनने गई 70 वर्षीय एक आदिवासी महिला के साथ सुरक्षाकर्मियों ने मारपीट की। ग्रामीणों ने सीआईएसएफ की त्वरित कार्रवाई टीम और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ईसीएल सुरक्षा के 3 वाहनों में तोड़फोड़ की तथा कई सुरक्षाकर्मियों को घेर कर बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने महिला से मारपीट करने वाले सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी, महिला के इलाज और मुआवजे की मांग की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। माल ढुलाई से रेलवे की आय में भी 6.27% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रेलवे ने अगस्त में 5 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए, जिससे 31 अगस्त तक इनकी कुल संख्या 149 हो गई है। रेल मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने 14 अमृत भारत विशेष ट्रेनों को नियमित सेवाओं में बदला गया, जिससे देश में अमृत भारत ट्रेनों की कुल संख्या 86 हो गई है। रक्षाबंधन के दौरान भी यात्रियों की बड़ी मांग को देखते हुए रेलवे ने 25 से 31 अगस्त तक विशेष ट्रेनों में 144 फेरे चलाए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 48 फेरे चलाए गए थे। जामताड़ा जिले के गांधी मैदान में आज से 10 दिवसीय भव्य गणेश महोत्सव और मेला शुरू होने जा रहा है। महोत्सव और मेला आयोजन समिति के सचिव अरूप मित्र ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि मेला परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा मेला परिसर में कई मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं।
3: लोग मेला का आयोजन कर रहे हैं और विशेषकर हम लोग स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये पूजा का आयोजन पवित्रता को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता भी बहुत बड़ी चीज है। साफ सफाई, जगह जगह छोटे छोटे डस्टबिन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। नगर पंचायत को भी हम लोग आग्रह किए हैं, नगर पंचायत की तरफ से समुचित व्यवस्था हम लोग को मुहैया कराया जाएगा, ये आश्वस्त किया गया है।
1: झारखंड में अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चियों समेत 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। लातेहार के बालूमाथ में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में 2 बच्चियां डूब गई। दोनों पोटमाही खड्ड पुल के पास गड्ढे में नहा रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। वहीं दूसरी घटना में खूंटी की रिमिक्स झील में नहाने के दौरान रांची निवासी 20 वर्षीय युवक की गहरे पानी में डूब जाने से मौत हो गई। पुलिस ने आज पत्रकारों को इन दोनों घटनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में, संगीत एस डी बर्मन का है, रचना मजरू सुल्तानपुरी की, फिल्म का नाम है तीन देवियां।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: दोस्तों, कार्यक्रम रांची मेलोडीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्म अकेले हम अकेले तुम का ये प्यारा संगीत, कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में। रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म थ्री इडियट से। इस गीत को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने, रचना है स्वानंद किरकिरे की और संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: टूट पड़े भारतीय सेना।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज अपनी दोस्त अमृता के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म हम आपके हैं कौन से। इस गीत को गाया है एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, बोल लिखे हैं देव कोहली ने और सुर से सवारा है राम लक्ष्मण ने।

दोस्तों कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म फना से। इस गीत को गाया है शान कैलाश खेर ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने और रचना है प्रसन्न जोशी की।

0: आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी नियुक्ति घोटाले की सीआईडी जांच में लीपापोती किए जाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली नेताओं, अधिकारियों और बिचौलियों के नाम सामने आने पर बयानों से उन्हें हटाने और छोटे आरोपितों पर कार्रवाई कर बड़े आरोपितों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। धनबाद जिले के कतरास स्थित केशलपुर कुमारपट्टी में आज सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धंसने से 3 लोगों की मौत होने की सूचना है। वहीं कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष विमलेश चौबे ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा और स्थानीय प्रबंधन से बचाव कार्य तेज करने की मांग की है। धनबाद के निरसा स्थित चापापुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में कोयला चोरी के खिलाफ छापेमारी के दौरान सुरक्षा टीम और ग्रामीणों के बीच आज झड़प हो गई, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए।

0: इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा। कार्यक्रम में आज आप चर्चा का विषय होगा अपनी भाषा अपनी पहचान, हिंदी अपनाएं, ओजोन परत बचाएं, धरती को सुरक्षित बनाएं। बाल गीत जानकारी होगी जंगल हमारा जीवन, प्रेरक व्यक्तित्व एम विश्वसरैया, सूत्रधार है अवधेश कुमार, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की है।

0: जय हिंद बच्चों।
1: बच्चों, आप सब जब अपने मित्रों से मिलते हैं तो कैसा लगता है? कितनी सारी बातें करते हैं, है ना? और आप सबको दोस्तों के साथ बातचीत करना कितना पसंद है, ये तो हम जानते ही हैं। कभी कभी तो कक्षा में बातचीत करने के लिए आपको डांट भी मिली होगी, है ना? तो बच्चों, हमें अपने विचारों को व्यक्त तो करना ही चाहिए, लेकिन पढ़ाई के समय नहीं। पढ़ाई के वक्त आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए।
0: बच्चों, आपने तो पढ़ा ही होगा कि विचारों के आदान प्रदान को हम किसी भाषा के माध्यम से करते हैं। आप सबकी कोई ना कोई मातृभाषा होगी।
1: वैसे आप ये भी जानते होंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और कल यानी 14 सितंबर को हम हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था।
0: बच्चों, पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था, और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता फैलाना और इसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना।
1: हाँ, हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यह दिन हमें अपनी संस्कृति, एकता और राष्ट्रीय पहचान की याद दिलाता है।
0: और बच्चों, इस अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में भाषण, निबंध और कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली लोकप्रिय भाषा है बच्चों, और इस दिन को मनाने से नई पीढ़ी हिंदी के महत्व को समझते हैं और इसके प्रति जागरूक भी रहते हैं।
1: और हमें अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए और इसके विकास में योगदान भी देना चाहिए। बच्चों, आइए आज आपको हिंदी भाषा के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। हिंदी भाषा की जड़ें जो हैं वो प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत से जुड़ी हैं।
0: हिंदी को जिस लिपि में लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं देवनागरी लिपि, जो पूरी तरह से उच्चारित है, यानी इसे जैसे बोला जाता है बिल्कुल वैसे ही लिखा भी जाता है।
1: हाँ, और हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द हिंद से हुई, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि।
0: हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की एक अनोखी बात यह है बच्चों कि इन्हें उल्टा लिखने या दर्पण में देखने पर भी इनका कोई दूसरा रूप नहीं बनता।
1: वाह, ये तो बहुत ही रोचक बात है। और भारत के अलावा मॉरिशियस, फिजी, नेपाल, सूरीनाम जैसे कई देशों में हिंदी प्रमुखता से बोली और समझी जाती है।
0: बच्चों, हमें हिंदी के महत्व को समझना चाहिए और इसे बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए।
1: और अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं, जैसे मैं छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगी बच्चों आपको कि कैसे हम हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, यानी कोई व्यवसाय करते हैं। तो अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं तो साइन बोर्ड, सूचना पट वगैरह जितनी भी चीज़ें लिखी रहती हैं दुकान के बाहर, उन्हें हिंदी में ही बनवाएं और हिंदी की टाइपिंग भी अवश्य सीखें।
0: बच्चों, हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। हिंदी बोलने के क्रम में अंग्रेजी उसमें शामिल ना करें।
1: हाँ, जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हिंदी शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर बोलते हैं। तो ये बोलने में आसान तो लगता है नई पीढ़ी को, लेकिन ऐसा करने से हमारी हिंदी कमज़ोर हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो बिल्कुल हिंदी में ही बोलें और देवनागरी लिपि का अभ्यास बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि जब कभी हम व्हाट्सएप में कोई मैसेज भेजते हैं या कहीं भी कुछ टाइप करते हैं तो हम हिंदी में

0: ज़रूर अपने विचारों को भेजते हैं, लेकिन उसे हम रोमन लिपि में लिखकर भेजते हैं, है ना।
1: तो ऐसा करना है बच्चों कि अगर आप व्हाट्सएप का उपयोग अगर आप करते हैं तो आप उस पर हिंदी का ही प्रयोग करने की कोशिश करें।
0: हिंदी का प्रयोग यानी देवनागरी लिपि में करने का प्रयोग करें, नहीं तो आपका जो अभ्यास है वो छूट जाएगा और फिर आप हिंदी लेखन में कमज़ोर हो जाएंगे। तो अपनी भाषा हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक करें और इसका सम्मान भी करें। हम ये नहीं कहते कि हमें दूसरी भाषा नहीं सीखनी चाहिए, जैसे अंग्रेजी है भाषा तो वो एक वैश्विक भाषा है और काफ़ी ज़रूरी है सीखना, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है या राष्ट्रभाषा हम कह सकते हैं उसके महत्व को समझें और उसका बहुत सम्मान करें।
1: मतलब आप दूसरी भाषाओं का सम्मान तो करते ही हैं, दूसरी भाषा भी आप सीखते हैं और सीखना भी चाहिए, लेकिन अपनी भाषा को नहीं छोड़ना है।
0: हाँ, और आप स्कूल में हो या कहीं भी हो, अपने दोस्तों के साथ हो, यूं तो कुछ स्कूलों में ये नियम होता है कि उन्हें अंग्रेजी में ही बातें करनी होती हैं, लेकिन अगर आप अपने मित्रों के साथ भी हिंदी में, अच्छी हिंदी में बातें करेंगे तो आप हिंदी में भी अच्छे बनेंगे और आपकी हिंदी मजबूत होगी। और जब आप लाइब्रेरी जाएं, पुस्तकालय जाएं, तो वहाँ अंग्रेजी की किताबों के साथ साथ हिंदी की भी अच्छी अच्छी किताबें लें और उन्हें पढ़ें।
1: तो दीदी, ये तो बात हुई हिंदी दिवस के बारे में और हिंदी के महत्व के बारे में, और अब हम बच्चों को क्या जानकारी देने जा रहे हैं?
0: अब हम बच्चों को जानकारी देने जा रहे हैं ओजोन परत के बारे में और किस तरह से ओजोन परत को बचाना चाहिए, क्योंकि ओजोन परत जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं वो किस प्रकार हमारे धरती को सुरक्षित बनाता है, ये हम आज जानेंगे।
1: बच्चों, प्रकृति, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा या अभी अपनी कक्षा में पढ़ रहे होंगे।
0: जरूर पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ओजोन परत यानी ओजोन लेयर है क्या। बच्चों, ओजोन परत हमारे वायुमंडल में स्थित एक सुरक्षा कवच है, हम कह सकते हैं, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। और ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह से 15 से 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यदि यह परत ना हो बच्चों, तो मनुष्यों में त्वचा कैंसर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का नुकसान होता है, क्योंकि जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। ओजोन परत जो है पेड़ पौधों, फसलों और जलीय जीवों को भी नुकसान से बचाती है।
1: बच्चों, हमारे रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलने वाले जो गैस होते हैं जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, तो इस तरह के जो गैस हैं वो ओजोन परत को पतला करते हैं, उनको कमजोर करते हैं,
0: बिल्कुल नुकसान पहुंचाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे आमतौर पर हम CFCs के नाम से जानते हैं, और कुछ वर्षों पहले ये पाया गया था बच्चों कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत है उसमें वैज्ञानिकों ने ये देखा कि एक छेद सा हो रहा है, यानी कि ये परत वहाँ पर इतनी पतली हो गई है कि अब उसके आर पार जा सकती हैं पराबैंगनी किरणें, तो ये बहुत ही चिंता की बात है।
1: तो बच्चों, ओजोन परत एक छतरी के समान है जो पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। तो बच्चों, हमें इस ओजोन परत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारी पृथ्वी सुरक्षित रह सकती है।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी बनती है और सभी देश मिलकर इस दिशा में काम तो कर ही रहे हैं। जैसे इसे बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया, जिसमें हानिकारक रसायनों और गैसों के उत्पादन पर रोक लगाई गई थी, और हर साल 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं।
1: हाँ बच्चों, 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।
0: हाँ, तो इस दिवस को मनाने का कुछ उद्देश्य भी है।
1: बिल्कुल दीदी, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ओजोन परत के क्षरण और इसके बचाव के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है।
0: बिल्कुल सही जानकारी दी आपने, और ओजोन लेयर को बचाने के लिए हम बहुत से कदम खुद उठा सकते हैं, जैसे हर एक देश का नागरिक उठा सकता है। जैसे अगर आप फ्रिज और एसी खरीदने जाते हैं तो खरीदते समय इसका ध्यान रखें, ये सुनिश्चित करें कि वे संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों यानी गाइडलाइंस के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल हों।
1: और साथ में ये भी हमारी आदतों में शुमार करना होगा दीदी कि हम कम से कम एसी और रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करें।
0: और दूसरी बात ये है बच्चों कि निजी वाहनों का प्रयोग कम से कम करें। अगर आपको थोड़ी ही दूर पर जाना है तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कार निकालें, स्कूटी या मोटरसाइकिल निकालें। आप या तो पैदल जा सकते हैं या आप साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत सारे लोग एक ही वाहन में जा सकते हैं,
1: क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होगा
0: प्रदूषण उतना ही बढ़ेगा
1: और साथ में ओजोन परत भी कमजोर होता चला जाएगा।
0: हाँ।
1: और जिसके दुष्परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो दीदी बच्चों को जानकारी तो हमने बहुत सारी दे दी।
0: हाँ।
1: लेकिन अब उनका कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, तो चलिए हम बच्चों को सुनाते हैं बाल गीत।
2: चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया,

आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया।

मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: चूहा भी आया बंदर भी आया छन छन करके आई चिड़िया
1: वाह बड़े ही मधुर गीत थे और अब बच्चे जो कुछ लेकर आए हैं तो हम उन्हें भी सुन लेते हैं।
2: बिल्कुल क्या नाम है आपका?
3: नमस्कार मेरा नाम श्रेया है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चतुर चित्र का। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहाँ आ गया यम राजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रहा न गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत हुई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बतोर, बड़े ध्यान से देखने लगा चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब आप मुंह तो उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिरा कर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमा कर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर क्यों हुई देर। झील किनारे नाव लगी थी एक रखा था बास, चित्रकार ने नाव पकड़ कर लीजी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चला कर निकल गया वह बहुत दूर, इधर शेर धा धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला नाव जरा सी रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए आप अपने पास, चित्रकार का आप कीजिए जंगल का अभ्यास। धन्यवाद।
2: बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। आपका नाम क्या है?
4: नमस्कार मेरा नाम शिवान शेखर है।
2: क्या सुनाएंगे अपने दोस्तों को?
4: मैं आज आप सभी को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है उल्टा पुल्टा। चलते चलते नीचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही उछल देती अपने आप। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली हंसता है आंखें नीचे। तिल चट्टे चीते जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, झटक हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। चीटी गिरती मकड़े गिरते गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस खोकर कभी न अपनी आँख मलते। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। धन्यवाद।
2: वाह बहुत अच्छी कविता।
5: तो बच्चों को सुनकर के बहुत अच्छा लगा दीदी, और बहुत अच्छी कविता उन्होंने सुनाई। और अब हम कुछ और जानकारी बच्चों को देने वाले हैं, और अगली जानकारी हमारा जंगल के ऊपर है।
1: हाँ, क्योंकि हम अभी प्रकृति की बात कर रहे थे, वातावरण वायुमंडल की बात कर रहे थे, जो ओजोन लेयर के बारे में बात कर रहे थे, तो जंगल भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। और हमारे जीवन और पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए जंगल अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों, और इनके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वन जो है जंगल, ये हमें कितना कुछ देते हैं?
5: बहुत कुछ देते हैं।
1: हाँ
5: बच्चों, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और सबसे ज्यादा पेड़ पौधे तो जंगल में ही होते हैं, और ये ऑक्सीजन को हम लोग प्राणवायु भी कहते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे जीने के लिए ये
5: बहुत जरूरी
1: अनिवार्य है।
5: बिल्कुल, और जंगल प्रकाश संश्लेषण के जरिए हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, जिससे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हमें मिलती है।
1: बिल्कुल, ऑक्सीजन के स्तर को ये बढ़ाते हैं, और साथ ही एक और जरूरी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को भी ये नियंत्रित करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना, उसके लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। और अभी तो बारिश का मौसम है, तो बच्चे तो बारिश का बहुत आनंद ले रहे होंगे, है ना? लेकिन कभी बच्चों आपने सोचा है कि बारिश कैसे होती है? और अभी जैसे आप अपने सिलेबस में पढ़ते रहते हैं, तो वाटर साइकिल यानी जल चक्र के बारे में भी भैया बच्चों ने पढ़ा ही होगा।
5: बिल्कुल, और बच्चों को पता भी होगा।
1: तो जल चक्र एक चक्र है, एक साइकिल है, कि किस तरह से नदियों तालाबों और जितने भी जलाशय हैं उनसे पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है क्योंकि सूरज की गर्मी उसे भाप बना देती है। और जब वे ऊपर जाते हैं बच्चों तो क्या होता है, वहाँ पे वे ठंडे हो जाते हैं और बादलों का रूप ले लेते हैं। और जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो इनसे वर्षा होती है। और इसी प्रकार ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो यही है जल चक्र। तो इसमें पेड़ों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि पेड़ वाष्पीकरण में मदद करते हैं, क्योंकि पेड़ों से भी जो पानी है ना वो भाप बनकर उड़ता रहता है।
5: और फिर जो पानी खींचते हैं वो धरती से ही लेते हैं और फिर वाष्प के रूप में वो आकाश में चला जाता है और फिर वही बारिश बनकर के फिर से बरसता है।
1: तो जल चक्र को नियमित रखने में पेड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है और ये वर्षा लाने में मदद करते हैं। और अगर जंगल नहीं रहेंगे या बहुत ज्यादा पेड़ कट जाएंगे तो जल चक्र जो है वो नियमित नहीं रह पाएगा। वो असंतुलित हो जाएगा। यानी कहीं कहीं पर हम देखेंगे कि बहुत बारिश हो गई और कहीं कहीं पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई।
5: और इसके साथ साथ बच्चों, जो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती हैं जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा कम होता है।
1: हाँ, और जब बारिश होगी तो अगर मिट्टी बंधी हुई रहेगी एक जगह पर, जो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है वो बहेगी नहीं, मतलब ये जो मिट्टी है इसके कटाव को पेड़ रोकते हैं। तो है ना, जंगल कितने

0: आवश्यक हमारे लिए।
1: और वन्य जीवों का घर भी तो है दीदी।
0: हाँ, कितने सारे जीव जंतु हैं जो जंगलों में रहते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि बड़े से बड़ा जानवर और छोटे से
1: से
0: छोटा
1: छोटे
0: जानवर,
1: जानवर
0: जिसमें कीड़े मकोड़े,
1: सब
0: तितलियां और चिड़ियां, ये सभी शामिल हैं।
1: उनको ये आश्रय प्रदान करता है।
0: हाँ, तो सभी जंगलों में, कुछ तो जंगलों के पेड़ों के जड़ों में अपना घर बनाते हैं, कुछ पेड़ों के ऊपर रहते हैं, घोंसले बनाते हैं, और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो पेड़ों पर उछल कूद मचाते रहते हैं, जैसे बंदर हुए और उसी प्रकार के अन्य जीव हुए। तो पेड़ जो हैं वो इन जीव जंतुओं का घर होते हैं, तो जंगलों को बिल्कुल भी नष्ट नहीं होना चाहिए, और जो तेजी से जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो इन जीव जंतुओं का घर भी बर्बाद हो रहा है। और प्रदूषण पर भी नियंत्रण करते हैं जंगल हमारे जो हैं, क्योंकि शुद्ध हवा हमें जंगलों से ही मिलता है, और जंगल ना सिर्फ हवा को शुद्ध बनाते हैं बल्कि पानी को भी शुद्ध बनाते हैं। और साथ साथ एक और भी रोचक बात है, बच्चों में बताना चाहूँगी कि जितनी भी आवाज़ें हैं, जितना भी शोरगुल है ना शहरों का, वो सभी जंगल के पेड़ इस ध्वनि को सोख लेते
1: सोख
0: हैं,
1: लेते हैं।
0: तो इससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है ना, ये बहुत ही रोचक बात।
1: और इसके साथ ही साथ जंगलों से बच्चों बहुत सारी जो औषधियां हैं वो हमें मिलती हैं। फल फूल तो मिलते ही हैं, लकड़ियां तो हमें मिलती ही
0: हाँ,
1: हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाएं जो बनाई जाती हैं वो जंगल से ही हमें प्राप्त होते हैं।
0: और जीवन रक्षक जड़ी बूटियां जो हैं जिससे दवाइयां बनती हैं वो सभी हमें जंगलों से ही मिलती हैं।
1: तो हमारे जीवन में बच्चों जंगलों का बहुत ज़्यादा महत्व है, और ऐसे में हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम जंगलों को बचाएं।
0: तो संसाधन हमें कितने सारे मिलते हैं, इसकी तो गिनती हम कर ही नहीं सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: अगर हम देखें तो हमारे जीवन का हर एक पहलू, जैसे खाने पीने की चीज़ों से लेकर घर बनाने से लेकर जो फर्नीचर हम इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ हो गई या और भी चीज़ें जैसे शहद है या फिर और भी लाह है, ये सभी हमें जंगलों से ही
1: जंगलों से
0: मिलते
1: ही
0: हैं।
1: मिलते हैं।
0: तो हमें जंगलों की देखभाल करनी चाहिए बच्चों।
1: और कोशिश करनी चाहिए बच्चों कि हमें अपने घर के आसपास एक पेड़ या एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके आपके पास जगह नहीं है तो कम से कम अपनी छत पर, अपनी बालकनी में कम से कम पौधे जरूर लगाएं गमले में।
0: बिल्कुल, हम वृक्षारोपण करके ही जंगलों को बचा सकते।
1: तो दीदी ये तो जंगल बचाने की बात हुई कि जंगल हमारा जीवन है। अब हम बच्चों को जो हर हफ्ते एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं, तो बच्चों आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिनका नाम भारत के महान इंजीनियरों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, और उनका पूरा नाम था सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया।
0: हाँ बच्चों, हर साल 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, और यह दिन सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्हें भारत के महान इंजीनियर, योजनाकार और राष्ट्र निर्माताओं में गिना जाता है। वर्ष 1955 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सर एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के वर्तमान चिकबल्लापुर जिले के मुदेनहल्ली गांव में हुआ था। उस समय यह क्षेत्र मैसूर राज्य का हिस्सा था। उनके पिता का नाम मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री था। वे संस्कृत के विद्वान थे। उनकी माता का नाम वेंकट चम्मा था। परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन घर में शिक्षा, संस्कार और अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता था।
1: बच्चों बड़ा बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जन्म किसी बहुत अमीर परिवार में हुआ है। ज़रूरी यह है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा और आगे बढ़ने का हौसला होना
0: हाँ,
1: चाहिए। विश्वेश्वरैया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चिकबल्लापुर में की, और इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु गए। उन्होंने वहाँ वेस्लियन मिशन हाई स्कूल में पढ़ाई की और आगे चलकर सेंट्रल कॉलेज बेंगलुरु में शिक्षा प्राप्त की।
0: हाँ बच्चों, वे पढ़ाई को केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं मानते थे। वे हर काम को गंभीरता और पूरी लगन से करते थे। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल और गणित के प्रोफेसर चार्ल्स वॉटर्स भी उनकी प्रतिभा और कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने विश्वेश्वरैया को अपनी निजी वेबस्टर डिक्शनरी भेंट भी की थी।
1: सोचिए बच्चों, आज हम में से बहुत से बच्चों के पास किताबें, मोबाइल, इंटरनेट और पढ़ाई के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय एक बच्चे के लिए अच्छी किताब मिलना भी बहुत बड़ी बात होती थी। इसलिए हमें उनसे सीखना चाहिए कि सुविधाएं कम हो तो भी सीखने की इच्छा कम नहीं होनी चाहिए।
0: बच्चों, आपको बता दें कि जब विश्वेश्वरैया लगभग 15 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। परिवार के सामने आर्थिक कठिनाइयां भी बढ़ गईं, लेकिन इतनी कम उम्र में पिता को खो देने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला नहीं किया।
1: उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बच्चों।
0: हाँ?
1: और उन्होंने सोचा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, शिक्षा को बीच में नहीं छोड़ना है, और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा है। पढ़ाई के साथ उन्होंने बच्चों को भी पढ़ाया। परिवार की आर्थिक स्थिति कठिन होने के कारण अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए विश्वेश्वरैया ने विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वे छोटे बच्चों को पढ़ाते और उनसे मिलने वाले पैसे से अपनी शिक्षा का खर्च उठाते थे।
0: हाँ, उन्होंने यह नहीं सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ सकता। उन्होंने रास्ता खोजा। यही सफल लोगों की एक बड़ी पहचान होती है, वे समस्या देखकर रुकते नहीं, समाधान खोजते हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद विश्वेश्वरैया ने पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 1881 में बीए की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। वहाँ भी उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा का परिचय दिया।
1: यानी जिस बच्चे के सामने बचपन में आर्थिक परेशानियां आईं, वही बच्चा आगे चलकर भारत के महान इंजीनियरों में शामिल हुआ। तो बच्चों, अगर हम सर एम विश्वेश्वरैया के बचपन को ध्यान से देखें तो हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। और जो पहली सीख है वो ये है कि कठिन परिस्थितियों से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। मुश्किल समय हर किसी के जीवन में आता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई मुश्किल देखकर रुक जाता है और कोई मुश्किल को पार करने का रास्ता खोजता है।
0: हाँ बच्चों, और दूसरी सीख ये है कि पढ़ाई को गंभीरता से लेना चाहिए। विश्वेश्वरैया ने परिस्थितियाँ कठिन होने के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी। तीसरी सीख ये मिलती है कि मेहनत करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए।
1: उनके जीवन में समय की पाबंदी और व्यवस्थित ढंग से काम करने की आदत बहुत महत्वपूर्ण थी। केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, ऐसी उनकी सोच थी।
0: और आगे चलकर विश्वेश्वरैया ने अपने ज्ञान और इंजीनियरिंग की क्षमता का उपयोग देश के विकास के लिए किया। वे सिंचाई, बांध, जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इंजीनियर बने। सर एम विश्वेश्वरैया की कहानी हमें बताती है कि महान बनने के लिए परिस्थितियों का अनुकूल होना जरूरी नहीं है। उन्होंने हमें सिखाया कि मेहनत, अनुशासन, शिक्षा और समस्या का समाधान खोजने की आदत इंसान को बहुत ऊंचाई तक ले जाती है।
1: इसलिए इस इंजीनियर्स डे पे हम केवल इंजीनियरों को शुभकामनाएं न दें बच्चों, बल्कि उनके जीवन से एक संकल्प भी लें। हम खूब सीखेंगे, मेहनत करेंगे, समय का सम्मान करेंगे और अपने आसपास की समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे।
0: क्योंकि हो सकता है आज बाल सभा में बैठा कोई छोटा सा बच्चा भी कल का वैज्ञानिक बन सकता है।
1: तो याद रखिए बच्चों, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम जागकर मेहनत करते हैं।
0: हाँ, तो आइए हम सब सर एम विश्वेश्वरैया की प्रेरणा से ज्ञान, मेहनत और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
1: तो बच्चों, ये थे आज के हमारे प्रेरक व्यक्तित्व, और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है दीदी। तो बच्चों, चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव कुमार पांडे की थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
0: जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण कुछ इस प्रकार है। अब से थोड़ी ही देर में यानी 4:35 से आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांस सरगम। शाम 5 बजे होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी, इतिहास में आज का दिन, साथ ही आप सुन सकेंगे कुछ प्यार भरे फिल्मी गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम श्रमिक लोक। चर्चा का विषय होगा श्रम का सम्मान, देश का अभिमान, काम और परिवार के बीच संतुलन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की जानकारी एवं बचत की आदत, सुरक्षित भविष्य की नींव। शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। छह बजकर 2 मिनट पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। चर्चा का विषय होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नेहा राजन।

6:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। शाम 7 बजे होंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर आप सुनेंगे संताली समाचार पत्रिका। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सेफ्टी ही है गारंटी, क्योंकि PNG है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो PNG। अधिक जानकारी के लिए 06541253000 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद BPCL's PNG।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम सांस सरगम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म जानवर से।

अलका याग्निक एवं सोनू निगम के स्वर में आप सुन रहे थे ये प्यारा संगीत फिल्म जानवर से, शब्द रचना समीर की एवं संगीत आनंद मिलन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बाजीगर से।

बाजीगर फिल्म से आप सुन रहे थे ये गीत कुमार शानू एवं अनु मलिक के स्वरों में, शब्द रचना देव कोहली की एवं संगीत अनु मलिक का। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म पुकार से।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म पुकार से, शंकर महादेवन एवं कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में, संगीत एआर रहमान का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में आखिरी गीत फिल्म पार्टनर से।

0: कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे फिल्म पार्टनर से। क्लिंटन, शान, सुजी एवं उदित नारायण के स्वरों में शब्द रचना संजय शैल की एवं संगीत साजिद वाजिद का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सांस सरगम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी नियुक्ति घोटाले की सीआईडी जांच में लीपापोती किए जाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली नेताओं, अधिकारियों और बिचौलियों के नाम सामने आने पर बयानों से उन्हें हटाने और छोटे आरोपितों पर कार्रवाई कर बड़े आरोपितों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। धनबाद जिले के कतरास स्थित केशलपुर कुमारपट्टी में आज सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धसने से 3 लोगों की मौत होने की सूचना है। वहीं कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन की क्षेत्रीय अध्यक्ष विमलेश चौबे ने मृतकों के परिजन के लिए मुआवजा और स्थानीय प्रबंधन से बचाव कार्य तेज करने की मांग की है। गिरिडीह के बनियाडीह में आज झारखंड सरकार के दिवंगत मंत्री सुदीव कुमार सोनू को श्रद्धांजलि दी गई। झामुमो की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मंत्री हफीजुल हसन सहित पार्टी के कई नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सुदीव सोनू के निधन से झारखंड को अपूरणीय क्षति हुई है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। माल ढुलाई से रेलवे की आय में भी 6.27% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रेलवे ने अगस्त में 5 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए, जिससे 31 अगस्त तक इनकी कुल संख्या 149 हो गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि देश में करीब 87,000 स्वच्छता कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई किट उपलब्ध कराई गई है। मंत्रालय के अनुसार 76,000 से अधिक स्वच्छता कर्मचारियों को स्वच्छ

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी शाम के 5:05 पर आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती। शाम 5:30 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हो अखाड़ा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:02 पर। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। 7:00 आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। 7:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज होने वाले महिला एशिया कप क्रिकेट मैच के भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच का सीधा प्रसारण। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 9:00 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर पुनः क्रिकेट मैच का प्रसारण जारी रहेगा। रात के 11:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 11:10 पर पुनः क्रिकेट मैच का प्रसारण जारी रहेगा। रात के 11:45 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं फिल्म अंश से, कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में।

0: सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जय भारती कार्यक्रम में श्रोता भाई, अब सुनते हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1444-99 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
2: जय भारती कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आ अब लौट चलें फिल्म का ये गीत, कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में।

0: इस गीत के साथ ही जय भारती का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी।
1: सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सब प्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोता मित्रों, किसान भाई बहनों, सब्जी की खेती बारी में कंद वर्गीय मूली की खेती अक्सर हमारे किसान भाई करते ही हैं और इसकी खेती बरसाती या फिर बेमौसमी की जाए तो बहुत ही मुनाफा मिलता है। इनके कंद और साग दोनों ही प्राय अधिकतर लोग पसंद करते भी हैं। तो किसान भाई बहनों, इसकी खेती के लिए अच्छी तरह से जुताई करके भुरभुरे मिट्टी और बलुई मिट्टी होनी चाहिए, जो इनके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अच्छे किस्मों के बीज का आप चयन करें और निश्चित दूरी पर मेड़ के ऊपर ऐसे लगाएं कि ज़्यादा घना भी ना हो और सही गहराई पर बीजों को लगाएं ताकि जल्दी से अंकुरित हो। और किसान भाई बहनों, हो सके तो आप उसमें जैविक खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि कंद भी खराब नहीं होगा और उनका स्वादिष्ट भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। विशेष करके सादे रंग वाले ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। वैसे आमतौर पर लाल और सादा दोनों प्रकार का ये मूली हमारे बाजारों में देखने को मिलता है। अचार बनाए जाते हैं और सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मूली के साग यानी पत्तियाँ ये भी चिकने और कुछ खुरदरे भी होते हैं, लेकिन आप बाजार में गए, जिसका ज़्यादा मांग है आप उसकी ही खेती करें तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या पाचन की दृष्टि से हो, मूली बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो आप इनकी खेती करके न सिर्फ अपने घरेलू उपयोग के लेवल की, व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती आप कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बस आप मौके की तलाश में रहिए, किस समय इसको हम निकालें जो कि बाजारों में इसकी मांग भी हो और इसका मूल्य भी अच्छा मिले। हमें इस तरह से मौके में ही इसे निकालना चाहिए। तो किसान भाई बहनों, अभी हम चर्चा कर रहे थे मूली की खेती पर।
2: क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुन्दर का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए

0: यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई
1: और इसके पश्चात हम कुछ मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक पंच प्रगणिया लोकगीत।

0: इस लोकगीत के पश्चात जानकारी लेते हैं हमारे एक प्रबुद्ध युवा कृषक से। हमारे बीच में है लखीराम पूर्ति जी, जो जानकारी दे रहे हैं उपचारित करके पौधों की रोपाई से कैसे लाभ मिलेगा।
1: किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम में हम एक प्रबुद्ध कृषक से मिलते हैं। हमारे बीच में है लखीराम जी, और आज का जो हमारा विषय है, कोई भी बीज या पौधों के जड़ों को हम उपचारित करके अगर लगाएं तो क्या फ़ायदा है। तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपको, जोहार।
2: हाँ, आप सबों को भी जोहार जो इस चैनल को सुन रहे हैं, सभी किसानों को भी मेरे तरफ।
1: तो लखीराम जी, जैसे हम अक्सर सभी कोई खेती बाड़ी करते हैं और सदियों से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, तो बीजों को उपचारित करना या फिर कुछ पौधों को भी उपचारित करके लगाना आज के ज़माने में या फिर अधिक पैदावार के लिए कितना ज़रूरी है? पहले लोग कैसे करते थे और अभी अगर तुलना करें तो क्या बदलाव देख पा रहे हैं?
2: हम लोग ज़्यादातर अभी किसान खेती पर ही निर्भर है।
1: हाँ।
2: तो और खेती हम लोगों को करना भी चाहिए।
1: हाँ।
2: क्योंकि सब तो खेती नहीं कर पा रहे हैं।
1: हाँ।
2: कुछ लोगों को अनाज चाहिए, सब्जी चाहिए।
1: हाँ।
2: बीज चाहिए।
1: हाँ।
2: तो ये केवल खेती से ही इसको मिल पाएगा।
1: हाँ।
2: और इसके लिए हम सबों को खेती पर जोर अवश्य देना चाहिए। और इसके लिए आजकल विशेष करके पहले का खेती जो था वो पारंपरिक विधि था।
1: हाँ।
2: पारंपरिक बीज का ही उपयोग होता था। पारंपरिक तरीके से ही ये लोग खेती करते थे, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं जैविक खेती भी बोलेंगे। उसमें अपना ही बीज होता था, अपना ही खाद होता था। हाँ, और जो जमीन को तैयार करने का विधि भी वो अपना ही तरीके से ये लोग हल बैल से करते थे। तो इसलिए आज का समय में अगर देखेंगे, वर्तमान समय में अगर देखेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हाँ, अभी सब चीज़ का मांग, बीज का भी मांग अभी बढ़ रहा है।
1: हाँ।
2: और फसल का भी मांग अभी बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से हम सबों को खेती की ओर ध्यान देना जरूरी
1: हाँ,
2: है।
1: जनसंख्या जब बढ़ रही है तो फिर उत्पादन भी ज़्यादा करना ही होगा।
2: हाँ, उत्पादन ज़्यादा करना होगा। कहे कि रोज के लिए, रोजमर्रा के लिए कोई सब्जी तो, कोई फल तो,
1: हाँ,
2: कोई अभी जरूरी है।
1: जरूरी है।
2: हाँ, इसलिए हम सबों को इस खेती पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और भी जो किसान हैं उसको भी हम सबों को इसकी जानकारी देना चाहिए कि खेती को हम लोग किस तरह से फिर इसको हम लोग बेहतर तरीके से कर पाए। हाँ,
1: सही बात।
2: हाँ,
1: तो इस संदर्भ में हम ये कहना चाहें कि जो भी हम बीज या पौधों की रोपाई करते हैं तो कभी कभार होता है कि लगाने के पश्चात काफ़ी वो निराश हो जाते हैं कि पौधा मर गया या फिर झुलस रहा है, सही नहीं फल रहा है। तो इसके लिए पौधों में या फिर बीजों को उपचारित करके अगर लगाना रहे तो फिर उससे क्या लाभ होगा?
2: ये तो बहुत ही अच्छा फायदेमंद है जो उपचार करके अगर हम लोग लगाते हैं। कहे कि पहले का जो पारंपरिक विधि में बीजों को मैंने उतना देखभाल नहीं होता था।
1: अच्छा, अच्छा।
2: जैसे जो बीज लगाते हैं वो छिटने वाला सिस्टम से ये लोग
1: हाल
2: जुताई करके सीधा छीट देते थे।
1: हाँ।
2: उसमें ये भी नहीं पता चलेगा कि आपका जो बीज था उसमें कितना बीज अच्छा निकला।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
2: कितना बीज खराब निकला ये भी नहीं पता चलेगा।
1: अच्छा, अच्छा, हाँ,
2: तो यदि हम उसको एक तो अंकुरण करके या उसको मैंने कुछ दवाई जब अंकुरण घोल करके उसका जड़ को यदि हम उसमें लगा करके लगाते हैं तो हमको पता भी चलता है कि हमने कितना बीज उपचार किया था।
1: हाँ,
2: कितना बीज निकला, कितना बीज मर गया है, कितना बीज सही निकला है।
1: हाँ,
2: इसको हम किसानों को एक अंदाजा भी सीखने के लिए एक अंदाजा हो जाता है। तो जरूरी है उपचार करके ही अगर हम इसको लगाते हैं।
1: हाँ,
2: तो इसमें मैंने बीजों को खराब होने से बचा सकता है और हमको अच्छा फसल भी इसमें
1: फसल भी
2: मिलेगा। हाँ,
1: सही बात।
2: इसलिए बीजों को उपचार करके लगाना ये बहुत अच्छा जरूरी है। हाँ।
1: तो जैसे हल जुताई करते हैं, धान कटाई के पश्चात सब खेत खाली रहता है, और जैसे ही बारिश होती है, नमी हो जाता है, तो फिर उसमें जुताई भी करते हैं। तो जुताई के समय अक्सर आपके क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, किसान भाई कुछ उसमें चूने का व्यवहार या फिर और भी कोई चीज़ का व्यवहार करते हैं क्या?
2: अभी तो देखते हैं वो किसान लोग खेत को तैयार करना कर कर भूल रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा
2: खेत की ओर ध्यान देना, जमीन को बनाना
1: हाँ,
2: आजकल भूल जा रहे
1: पहले
2: हैं।
1: से पूर्व की तैयारी
2: हाँ
1: नहीं कर पा
2: हाँ
1: रहे।
2: पहले के लोग क्या करते थे, जैसा एक दो बार बारिश आया
1: हाँ,
2: जमीन को गर्मी में ही लोग
1: जुताई करते थे।
2: जुताई करते थे। उससे क्या होता था, जमीन में अंदर तक गर्मी पहुंचता है
1: पहुंचता
2: और
1: था,
2: जितने भी जो जमीन में जो
1: हानिकारक जो कीट हैं।
2: हानिकारक जो कीट हैं वो सब से फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
1: हाँ
2: हाँ तो इसलिए आजकल तो क्या होता है, बहुत लोग को देखते हैं कि
1: जब समय
2: जब
1: पहुंचता
2: समय
1: है
2: पहुंचता है
1: तुरंत जुताई शुरू कर।
2: हाँ तुरंत जुताई शुरू, और
1: हाँ,
2: जुताई के साथ ही बीज छींटना
1: अच्छा
2: भी
1: अच्छा
2: बीज
1: अच्छा
2: लगाना भी लोग शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा
2: इससे एक तो उसका जो घास
1: हाँ
2: है
1: हाँ
2: उस हानिकारक कीट वगैरह
1: हाँ
2: है
1: वो तो मर नहीं
2: वो
1: जाता है।
2: मर नहीं जाता है, और इससे बहुत सारा फसलों को नुकसान भी होता है। तो पूर्व से हमको तैयारी, खेत को
1: करनी
2: तैयारी
1: चाहिए,
2: करनी चाहिए, बहुत
1: सही
2: ही
1: बात है।
2: तैयारी करनी चाहिए। अगर पहले से हम तैयारी करेंगे तो उसमें गर्मी पहुंचेगा, एक दो बार अगर पानी होगा तो नमी भी उसमें
1: हाँ, मिट्टी भी भुरभुरा हो जाएगा।
2: मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा।
1: हाँ
2: तो इस हिसाब से अगर हमारा लगाने का टाइम में हम लगाते हैं
1: हाँ,
2: तो उसमें हमको फिर अच्छा फसल
1: अच्छा
2: भी
1: फसल
2: हाँ
1: मिलेगा, सही
2: मिलेगा।
1: बात
2: इसलिए
1: है।
2: खेत को तैयारी करने से पहले गांव में तो एक चीज देखते हैं, गांव का जो भी पत्ता होता है,
1: हाँ,
2: गोबर होता है,
1: अच्छा।
2: उसको लगाते हैं। और कहीं कहीं पर चूने का भी व्यवहार होता है।
1: अच्छा,
2: हाँ और एक चीज यहाँ देखते हैं विशेष करके कि गांव का जो लोग जो किसान हैं मिट्टी का जांच नहीं
1: नहीं
2: करवाते हैं।
1: करवा रहे हैं।
2: हाँ
1: हाँ,
2: मिट्टी का जांच करवाने से उस मिट्टी में क्या बीमारी है
1: सही बात है,
2: और क्या चीज दिया जाना
1: क्या कमी
2: चाहिए,
1: है
2: क्या
1: उसमें,
2: कमी है उसमें, वो चीज पता चलता है।
1: चलता है।
2: हाँ और किसान ऐसे ही खेत में हल जोत लिया और बीज लगा दिए, इसमें बहुत सारा फसल नुकसान हो रहा है
1: हो रहा
2: इसमें।
1: है।
2: हाँ
1: हाँ,
2: इसीलिए
1: मिट्टी जांच से ये भी पता चले कि वो मिट्टी में हम कौन सी फसल लगा सकते हैं, उसके लिए जो उपयुक्त है उसके हिसाब से हम खेती कर सकते हैं।
2: हाँ एकदम एकदम ना, हम उसमें पता कर लेते हैं कि हमारा मिट्टी का उपजाऊ किस कैसा है,
1: हाँ,
2: कौन सा फसल हमको लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो देखते हैं कि गर्मी का फसल नहीं लगता है,
1: हाँ,
2: गर्मी का फसल नहीं लगता है, बहुत लोग दलहन नहीं लगाते हैं, और भी जो फसल होता है कहे कि खेती में ये भी देखा जा रहा है कि एक माने फसल चक्कर का विधि अपनाने से भी फसल अच्छा हो रहा
1: अच्छा
2: है।
1: होता है। हाँ, सही
2: हाँ
1: बात है।
2: हाँ माने
1: हर
2: उसमें
1: साल एक ही फसल को नहीं लगाना
2: नहीं
1: चाहिए।
2: लगाना चाहिए। हाँ अलग अलग वो
1: बदलते हुए।
2: बदलते हुए इसको अगर यदि हम लोग लगाते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते
1: बनाते
2: हैं। हाँ
1: रहता
2: बना हुआ रहता है,
1: है।
2: तो इस तरह से भी हम मिट्टी को उपजाऊ युक्त बना सकते हैं। और आजकल तो देखा जा रहा है कि
1: हाँ, तकनीकी का विकास होते जा रहा
2: तकनीकी
1: है।
2: का विकास होते जा रहा है और आधुनिकीकरण का भी लोग फॉलो कर रहे हैं,
1: हाँ,
2: इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोग अगल बगल से भी सीख रहे हैं कि नहीं क्या नया चीज का तरीका हम अपनाएं, ये चीज आजकल लोग सीख रहे हैं।
1: सही बात है।
2: हाँ
1: तो लखराम जी, जैसे आपका जो क्षेत्र है यह बहुत दुर्गम और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पठारी क्षेत्र है, और यहाँ पर मोटे अनाज के जो भी फसलें हैं जो काफी पारंपरिक तरीके से करते आ रहे हैं तो अभी भी करते होंगे, और जैसे ज्वार बाजरा हुआ, गंगाई हुआ या फिर मड़ुआ हुआ, तो ये सब में तो कोई कीटनाशक या फिर कोई रासायनिक खाद भी इस्तेमाल नहीं होता होगा?
2: हाँ मोटे अनाज का अभी लोग खोज रहे हैं,
1: इसका मांग
2: ढूंढ
1: भी है।
2: मांग भी है कि अब मोटा अनाज को खाना चाहिए पौष्टिकता के
1: पौष्टिक
2: लिए,
1: है,
2: पौष्टिकता के लिए सरकार भी आजकल तो खोज रही
1: खोज
2: है।
1: रही है, सही बात
2: हाँ
1: है।
2: हमारा एरिया में आपको बताएं कि हमारा एरिया में पहले पहले जब हम
1: अच्छा,
2: लोग छोटे ही थे
1: हाँ,
2: उस समय काफी मात्रा में ये ज्वार बाजरा
1: अच्छा,
2: गेहूं और एक छोटा दाना वाला फसल होता था,
1: अच्छा हाँ,
2: उसको और जो सूजी आजकल बनता है ना, आजकल सूजी बनता है तो मड़ुआ से, मड़ुआ दाना के आसपास ही रहता है,
0: अच्छा
2: वैसा ही
0: अच्छा
2: रहता है।
0: हाँ
2: तो वैसा वाला मोटा अनाज का खेती था,
0: हाँ
2: तो अभी वो सब एरिया में वो सब खेती बंद हो गया है
0: हाँ
2: अभी।
0: धीरे धीरे लुप्त होते
2: हाँ,
0: जा रहा
2: बीज
0: है।
2: भी अभी नहीं रखने के कारण से अभी नहीं मिल पा रहा है। और जैसे ज्वार है, बजरा है, मणुआ है,
0: हाँ कोदे वगैरह
2: हाँ,
0: सब।
2: कोदे वगैरह सब है, ये सब का हल्का फुल्का खेती हो रहा है। तो इस पर, इस बार भी हम किसानों को ध्यान देना चाहिए
0: हाँ इसको जारी
2: कि
0: रखना
2: जारी
0: चाहिए
2: रखना चाहिए,
0: क्योंकि
2: क्योंकि
0: ये स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत
2: हाँ, एक
0: पौष्टिक भी है।
2: बहुत पौष्टिक है। आज आजकल मांग हो रही है।
0: मांग हो रहा है, सही
2: हाँ,
0: है।
2: लोग तो मांग के लिए टाउन तरफ जा रहे हैं, लेकिन खेती तो असल में गाँव में
0: गांव में
2: है,
0: होता है।
2: गाँव
0: हाँ
2: में ही है। हाँ, इसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। मोटा अनाज जैसे मड़ुआ हुआ, कोदे हुआ, ज्वार हुआ, बजरा हुआ।
0: हाँ मकई वगैरह।
2: हाँ, कह के पहले बच्चा लोग, जब हम लोग छोटे छोटे थे, आंगनबाड़ी सब में
0: हाँ हाँ
2: यही मकई वाला
0: जो आता है
2: आटा है,
0: हाँ सत्तू के
2: वही
0: रूप में।
2: पौष्टिक सत्व के रूप में यही वाला आता था।
0: हाँ सही
2: तो
0: बात है।
2: इसे पौष्टिकता के लिए बहुत मैंने अच्छा है। तो हम लोग आजकल तो खाली पेट भरने वाला भोजन
0: सही बात है।
2: ले रहे हैं,
0: हाँ।
2: इससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे खाने पे ध्यान नहीं देने के कारण खराब भी हो
0: खराब
2: रहा
0: भी
2: है।
0: हो रहा है।
2: हाँ,
0: हाँ
2: मोटा अनाज की ओर हमको ध्यान देना चाहिए, सभी किसानों को ही ध्यान देना चाहिए।
0: हाँ
2: हाँ,
0: आजकल के जैसे माहौल को और स्थिति को देखते हुए लोगों का जो रहन सहन दैनिक दिनचर्या में भी काफी बदलाव आते जा रहा है, उसका शारीरिक विकास में भी बदलाव आ रहा है। तो कृषि के क्षेत्र में जो भी किसान लोग अभी रासायनिक खाद या फिर कीटनाशकों का व्यवहार कर रहे हैं, इसको आप रोकने के विषय में या फिर जैविक खेती की तरफ आप प्रेरित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे?
2: जरूर, हम लोग, मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ था, चाईबासा का एक संस्था था, शॉर्ट में उसको बिरसा बोलते हैं, बिरसा संस्था था।
0: अच्छा हाँ
2: तो उस संस्था के माध्यम से हम लोगों ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ काम किया है।
0: अच्छा
2: उधर आपका कुमारडोंगी एरिया, आपका मझगांव एरिया,
0: हाँ
2: हमारा इधर कुचाई एरिया, चाईबासा सदर एरिया में भी हम लोगों ने इस विषय पर काम किया है।
0: अच्छा
2: जैसा बीज को रखना,
0: हाँ।
2: अपना पारंपरिक बीज को जो आजकल लुप्त होते जा रहा है, इस बीज को हम लोग कैसे रखें, रख रखाव के बारे में हम लोग उसको बताते थे।
0: अच्छा हाँ
2: फिर जैसे अधिक उपजाव के लिए आजकल लोग कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं,
0: हाँ हाँ
2: कई एक जो बाजार में दवा आ गया है, ये सब का प्रयोग कर रहे हैं।
0: हाँ
2: इस सब से भी हम लोग देखते हैं कि बीज तो जल्दी तैयार हो जाता है,
0: हाँ
2: बाजार में भी आ
0: आ
2: जाता है,
0: जाता है।
2: लेकिन उसको अगर हम लोग खाते हैं तो शरीर में इसका बहुत
0: बहुत
2: बुरा असर,
0: असर होता
2: हाँ,
0: है,
2: बुरा असर
0: बहुत
2: होता
0: जहरीले
2: है,
0: होते
2: बहुत
0: हैं। हाँ
2: जहरीले होते हैं।
0: हाँ
2: क्योंकि हम किसानों को ये नहीं पता है कि ये इसका जो असर है कितने दिनों तक फलों में बना रहता है।
0: हाँ
2: हमको तो बाजार में जल्दी निकालना है,
0: निकालना है। हाँ
2: हाँ, जल्दी हमको पैसा चाहिए। तो इस हिसाब से आजकल स्वास्थ्य पर ध्यान ना दे करके उपजाऊ जल्दी हो
0: हाँ
2: और पैसा कमाने के ऊपर में आजकल लोगों का ध्यान जा रहा है,
0: जा रहा है,
2: इससे
0: सही
2: स्वास्थ्य में बहुत असर कर रहा
0: असर
2: है।
0: कर रहा
2: हाँ
0: है, लोग बीमार पड़
2: हाँ
0: रहे
2: बीमार
0: हैं।
2: पड़ रहे हैं, और हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है
0: वो भी घटता
2: वो
0: जा रहा
2: एकदम
0: है।
2: बिल्कुल ही घट जा रहा, उम्र
0: हाँ
2: घट रहा है।
0: हाँ हाँ
2: मतलब हमारा जो आयु है
0: कई प्रकार
2: वो
0: के नई नई बीमारियां भी आ
2: नई
0: रही
2: नई
0: है।
2: बीमारियां आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग जैविक तरीके से खेती को बढ़ावा देने के विषय पर भी हम लोगों ने काम किया है।
0: अच्छा अच्छा
2: जैसे कीटनाशक है,
0: हाँ
2: तो कीटनाशक हम लोग बनाते थे,
0: हाँ स्वयं निर्मित अपनों करना था।
2: हाँ, स्वयं निर्मित हम लोग करते थे। जैसे हम लोग जो पेड़ का पत्ता होता है,
0: हाँ
2: जो पेड़ का पत्ता को बकरी नहीं खाता है,
0: अच्छा अच्छा
2: गाय नहीं खाता है, तो वैसे वैसे पत्तों को चुन करके
0: हाँ
2: हम लोग उसको उबालते थे। जैसे नीम का
0: हाँ
2: हुआ,
0: हाँ
2: करंज का
0: करंज का
2: हुआ
0: हुआ
2: हुआ, ऐसे ही जो
0: हाँ बहुत
2: पत्ता,
0: सारे ऐसे
2: हाँ,
0: पत्तियां हैं।
2: पत्तियां हैं, तो ऐसे पत्तियों को हम लोग मिला करके उसको उबालते थे,
0: अच्छा
2: और उबाल करके इसको पानी को हम लोग कीटनाशक छान करके कीटनाशक के रूप में छिड़काव करते थे। इससे शरीर पर किसी तरह
0: किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम
2: नहीं है। हाँ, तो ऐसे लोगों किसानों को

0: चाहिए जो हमारा उसमें
1: स्वास्थ्य
0: कम
1: भी ठीक
0: स्वास्थ्य
1: रहे
0: भी ठीक रहेगा, लागत भी
1: और
0: कम आएगा,
1: हाँ उसमें
0: हाँ
1: तो निःशुल्क है,
0: हाँ
1: कोई खर्च नहीं है।
0: खर्च नहीं है। तो इस तरह का हम लोगों को मैंने काम करना चाहिए।
1: हाँ यानी कि आपके विचार से पूर्वज में लोग करते थे, उसी हिसाब से पारंपरिक खेती की तरफ से भी अभी हमको लौटना चाहिए।
0: हाँ, कहे कि पारंपरिक तरफ से नहीं लौटेंगे तो हमारा विशेष करके बीज, अभी तो बीज हाइब्रिड ही लोग उपयोग कर रहे
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ हाँ
0: हाइब्रिड होता क्या है कि थोड़ा सा महंगा भी पड़ जाता
1: महंगा भी
0: है
1: पड़ता है,
0: और
1: सही
0: हर
1: बात,
0: साल बदलना पड़ेगा।
1: बदलना पड़ता है, सही बात
0: हाँ,
1: है।
0: उसको हम नहीं रख पाएंगे दो
1: नहीं
0: तीन
1: नहीं
0: साल के,
1: अगले
0: और
1: बस करें तो उतना उपजाऊ भी नहीं
0: उपजाऊ
1: होगा।
0: भी नहीं होगा। और पहले का जो बीज होता था वो लोग, पहले का किसान
1: हाँ
0: लोग
1: कई
0: बहुत
1: वर्षों तक
0: हाँ
1: रखते
0: कई
1: थे।
0: वर्षों तक रखते थे।
1: हाँ
0: हाँ, और उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं था।
1: नहीं
0: कई
1: था।
0: कई तरह से वो लोग अपनी विधि से ही लोग रखते थे।
1: हाँ,
0: हाँ, अपनी विधि से ही लोग रखते थे और बीज भी खराब नहीं होता
1: नहीं
0: था।
1: होता था।
0: हाँ, तो इसलिए इसमें लागत भी कम आएगा। किसान को बहुत तरह का नुकसान होता है, कभी कभी कीट खा जाता है, कभी कभी आंधी पानी हवा से मैंने ओले से नुकसान हो जाता है, कभी कभी बहुत तरह की बीमारियां फसलों में आ जाती
1: हाँ
0: है,
1: सही
0: तो
1: बात है,
0: उससे भी किसानों को नुकसान
1: नुकसान
0: होता है।
1: होता है। हाँ
0: तो एक तो बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, तरह तरह में
1: हाँ मेहनत
0: पैसा,
1: करते हैं,
0: मेहनत
1: सिंचाई करते हैं,
0: सिंचाई करते हैं, सब चीज में अपना पैसा लगाते हैं।
1: लगाते हैं।
0: अगर कुछ चीज को हम लोग अगर पारंपरिक विधि से करेंगे तो थोड़ा सा हमको पैसा कम लागत में अपना खेती हो पाएगा।
1: सही बात है।
0: हाँ, इसलिए अपना पारंपरिक विधि को भी हमको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने एक बार उड़ीसा का एक जगह गया, वहाँ एक आदमी है कि वहाँ अपना बीज को संभाल करके रखा हुआ है।
1: अच्छा,
0: वहाँ हम लोगों ने देखा 1400 किस्म का बीज है, धान का बीज, धान का 1400 किस्म का बीज है, ऊपरी खेत में लगने वाला, मध्यम खेत में लगने वाला, पानी वाला खेत में लगने वाला, और घोड़ा धान जैसा मैंने अलग
1: टाण
0: अलग
1: जमीन
0: मौसम,
1: में।
0: हाँ टाण जमीन में अलग अलग मौसम में लगने वाला 1400 किस्म का बीज को हमने अपने आंखों से देखा। तो हम कहीं ना कहीं हमारे ही पास था यह बीज, हमारे ही लोगों के पास था,
1: हाँ लेकिन वो
0: लेकिन
1: संग्रहित करके
0: वो
1: रखे हैं।
0: संग्रहित करके रखे हैं। हम इसको आज संभाल नहीं पा रहे हैं, रख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा करके वो रखा हुआ है और उसके पास लोग सीखने के लिए जाते
1: जाते हैं।
0: हैं और कुछ कुछ बीज वो देते हैं ताकि बीज और आज मैंने फैले, लोगों में इस चीज
1: हाँ
0: को
1: धीरे धीरे
0: धीरे
1: इसको बढ़ाया
0: धीरे
1: जाए।
0: बढ़ाया जाए, इसके लिए वो भी प्रयासरत में हैं। हाँ, ऐसा इसलिए हमको पारंपरिक खेती की ओर हर दृष्टि से हमको काम करना
1: करना
0: चाहिए।
1: चाहिए। हाँ तो लखीराम जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बीजों को उपचारित करने के बारे में और पारंपरिक खेती से लाभ और रासायनिक खेती से क्या दुष्परिणाम हो रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए काफ़ी कुछ जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
0: जोहार।
1: इस मुलाकात के पश्चात हम पुनः लोकगीतों की दुनिया में चलते हैं और सुनते हैं एक कुरमाली लोकगीत मालावती देवी एवं साथियों के स्वर में।
2: भाद्रिया झूमर चलो चलो।

0: और इसी लोकगीत के साथ ही आज का खेती गृहस्थी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब कमलेदू को विदा दें, सभी को पुनः एक बार जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। शाम के 6 बजने को है, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। धनबाद जिले के कतरास स्थित केशलपुर कुमारपट्टी में आज सुबह अवैध कोयला खनन के दौरान मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धंसने से 3 लोगों की मौत होने की सूचना है। वहीं कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। गिरिडीह के बनियाडीह में आज झारखंड सरकार के दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को श्रद्धांजलि दी गई। झामुमो की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मंत्री हाफिजुल हसन सहित पार्टी के कई नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बोकारो परिसदन में आज प्रदेश भाजपा की एक प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से शुरू होने वाले एक महीने के सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दी गई। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने बताया कि अभियान के तहत आशीर्वाद का दिया, मेरे सपनों का भारत, नमो सेवा, आंगन मिलन सेवा और रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री के कार्यों और उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 330 लीटर देशी शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल एक वाहन जब्त कर 2 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था सुमित कुमार ने बताया कि तलाशी में वाहन से 11 बोरों में रखी शराब के अलावा 2 मोबाइल फोन और 7,550 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। चाईबासा में जापान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से एक दिवसीय जूनियर कलर बेल्ट कराटे ग्रेडिंग परीक्षा आयोजित की गई। संत जेवियर स्कूल के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित परीक्षा में विभिन्न विद्यालय और कराटे प्रशिक्षण केंद्रों के करीब 170 कराटेकारों ने भाग लिया। परीक्षा में प्रतिभागियों की तकनीकी दक्षता, अनुशासन और शारीरिक क्षमता का आकलन किया गया। इस दौरान किहोन, काता और कुमिते के साथ शारीरिक एवं मौखिक परीक्षा भी ली गई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: को जमचे को
1: अच्छा
0: नेते सात रे जिंक टैबलेट को जमचे को
1: नो नमो
0: एगा एना हॉस्पिटल रे बेटावा आंगनबाड़ी रो बेटावा हॉस्पिटल रो बेटावा हतु से नो नर्स दीदी तार यो बेटावा नेना रे सुविधा हतु हतु रे यो मिना
1: मिना कची
0: एगा
1: अच्छा एंदे दो ना चले के अस्पताल रे उनको बहुत या रिया कनी तो मिना गया एंदो हतु सही रे सुपुरे हो को का को जांच रे ने दो इनको आको ऐसो तकलीफ को नामतन गया एंद इनको आको चीना आको चिके रे टीकी
0: हतु पारे सबन हर हर महीने में से नर्स से नो है एन इमते जानकारी दो को एमा कोआ एन रियो हतु दिसुम रे पार्टी रे पुरे को लगातिंगे के नो एन
1: हिस गी उतरियो काको काजी
0: एगा एन एन लिकतरियो काको काजी ओंडो इमिन नेनारिया दोरकार काको समझाओ ना जब दुकु नमो एन समय रे को उड़ु ये ओ ने अदु नंग आयर तिलिंग पार्टी के रे तो बुगिने मेंते जांच को काता इन रे मिसे मिसे होना लाई बितर टाइम तिया जो ये मिना आकिंगे एन कोन लेके टाइम रे नॉर्मल हो बावा नो कोन लेके टाइम रे नॉर्मल काए हो बावा ऑपरेशन रे जरूरत हो बावा इन हर ये जानकारी आको का टाइम है एन दो अल्ट्रासाउंड में ती अन्य अलग जगह रखेडा एन हिसाब ते अल्ट्रासाउंड रे चिर गेलवा होन मूली किने ची गंडी किने बो पाए ते जन्म और दो नॉर्मल में नो मिसे मिसे तो उनको कटा पाए थे वो जन्म हुआ को ती पाए थे वो जन्म हुआ को गांडी थी होता ही नहीं को इन इनकन पोजीशन रे दो ऐसे मुश्किल हो बावा इंगा नॉर्मल होन जन्म ही लगेन इन चलते अकिंग ऑपरेशन माने तुरंत ऑपरेशन दिया जरूरत हो बावा इंगा उन्हें होन बचाव ही लगे इनकन स्थिति रे मिसे मिसे तो पूरे मायम से नो यान रे दो इंगा ओ का ए बचाव दई हुआ
1: अच्छा
0: इन्ना मेंते जांच दो हमेशा कजी कुआ को ची फर्स्ट तीन महीने रे मिसे बन जांच ची की ना उन्डो दूसरा तीन महीने रे उन्डो लास्ट रे तीसरा तीन महीने रे आखरी समय रे जांच दो इसो दूर करा इन हिसाब तके इन इन्ना मन ये वाचिर गेलवा ची अकिंग ए सिटी ए नॉर्मल हुआ वाची ऑपरेशन ते हुआ वा इन्ना रिपोर्ट चक ये रगे अकिंग ए जानकारी तो टाइने
1: ओ अच्छा अच्छा माने होन को पूरे बणिए ते काको मरंग जना हारा जना एनडीओ तकलीफ में ना का
0: एगा एनडीओ एसो तकलीफ में ना होन माने मिसिम से चीने बो अछि फुल फुल टर्म जो कि 9 महीने 7 दिन ओकना का जियो तना एन हिसाब ते इमियंग दिन लाई बितर होन का ताई किने ता आयर ते जन्मवा एना एंगा आ स्वास्थ्य रे कमी चलते जन्मो एनरे आकिंगे हुमोर मयम रिया कमिटाइने एन हिसेप्तरियो का ए पुरे के नेता यार ते अगर होने जन्म एन तो कमजोर होने जन्म एन एन होन साइत एसु लगातिंग तो हुआ एन होन साइत पे लगे एन रियो एसु पुरे होन को कारियो काको बचावा एन चलते माने एंगा स्वस्थ ताइन रदो स्वस्थ होने जन्मी है समय रे जांच हुआ वा जमनो बढ़िया हुआ वा इन स्थिति रे एंगा बणिए स्वास्थ्य तैंद दो स्वास्थ्य होन ओंडो पूरे दिन पूरे लेडे ते होने जन्मवा इनकन होन ओल पड़ा रियो उड़ रियो होमो रिया शक्ति रियो हर तरह ते स्वास्थ्य तैने
1: अच्छा
0: ओंडो ओकोनी आ समय हुबा हुआ अयर ते हुबा हुआ इनकन होन कमजोर तैने बुद्धि रूपतियो कमजोर तैने होमो रूपतियो कमजोर तैने इनकर दो इसुस इसुते होन को काको बचाव दइवा करबोती है बोरो टाइने
1: अच्छा इन्हें इन सात महीने रहने होन को वाव ऐसे पूरे एक हो उनका जी ये इन्द इनको चिकन चिकन कारण ते हो बदी उतरना
0: पूरे ऐते पूरे तो इंगा स्वास्थ्य रे विशेष ध्यान का हो बयान चलते उन्हें होमोरे बहुत सा अकिंग ये होमोरे होन मरांगो लगेन उन्हें पूरे दिने पूरे लगेन इन हिसेब ते मायम बराबर ताइन ते हुआ हुआ समय रे जमनो दूर करा उन्दो हमो पारे मिने इरे आए चिमिंगे दाईये इन हिसेब ते पाटे दूर करा हाथो दिसुम रे दो मने जबरदस्ती हमो पारे मिना करियो पाटे रे को लगातिंगे केनो मायम रिया अस्तर ठीक का ताइन रे दो होनो स्वस्थ रे कमी हुआ जिसके कारण सात महीने आठ महीने रन सिटी को जन्म हुआ
1: जन्म होगा या एंदो इनकन होन को जन्म जने ते ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤᱭᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱯᱩᱱᱤ ᱱᱟᱢ ᱠᱮ ᱠᱚ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱫᱚ
0: ᱮᱜᱟ
1: ᱤᱱᱫᱚ ᱤᱱᱠᱩ ᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱡᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱨᱮᱱᱚ ᱠᱚ ᱪᱤ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱡᱟᱱ ᱩᱯᱟᱭ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱡᱟᱱᱟ
0: ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱟ ᱮᱱ ᱮᱥᱮᱱᱥᱤᱭᱚ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱤᱱᱰᱚ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱛᱟᱨᱮ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚ 2 kg 500 ᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱳᱡᱚᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱚᱱᱚᱢᱮᱱᱟ ᱮᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱱ ᱛᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱨᱤᱠᱟᱹᱣᱟ ᱮᱱ ᱛᱟᱨᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱮᱭᱟᱨ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱮᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱸᱜᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱚᱸᱰᱚ ᱮᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱱ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱮᱱ ᱛᱟᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱫ ᱨᱟᱱᱩ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ ᱦᱚᱱ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱛᱚᱵᱟᱣᱟ ᱚᱠᱥᱤᱡᱮᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱤᱛᱚᱵᱟ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱥᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱦᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱱ ᱛᱟᱨᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱤᱝᱜᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱥᱩ ᱠᱚ ᱠᱚᱥᱤᱥᱤᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱨᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱥᱩ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱷᱟᱜᱤᱫᱟᱨᱤ ᱴᱟᱭᱱᱮ ᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱥᱟᱢᱟᱭ ᱥᱟᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱞᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱨᱟᱱᱩ ᱭᱚᱞᱤᱭᱟ ᱱᱚ ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱤᱥᱩ ᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱳᱡᱚᱱ ᱵᱟᱞᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱤᱝᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱫᱚ ᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟᱨᱩ ᱢᱟᱫᱟᱨ ᱠᱮᱭᱟᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱥᱛᱷ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱡᱤᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱝᱜᱟ ᱪᱟᱦᱮ ᱮᱱ ᱦᱚᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱭ ᱨᱤᱭᱚ ᱟᱯᱩ ᱨᱤᱭᱚ ᱪᱤ ᱡᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱛᱟ ᱨᱤᱭᱚ ᱡᱟᱭ ᱨᱤᱭᱚ ᱮᱱᱮ ᱠᱚ ᱦᱚᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱦᱚᱢᱚ ᱛᱟᱠᱤᱜ ᱠᱮᱭ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱥᱮᱞᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱞᱤᱡᱮ ᱥᱩᱛᱩᱭ ᱵᱚ ᱛᱩᱥᱤᱝ ᱠᱮᱱᱚᱣᱟ ᱮᱱ ᱞᱤᱡᱮ ᱥᱩᱛᱩᱭ ᱵᱤᱛᱮ ᱨᱮ ᱦᱚᱱ ᱩᱨᱜᱩᱢᱤ ᱛᱮᱭᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱤᱨ ᱨᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱞᱚᱞᱚ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱞᱚᱞᱚ ᱟᱞᱚᱠᱟ ᱠᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱱ ᱱᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱤᱝᱚᱜ ᱠᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟᱨᱩ ᱢᱟᱫᱟᱨ ᱠᱮᱭᱟᱨ ᱦᱟᱢᱮᱥᱟ ᱦᱚᱱ ᱤᱝᱜᱟ ᱦᱚᱢᱚ ᱨᱮ ᱛᱟᱠᱤᱜ ᱠᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱭᱟ ᱦᱚᱢᱚ ᱨᱮ ᱛᱟᱠᱤᱜ ᱠᱮᱱᱮ ᱟᱠᱤᱝ ᱦᱚᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱮᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱭᱮ ᱡᱤᱥᱠᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱠᱤᱝ ᱥᱟᱥᱛᱷ ᱥᱩᱭ ᱥᱩᱭ ᱛᱮ ᱥᱩᱫᱷᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱱ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱭᱚᱜᱼᱟ
1: ᱥᱩᱵᱟᱱᱤ ᱠᱟᱡᱤ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱤᱝᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱯᱩ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱵᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱩᱲᱩ ᱤᱛᱟᱹ ᱵᱟᱹᱜᱼᱟ ᱛᱮ ᱥᱩᱵᱩᱜᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱚᱜ ᱜᱮ ᱢᱟᱨ ᱛᱮᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱮᱱ ᱥᱩᱨᱟᱝ ᱥᱮᱴᱮᱜ ᱠᱟᱡᱤ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱯᱟᱭ ᱛᱟ ᱵᱮᱱ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱢᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱵᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱚᱜ ᱜᱮ ᱢᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱢᱩᱥᱤᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱤᱭᱟ ᱵᱟᱱᱴᱤ ᱜᱟᱜᱟᱨᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱮ

0: ᱪᱤᱜᱮ ᱢᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱛᱯᱟ ᱢᱤᱫ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱤᱝᱜᱩᱞ ᱪᱷᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱤᱭᱟ
1: ᱥᱟᱵ ᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱩᱨᱚᱠᱥᱟ ᱟᱴᱚᱞ ᱯᱮᱱᱥᱚᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱢᱳᱫᱤ ᱡᱤ ᱠᱟ ᱥᱚᱝᱠᱚᱞᱯ
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ಸಮಯ ಸೆಟ್ಟರ್ಜನ ಹೋ ಅಕ್ಕಡ ದ್ವಾರ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಚೈವಸ ಪಿನ್ ಇರಿಲ್ ಪಿ ಎ ಬಾರ್ಗೂಲ್ ಮಿತ್ತನೆ ಕುಲ್ಸಕಂಬ ಒಲ್ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ತುಂಡೂರೆ ಅಲಿಂಗ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಚತಾರ್ ತಕ್ಕಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಮುಲ್ ಜೀವಂತೆ ಜೋಹಾರ್।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अकड़ा। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम चर्चा के माध्यम से जानेंगे विश्व सेप्सिस दिवस के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, विश्व सेप्सिस दिवस प्रत्येक वर्ष 13 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सेप्सिस यानी कि गंभीर संक्रमण के प्रति जागरूक करना और समय पर इसके उपचार के महत्व को समझाना है। श्रोताओं, सेप्सिस क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सेप्सिस शरीर में किसी संक्रमण के प्रति होने वाली एक गंभीर और अनियंत्रित प्रतिक्रिया है। यह शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है और

समय पर इलाज ना मिलने पर जीवन के लिए खतरा बन सकती है। सेप्सिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या अन्य संक्रमणों के कारण से हो सकता है। श्रोताओं, सेप्सिस के लक्षणों में तेज बुखार या शरीर का तापमान कम होना, तेज सांस लेना, हृदय की धड़कन बढ़ना, अत्यधिक कमजोरी, भ्रम या असामान्य व्यवहार और पेशाब का कम आना शामिल है। ऐसे गंभीर लक्षण यदि दिखाई देते हैं तो तुरंत चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए। श्रोताओं, सेप्सिस संक्रमण से बचाव के लिए हाथों की स्वच्छता, साफ पानी और भोजन, घाव की उचित सफाई तथा आवश्यक टीकाकरण महत्वपूर्ण है। सेप्सिस का उपचार अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा किया जाता है और इसमें संक्रमण के कारण के अनुसार दवाएं और अन्य आवश्यक उपचार दिए जाते हैं। श्रोताओं, विश्व सेप्सिस दिवस हमें यह संदेश देता है कि संक्रमण को हल्के में नहीं लेना चाहिए और गंभीर लक्षण होने पर उपचार में देरी नहीं करनी चाहिए। जागरूकता, स्वच्छता और समय पर चिकित्सा सहायता से सेप्सिस के गंभीर परिणामों को कम करने में मदद मिल सकती है। श्रोताओं, हमारा जीवन अनमोल होता है और इस जीवन को संवारने का काम भी हम ही कर सकते हैं, इसलिए समय रहते हमें अपने बीमारी का पता होना चाहिए और अगर आपको संक्रमण जैसे बीमारी से ग्रसित हैं तो यथाशीघ्र अस्पताल पहुँचें और बेहतर चिकित्सीय सलाह लें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। श्रोताओं, अभी हम चर्चा के माध्यम से जान रहे थे विश्व सेप्सिस दिवस के बारे में।

0: दी, हाँ? ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
3: Saving करने की भी यही उम्र है।
4: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: I know na.
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो financially smart.
6: श्रोताओं कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं यह प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है वीर जारा, आवाजें हैं उदित नारायण, लता मंगेशकर और गुरदास मान की।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में आइए, अब इम्यूनिटी के बारे में जानकारी लेते हैं इस भेंटवार्ता के माध्यम से। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर विनोद कुमार पंडित और उनसे बातें कर रहे हैं अवनीश कुमार सिन्हा।
5: रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाने से शरीर में तरह तरह की बीमारियां पकड़ लेती है। आज हम इसी से संबंधित एक विषय लेकर उपस्थित हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद कुमार पंडित, जो हमें बताएंगे इम्यूनिटी क्या है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
6: श्रोताओं नमस्कार।
5: सबसे पहले ये बताइए कि इम्यूनिटी क्या है।
6: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आम व्यक्ति इसके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। श्रोताओं, आपने देखा होगा अपने अपने घरों में, अपने गांव में, अपने आसपास कि कुछ लोग बराबर बीमार पड़ते हैं या बीमार रहते हैं, कुछ लोग बीमार नहीं होते हैं, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में ही एक या दो व्यक्ति बीमार हैं लेकिन और व्यक्ति बीमार नहीं है। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक ही घर में, एक ही वातावरण में रहने वाले और एक ही तरह के खाना पीना करने वाले व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं और कुछ व्यक्ति बीमार नहीं पड़ते हैं, स्वस्थ रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? यह एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता अलग अलग होती है, और हम तभी बीमार पड़ते हैं जब हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। जब तक हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहती है, तब तक हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग कुछ अलग तरह के बीमारी के शिकार होते हैं और कुछ लोग कुछ अलग तरीके के। यह ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में बीमारियों से लड़ने की क्षमता अलग अलग तरह की होती है, और इसी क्षमता के कारण बहुत से लोग बीमार नहीं पड़ते हैं और बहुत से लोग जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। आप को मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे घर में अगर एक बच्चा है, उसे सर्दी खांसी हो गई है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि दूसरे बच्चों को भी हो जाती है या तीसरे बच्चे को हो जाती है, लेकिन चौथे बच्चे को नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि या तो उस चौथे बच्चे में उस बीमारी से लड़ने की क्षमता है, और नहीं भी अगर रहती है तो वह धीरे धीरे धीरे वह क्षमता विकसित कर लेता है, जिससे वह बीमार नहीं पड़ता है।
5: तो डॉक्टर साहब, ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या एक दिन में कमज़ोर होता है या ये
6: आपका प्रश्न सही है कि क्या यह इम्यून सिस्टम क्या है या हमारी इम्यून क्षमता कैसे काम करती है। तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, एक तंत्रिका, अलग तरह के तंत्रिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता के लिए कुछ तरल पदार्थ और कुछ कोशिकाएं पैदा करती है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि एक हमारा ये देश है भारतवर्ष, तो भारत पर बाहरी आक्रमण न हो इसके लिए हमारे यहाँ क्या क्या सिस्टम है, तरह तरह के सिस्टम है, जैसे जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, और सभी मिल करके बाहरी दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। हमारे शरीर में भी इसी तरह की कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं, तरह तरह के सिस्टम बने हुए हैं, और जो तरह तरह की बीमारियों से लड़ने में कारगर साबित होती हैं। और इसके लिए एक अलग संस्थान हम कहें शरीर के अंदर बना हुआ है, और वो संस्थान जो है शरीर के विभिन्न स्थानों पर केंद्रित रहते हैं। जैसे मुख्य रूप से हमारे जो मसल्स होते हैं, और मसल्स जो टेंडन के द्वारा हड्डियों से जुटे होते हैं, ठीक ठीक उसी जगह के जोड़ के स्थान पर ये सिस्टम बना हुआ है, और वह अगर एक्टिवेट होता है, वह अगर उसे हम कहेंगे कि वह अगर क्रियाशील होता है, तो हमारे शरीर के अंदर इम्यून लड़ने की जो क्षमता है वो ज़्यादा विकसित होती है।
7: तो ये डॉक्टर साहब, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा रहे इसके लिए क्या हमें छोटे मतलब कि बचपन से ही इस पर ध्यान देना होगा?
6: जरूर, इम्यून सिस्टम या रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत सी बातों पर निर्भर करती है। पहला तो ये है कि बहुत कुछ, कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि जन्मजात हमारे शरीर के अंदर कुछ कमियां रहती हैं जिससे हम बीमारियों से नहीं लड़ पाते हैं, या जन्मजात ही हमारे शरीर के अंदर क्रोमोजोम्स, जिसे हम लोग क्रोमोजोम्स या जीन्स कहते हैं, वो जन्म के साथ ही हमारे शरीर के अंदर ऐसा रहता है कि उससे हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता स्वतः आती रहती है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे दैनिक आदतें जो हैं, इन सब चीज़ों का भी जीवन रक्षक प्रणाली से जो इम्यून सिस्टम प्रणाली है उससे काफ़ी प्रभावित होता है। तो जैसे इसमें मैं सबसे पहले बता दूं, और ये बचपन से ही शुरुआत होती है इसकी, और जैसे खान पान में सबसे इम्पॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम के लिए प्रोटीन का होना। हमें जो आवश्यक मात्रा में प्रोटीन है वो मिलनी चाहिए। इसके अलावा संतुलित आहार हमारे जीवन का अंग होना चाहिए, और संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके अलावा व्यायाम, आपको मैंने बताया था कि जहाँ से हड्डियाँ जुटी होती हैं टेंडन से, वहाँ पर इम्यून सिस्टम के तंत्र बने हुए होते हैं। तो जब आप व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, दौड़ते हैं, पैदल चलते हैं, तो वो सिस्टम काफ़ी क्रियाशील हो जाता है, और जिससे हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता वाले तरल पदार्थ काफ़ी मात्रा में निकलते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा और रहन सहन की आपका जो दैनिक क्रियाकलाप है वह नियमित होना चाहिए, तनाव से मुक्त रहना चाहिए। मैं एक और बात बता दूं कि जहां आप ज़्यादा तनाव से ग्रसित रहेंगे, हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। यह हार्मोन हमारे शरीर के अंदर रोग निरोधक क्षमता में कमी लाती है। जैसे कि आपने सुना होगा नाम डेक्सोना का, बेटनेसोल का, ये सारा हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं।
7: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों को हम टीकाकरण करते हैं,
6: जरूर जरूर,
7: तो ये जैसा कि कहा जाता है कि ये बच्चों में इम्यून पावर को बढ़ाते हैं, ये क्या ये बात सही है?
6: जी बिल्कुल, ये हम जो टीकाकरण करते हैं यह बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि उस बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में, बच्चों के शरीर में बचपन से ही उत्पन्न करते हैं, ताकि आगे चल करके वो उनके शरीर में वो क्षमता बनी रहे और बच्चे उस बीमारी से, उस विशेष बीमारी से लड़ने की क्षमता रखें।
7: तो ये इम्यून पावर बढ़ाने में बहुत सहायक,
6: बहुत सहायक है।
7: अच्छा, ये मानसून का क्या असर पड़ता है इम्यून पावर पे?
6: जरूर, मानसून का असर इस प्रकार पड़ता है कि मानसून में हमारे जो क्रियाकलाप हैं, शारीरिक क्रियाकलाप, वो कुछ कम हो जाते हैं। इसके कारण हमारे शरीर पे इम्यून सिस्टम थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा वातावरण का प्रभाव ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा वातावरण में आर्द्रता ऐसा हो तो इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर पड़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो जो विषाणु है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं।
7: तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे अच्छा रह सके रहें, इसके लिए हम क्या कर सकते
6: जी? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आखिर मानसून में भी हम कैसे अच्छा रहें। तो इसके लिए यह जरूरी है कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ का वातावरण खुला हो, वहाँ में वातावरण में नमी ज़्यादा ना हो, तापक्रम का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडापन ना हो, और हम पूरे मौसम में इसके बावजूद कि आपको ऐसा समय नहीं मिल रहा है व्यायाम करने का, कोशिश करें कि अपने शरीर को क्रियाशील रखें।
7: तो डॉक्टर साहब, आपने हमें इम्यून पावर बढ़ाने के लिए के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
4: इस भेंटवार्ता के साथ ही आज का विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 हो रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
6: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
8: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
7: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
8: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
7: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
9: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
10: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड।
11: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
12: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
13: कंडोम,
12: गर्भ निरोधक गोलियाँ।
14: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
9: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
10: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
15: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा को प्रदेश भाजपा ने बताया कूटनीतिक जीत। झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, पारंपरिक झारखंडी स्वाद के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा पलाश कैफे। JPSC JSSC परीक्षा के परिणामों पर भाजपा ने फिर उठाए सवाल। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने CBI जांच की मांग दोहराई। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने पूजा समितियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। CCTV लगाने और श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में 17 सितंबर तक गरज के साथ अच्छी बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
16: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
15: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के नई दिल्ली घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा को लेकर झारखंड में भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश भाजपा के नेता प्रतुल शाहदेव ने इसे भारत की शानदार कूटनीतिक जीत बताया है। उन्होंने आज रांची में कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षमता को दर्शाता है।
13: ये बहुत ही शानदार कूटनीतिक जीत है भारत की, प्रधानमंत्री जी के ये नेतृत्व क्षमता का आपको एहसास दिलाता है। सब एक मंच पर आते हैं और कहते हैं पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ था, चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया, बेहद ही निंदनीय है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का सबसे बड़ा हाई पॉइंट यही है कि एक स्वर में सबने पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की निंदा की है।
15: इधर प्रदेश कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार से पूछा कि ब्रिक्स से

0: को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मंत्री ने कहा कि पलाश कैफे में हर स्वाद के साथ एक दीदी के सपने को नई उड़ान मिल रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि उनके जनता दरबार में बिना किसी भेदभाव के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आज उन्होंने कहा कि हर धर्म और वर्ग के लोग विश्वास के साथ अपनी समस्याएं लेकर जनता दरबार में पहुंचते हैं। श्री अंसारी ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि देश में 2,80,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सहायता सुविधाओं का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सहायता को मजबूत करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 142 नए वरिष्ठ नागरिक गृह स्वीकृत किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सेंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। गिरिडीह जिले में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागपुरी भाषा से संबंधित परीक्षा में परिणाम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। श्री साहू ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई।
1: इस प्रकार से झारखंड के बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको नौकरी नहीं देकर के झारखंड से बाहर के बच्चों को नौकरियां बेची गई है। इस प्रकार का प्रावधान किया था कि रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, क्या मैं उस विषय की परीक्षा में भी जो नागपुरी का ना जानता हो, प्रथा का अर्थ ना जानता हो, लेकिन झारखंड के बच्चे जो बोलते हो पास नहीं किए, दूसरे राज्यों के बच्चे पास।
0: राष्ट्रीय नारी शक्ति महिला संगठन ने झारखंड सरकार से विधवा महिलाओं को भी मैया योजना की तर्ज पर 2,500 रुपये प्रतिमाह देने की मांग की है। रांची में आज आयोजित सम्मान समारोह और सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती बेहरा ने कहा कि विधवा महिलाओं को वर्तमान में मिल रही 1,000 रुपये की पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपये की जानी चाहिए।
2: झारखंड सरकार से इतना मांग करती हूँ कि मैया योजना के तहत जो 2,500 रुपया सबको मिल रहा है, वो विधवा महिलाओं को भी मिले 2,500। भेदभाव ऐसा क्यों, ये 2-3 साल होने जा रहा है, पैसा मिल रहा है सबको। झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जिसमें ज्यादातर ज्यादा लोग घर का काम करके अपना पेट पालते बपालता, ऐसे सिचुएशन में सरकार ने अनदेखा विधवा महिलाओं को कैसे कर दिया।
0: आगामी दुर्गा पूजा को लेकर रांची जिला प्रशासन ने पूजा समितियों और आयोजकों के लिए सुरक्षा और विधि व्यवस्था से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने पंडाल निर्माण में अग्नि और विद्युत सुरक्षा का ध्यान रखने तथा महिला पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था करने को कहा है। इसके अलावा पंडालों में अग्निशमन यंत्र, पानी, बालू, प्राथमिक उपचार और पर्याप्त सीसीटीवी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची के सोनाहातू में तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से आज पति और पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सिल्ली रांगामाटी मुख्य मार्ग जाम कर दोनों शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण मुआवजे और सड़क सुरक्षा की मांग कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और स्थिति सामान्य की। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 17 सितंबर तक गरज के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि रांची, रामगढ़ और हजारीबाग सहित राज्य के कई जिलों में इस दौरान अच्छी बारिश होने की अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर में भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम को जूनियर एशिया कप 2026 में खिताबी जीत के लिए हॉकी इंडिया ने पुरस्कृत किया है। इसके तहत हर खिलाड़ी को 3,00,000 रुपये और सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 1,50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस खिताबी जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने जूनियर विश्व कप के लिए भी स्थान पक्का किया है। वहीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी

0: टीम ने भी कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा को प्रदेश भाजपा ने बताया कूटनीतिक जीत। झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा पारंपरिक झारखंडी स्वाद के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा पलाश कैफे। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा के परिणामों पर भाजपा ने फिर उठाए सवाल। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने पूजा समितियों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। सीसीटीवी लगाने और श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में 17 सितंबर तक गरज के साथ अच्छी बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आपकी चाय। EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
1: कैसे?
2: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
1: इतना इजी?
2: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं।
6: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
5: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
6: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
7: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
10: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
11: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
12: बढ़ती बच्ची किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
11: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
12: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
11: माहवारी प्रारंभ होती है,
12: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
11: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
13: प्रस्तुत है विनोद में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत संचालित टपक सिंचाई योजना के माध्यम से गुमला जिला के किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस योजना का लाभ उठा रहे किसानों ने बताया कि
2: पहले बहुत बेरोजगार और बहुत गरीबी स्थिति से है, लेकिन हमें मन कुछ जमीन लीज में लेके एक टमाटर गोदी बैगन मिर्चा ये सब लगाए के और फिर शिमला लागे को वाला है 20 तारीख के, फिर शिमला भी आओ थे रायपुर से उनके लगाए के अपन छुआ पोता के बढ़िया से पढ़ा थी लिखा थी और अपन जीविका चला थी बढ़िया से, कोई वैसा दिक्कत ना खे दो चार पैसा ले सोचे नहीं पड़ेगा।
1: केंद्र सरकार मछली उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े किसानों के आय में वृद्धि तथा अन्य किसानों को भी इस क्षेत्र से जोड़ने को लेकर 6 वर्ष पूर्व 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। ऐसे में इस योजना के माध्यम से जुड़कर गुमला जिला के किसान भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। गुमला जिला के किसान बताते हैं कि
3: मैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़कर मैं मछली पालन का कार्य कर रहा हूँ बीते 1 वर्षों से और मुझे इसमें काफी अच्छा लग रहा है। इसमें इससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ धान और गेहूँ मड़ुआ इस सब का ही खेती करता था।
1: वहीं इस संबंध में जिला मत्स्य प्राधिकारी ने बताया कि
0: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे भारत वर्ष में 2020 में प्रारंभ की गई थी और

0: ये 5 साल के लिए फेज वन स्टार्ट किया गया था। 2020 में गुमला जिला में मत्स्य उत्पादन लगभग 9,000 मेट्रिक टन था और वर्तमान के समय में हमारा प्रोडक्शन जो है फिश प्रोडक्शन ये 20,000 मेट्रिक टन हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आने से यहाँ पे निजी क्षेत्र के कई ऐसे बेरोजगार मत्स्य कृषक जो युवक और युवतियां जो बाहर चले जाते थे, पलायन कर जाते थे रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए, उन्हें इसी जगह पर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए साधन मिले। और इसमें बहुत सारी मत्स्य के क्षेत्र में नवाचार भी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें हमारे गुमला जिले में 202 योजनाएं आई 2020 से लेकर के अभी 2024 तक। और इसमें लगभग हमारे 6 से 7.5 हजार किसान आज मासी के क्षेत्र में जुड़ चुके हैं। इन लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से पलायन रुका है काफी हद तक और अर्थव्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्र में इनकी अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है और अर्थव्यवस्था के साथ में इनकी सामाजिक स्तर भी काफी बढ़ा है। और जो लोग पहले मत्स्य पालन को एक पारंपरिक तरीके से करते थे, आज वो वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए हमारा फिश प्रोडक्शन काफी बढ़ा है।
1: बहरहाल केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लेकर गुमला जिला के किसान न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहे हैं बल्कि जिला से पलायन भी रुक गया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
2: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:16 हो चुके हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूर्णचंद्र भोईपाई का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं फिल्म प्रेम कहानी से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गीत को पसंद किया है गांव की तसराई किला से राधा कृष्ण गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, शुभम गोप, विक्की गोप, राजू गोप, विनोद गोप, सरस्वती देवी, गीता देवी, रीता देवी, सुनीता देवी, उमा कुमारी और भारती। सरेकिला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहापुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरमणि मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जन्म सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना और एफएम शिवा मुंडरी। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। इसी गीत को सुनना चाहा है बड़ा निमडी चाईबासा से तुलसी पतिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। महुलडिया मेन रोड सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नू, तन्नू, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पाणी प्रधान, तनुषी प्रधान, नीलपाणी प्रधान और नीकपाणी प्रधान।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा।

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं बचपन फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। इस गीत को सुनना चाहा है अमलाटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू। चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमोहिनी और दीनबंधु महतो। छोटा निमनी चाईबासा से आप हैं बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक, कोमल और रोहन। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, अब्बर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनुष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सन्नी मधुर।

जाता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। 7:30 हो रहे हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के अंतर्गत भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच का सीधा प्रसारण।

0: Very good evening to all our listeners. The stage is set for the Women's Asia Cup final at Dubai International Stadium. Ek baar phir se, balki lagatar teesri baar Bharat aur Sri Lanka hain aamne saamne Asia Cup ke final mein. And we are here to break down all the matchups, key players, tactical shifts with our experts. Aur hamare saath maujood hain Latika Kumari, former Indian cricketer. Bahut swagat hai Latika aapka. Aur saath hi hain Uttara Ganeshan, senior sports journalist. Very warm welcome to you, Uttara.
1: तो सबसे बड़ी खबर ये है, प्रतिका रावल जिनका ये जो प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में, वो थोड़ा नरम थोड़ा गरम रहा है लतिका, उनकी जगह टीनेज प्रोडिजी कहलाने वाली जी कामलिनी को जगह मिली है. कैसे देखते हैं आप इस बदलाव को?
2: देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी इसी प्रोग्राम में कि जब प्रतिका रावल को आप मौके दे रहे हैं, नो डाउट वो क्रिकेटर बहुत अच्छी हैं, स्किलफुल हैं, लेकिन लगता है T20 में वो शायद इतना सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाई हैं और उन्होंने पिछले कुछ टाइम से T20 गेम्स खेले भी नहीं है. तो ये कहूंगी कि सही डिसीजन है कमलिनी का आज जो उनको मौका मिला है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे भी हम बात करें चाहे WPL की हम बात करें तो कमलिनी के पास वो एक्सपोजर है, वो एक्सपीरियंस है जो कि आज के मैच में शायद उनको और हेल्प करेगा. और ये चेंज मैं पहले ही देख रही थी लेकिन आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर खिला रहे हैं मैनेजमेंट और कप्तान, तो मुझे लगता है कि ये बेटर होगा. एक लेफ्ट हैंड बैटर भी आपके पास जुड़ जाएगा वहां पर, क्योंकि श्रीलंका के जो गेंदबाज हैं उनको थोड़ा सा अगर आपको प्रेशर में डालना है तो आपके पास अगर इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन आता है तो वो भी आपके लिए बेटर होगा.
0: जी बिल्कुल. उत्तरा, अभी तक जो भारत का सफर रहा है इस टूर्नामेंट में वो कमोवेश थोड़ा आसान कहेंगे या काफी हद तक वन साइडेड मैचेस हमने खेले हैं. और वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका को पहले बांग्लादेश और उसके बाद सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जिस तरह की टक्कर दी है, जिस तरह की चुनौती दी है, और उसके बाद उसी सेमीफाइनल में श्रीलंका ने जिस तरह का खेल दिखाया है, टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला है और उसे जीता है. Do you feel उस मैच को देखते हुए कि that today's match could be India's biggest challenge of the tournament?
3: Definitely. And अगर इससे पहले खेला भी होता है इंडिया ने तो फाइनल इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम. तो फाइनल में जो प्रेशर होता है, फाइनल का जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत अलग होता है हमेशा से. तो ये बिल्कुल सही है. और जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा उतना मुश्किल नहीं रहा इंडिया का सफ़र, फॉर मी नॉट हैविंग प्लेड अ कंपैरेटिवली टफ मैच इज ऑलवेज अ डबल एज स्वॉर्ड, बिकॉज ऑन वन हैंड ऑफ कोर्स यू प्लेड एंड यू वन इजीली, सो यू हैव द मोमेंटम, यू हैव द कॉन्फिडेंस, द सेम टाइम यू हैव एक्चुअली नॉट बीन टेस्टेड एंड द वन और टू टाइम्स दैट यू वर टेस्टेड योर मिडिल ऑर्डर डिड नॉट परफॉर्म द वे इट शुड हैव. आपका शेफाली वर्मा को अगर हटा दिया जाए, स्मृति ने सेंचुरी जरूर मारी थी बट वो हांगकांग के साथ मारी है आपने, शेफाली को अगर हटा दिया जाए तो आपको उस तरह के स्टार्ट्स नहीं मिले हैं जो आपको चाहिए. एंड T20 में अ गुड स्टार्ट इज हाफ द बैटल वन, एंड द मिडिल ऑर्डर हैज एक्चुअली नॉट बीन टेस्टेड एज मच एज दे शुड हैव बीन. और वहाँ पे मुझे लगता है कि जो श्रीलंका है उनका, आई एम नॉट सेइंग कि उनको एडवांटेज है, बट देव हैड मोर देन वन मैच विनर्स इन द थ्री ऑफ इन द फोर मैचेस दैट दे हैव प्लेड, विच इज वाई डिस्पाइट द फैक्ट दैट चमरी आतापत्तू हैज नॉट स्कोर्ड मैनी रन्स, दे स्टिल हैव मैनेज टू फाइंड सम वन और द अदर गेटिंग दोज रन्स इन द मिडल. लगातार उनकी मिडल ऑर्डर स्ट्रगल कर रही है लेकिन लगातार वो कहीं ना कहीं से एक मैच विनर ढूंढ के ला रहे हैं. एंड एज अ टीम दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस दैट we are not dependent on any one player, so every time something goes wrong they find a new hero, and that for me in a team event is always a little bit of edge to the team.
0: बिल्कुल. और इसके साथ ही एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. जी अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. जी अपना नाम बताएं. जी बिट्टू जी अपना सवाल पूछे.
1: जी
0: आप पूछे. लतिका जी सुन रही हैं आपको.
1: जी
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए, और यही हमारे लिए चिंता का एक विषय बना हुआ है काफी लंबे समय से कि मिडिल ऑर्डर हमारा इस तरीके से क्लिक नहीं कर रहा है। और हम बात पहले करते थे जमीमा को लेकर नंबर तीन के लिए, फिर उसके बाद ऋचा घोष को हम देख रहे थे, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि एक तरीके से मैच फिनिशर के तरह उनको हमने यूज किया। दीप्ति शर्मा जब भी टीम लड़खड़ाती है तो उनको भेजा जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में आपके पास जो बल्लेबाज हैं, या तो आप उनकी प्रिपरेशन ऐसे कर रहे हैं पीछे से ताकि आप उनको किसी भी नंबर पे भेजेंगे तो वो वहां जाकर आपको परफॉर्म करके देंगे। और T20 गेम एक ऐसा है जहां पर अगर आपके ओपनर्स अच्छे चलते हैं, उसके बाद ओवर्स पे भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी एक मैच में बची हुई है, वहां कौन इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा, तो इस हिसाब से भी आपके जो बैटिंग ऑर्डर है वो समटाइम्स चेंज हो जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरह से उनकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, वहां पर कौन से मैच के फेज में कौन सा बल्लेबाज जो है जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मुझे लगता है कि ये मैच कंडीशंस है, मैच सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कब कौन कहां कैसे जा रहा है।
1: मैच सिचुएशंस और टीम की सोच क्या है ये मायने रखता है, लेकिन उस सोच पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे कामेलिनी को जगह मिली है, प्रतिका को आपने ड्रॉप किया है, उतना हम देख रहे हैं श्रीलंका ने बिल्कुल इसका उलट किया है। उन्होंने संजना काविंदी जो कि युवा प्रतिभा है उनको हटाया है, और वो कह रहे हैं कि वी वॉन्ट टू बैक एक्सपीरियंस। हसीनी परेरा ने बहुत लंबे समय से T20 क्रिकेट में कुछ खास किया नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हुई एकमात्र मुकाबला मिला जिसमें शून्य उन्होंने बनाया, लेकिन आज उनको वापस लाया गया है। विश्मी गुणरत्ने को वापस लाया गया है, दे आर बैकिंग एक्सपीरियंस। हाउ डू यू लुक एट दैट?
0: बिल्कुल, इस सवाल पे हम आते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो पहले हम उनका सवाल भी ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। जी अपना नमस्कार, जी अपना सवाल पूछे। जी बिल्कुल उत्तरा, आप इसका जवाब देना चाहेंगे।
3: देखिए अगेन जो हरमनप्रीत ने कहा, कहीं ना कहीं उनका आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि एक तो फाइनल है तो आप नहीं चाहते कि आपकी बैटिंग किसी भी तरह के प्रेशर में खेले। तो जब आप पहले बैट करते हैं तो टारगेट का आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट आपकी मिडिल ऑर्डर नहीं उस तरह से चल पाई है, तो एडिंग एक्स्ट्रा प्रेशर इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम इन एनी वे। फ्री होके खेलेंगे, टारगेट सेट करके खेलेंगे, और अगर आपको अपनी बॉलिंग और फील्डिंग पे भरोसा है कि आप जितना भी टारगेट दें उसको डिफेंड कर पाएंगे, सो फाइनल के हिसाब से अपनी टीम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस और फ्रीली खेलने देने के हिसाब से मुझे लगता है कि ये बैटिंग करने का फैसला बेटर था थोड़ा सा इनका। और जो दूसरा उन्होंने कहा फील्डिंग का, उस पर तो खैर कम जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है, बिकॉज T20 जैसे फॉर्मेट में अगर आप कैचेस ड्रॉप करेंगे तो अगर आपके सामने थोड़ी सी भी मजबूत टीम होगी तो वो आपको के आप दे विल मेक यू पे द प्राइस फॉर इट। अभी तक इंडिया को वो नहीं झेलना पड़ा है क्योंकि उस तरह की टीम नहीं मिली है इनको सामने खेलती हुई, बट आई होप के पिछले मैच और इसके बीच में जो इनको थोड़ा सा ब्रेक मिला है उसमें इस चीज़ पे ज़रूर बात की हो टीम मैनेजमेंट ने कि आप फील्डिंग को इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं।
1: चलिए टॉस पर हमने सुना कि चामरी अट्टापट्टू ने कहा द फर्स्ट सिक्स ओवर्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका के लिहाज से भी भारत के लिहाज से भी। भारत के लिए स्मृति मानधना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ओपन करेगी, और वापस स्मृति मानधना पर आते हैं लतिका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, महिलाओं के क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी ने इनसे ज्यादा रन बनाए नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं फैन बेस में एक वो चर्चा रहती है कि बड़े मुकाबलों में शायद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। जैसा अभी उत्तरा ने भी कहा, जो सेंचुरी आई वो हांगकांग के खिलाफ आई, पिछले दो मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ और सेमीफाइनल बांग्लादेश के खिलाफ, वहां रन नहीं बने। आप कैसे देखते हैं इसको?
2: हाँ देखिए, कोई भी प्लेयर होता है और खासकर स्मृति जैसा प्लेयर जिसने काफी लंबा सफर अभी तक वुमेन्स क्रिकेट में अपना निभाया भी है, और हमने देखा है कि साल दर साल वो इम्प्रूव करते हुए दिखाई दिए हैं। जो नंबर ऑफ रन्स हैं उनके बल्ले से ज़्यादा निकल रहे हैं। आप अगर एबिलिटी देखें उनके सिक्सेस लगाने की या बिग शॉट्स लगाने की

0: वो पहले इतनी नहीं दिखती थी, जो आज के टाइम में उनके बैटिंग में ये फर्क दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो रन बनाती हैं, वहां पर उनकी जो स्किल है वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। और अब जो बड़े इवेंट्स होते हैं तो उनमें हम ये नहीं कह सकते कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे। एक कोई भी प्लेयर होता है, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो, वो पर्टिकुलरली डे पे किस तरीके से, किस माइंडसेट से वो खेलना चाहता है, कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहता है या किस तरीके से देखता है। T20 खासकर एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, खासकर जो ओपनर्स होते हैं, पावर प्ले का इतना प्रेशर रहता है कि इस पावर प्ले को हम किस तरीके से मैक्सिमाइज जो है रन्स ले सकते हैं। तो वहां पर कई बार आपको एग्रेशन के साथ खेलना होता है, जैसा कि शेफाली वर्मा खेलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझ भी रखनी पड़ती है कि सामने जो गेंदबाज हैं वो किस तरीके से गेंदबाजी वहां कर रहे हैं, और जो विकेट है वो किस तरीके से खेल रहा है। जो सरफेस है कई बार उसका भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि आप खुल के अपने वो शॉट्स नहीं खेल पाते। स्मृति की यही बात करूंगी, ओवरऑल ग्लोब में वो क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस उनके पास है, और जो टाइमिंग के उस्ताद वो बन चुकी हैं। जिस तरीके से वो बल्ले से गेंद को जब टच करती हैं तो बहुत ही मज़ा आता है देखने में, और बाउंड्री के बाहर भी जाता है। तो लगता है कि आज के मैच में उनसे काफ़ी उम्मीद है कि एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पर शेफाली और स्मृति देंगे।
1: जी, लतिका आपने बात करी शेफाली की, तो शेफाली जब तक क्रीज पर हैं वो पेस कम नहीं होने देती हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट जब सारे बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, पिच भी बॉलर्स को मदद कर रही थी, तब 64 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली है। लकी भी रही उस दिन, लेकिन कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, एंड शी इज अ फियरलेस बैटर। ओडीआई वर्ल्ड कप में रिप्लेसमेंट के तौर पर आई थी और नाउ शी हैज बिकम इररिप्लेसेबल। उनके ग्राफ को आप कैसे देखती हैं?
0: देखिए, मैं बार बार कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ तो उनके लिए यही कहती हूँ कि पिछले जब वो ड्रॉप हुए थे भारतीय टीम से, उसके बाद लगातार उन्होंने बहुत बेहतरीन क्रिकेट डोमेस्टिक लेवल पे खेला है। वहाँ पर उन्होंने बहुत रन्स बनाए हैं, बहुत मेहनत की है, और जिसका उनको भरपूर फायदा क्या हुआ कि वर्ल्ड कप पे उनको कॉल आया, वहाँ पर वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए उनका परफॉर्मेंस आई। तो ये एक कमबैक जो उनका रहा है बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो अहमियत जानती हैं कि जब आप टीम से ड्रॉप होते हैं और उसके बाद जब आप टीम में आते हैं तो वो डिफरेंस जानती हैं कि कितनी मेहनत करनी होती है। इस शेफाली वर्मा में हमें वो चेंज दिखाई दिया है कि एग्रेशन के साथ साथ आपको लंबी पारी कैसे खेलनी।
2: जी, और सिमिलैरिटीज अगर देखिए, इफ वी ट्राई एंड ड्रॉ पैरेलल्स, उतरा द सेम पैरेलल टू जी कामलिनी, अगेन अ टीनेज प्रोडिजी, एंड अगेन शी हैज बीन ड्राफ्टेड इनटू द साइड इन द बिग फिनाले, हैज प्लेड ओनली वन गेम फॉर इंडिया बिफोर दिस। हाउ डू यू सी इट पैनिंग आउट फॉर हर टुडे, एंड डू यू सी हर बैटिंग एट नंबर 3 इन प्लेस ऑफ प्रतिका, और डू यू सी अ चेंज इन द बैटिंग ऑर्डर?
3: सी, जैसा लतिका ने कहा कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो स्पेशली T20 फॉर्मेट में, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द सिचुएशन इज एट दैट मोमेंट। अगर स्मृति और शेफाली ने आपको बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया बोथ इन टर्म्स ऑफ द रन रेट एंड द रन स्कोर्ड, तो हो सकता है कि आप जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव आपकी लाइनअप है उस हिसाब से आए कि हरमन आ रही हैं, फिर धीरे धीरे अब बाकी आ रहे हैं, और अगर वो जल्दी बाई चांस विकेट गिर गए और आपको लगता है कि आपको नो थोड़ा सा रन बनाने की ज़रूरत है, एक थोड़ी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो आप हो सकता है कि ऋचा घोष को भी ऊपर भेज दें। दीप्ति शर्मा को हमने देखा ही है, 3 से लेकर 10 तक वो किसी भी नंबर पर आती हैं और हर पोजिशन पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हैं। तो ऑर्डर का तो आप नहीं बता सकते कि किस तरह से जाएगी चीजें, बट हाँ, उसको अगर टीम मैनेजमेंट ने एक पूरे टूर्नामेंट में बाहर बैठा के फाइनल में ड्राफ्ट इन किया है, देन शी, दिस इज हर चांस टू प्रूव दैट शी इज समवन स्पेशल, एंड टू प्रूव दैट द टीम मैनेजमेंट इज राइट इन ट्रस्टिंग हर ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ प्रतिका रावल। टीम मैनेजमेंट में एक रिस्क लिया है, ये बिल्कुल सही है, बट उन्होंने रिस्क जरूर लिया है, बट दिस इज अ रिस्क विच आई थिंक दे हैड टू टेक, क्योंकि आपको इसके बाद फिर मौका मिलेगा नहीं, ये लास्ट मैच है, इसमें अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे। एंड प्रतिका रावल का जिस तरह से पिछले कुछ समय में फॉर्म रहा है, आप अगर उनको खिलाते तो हो सकता है वो चल जाती, लेकिन आप अगर किसी और को चांस देना चाहते हैं तो इसके बाद कब देंगे, क्योंकि इसके बाद आपको ये भी नहीं पता है कि नेक्स्ट कब खेलेगी टीम। एशियन गेम्स में ज़रूर जाएगी लेकिन वहाँ पे टीम में क्या चेंजेस होंगे, किसको एक्चुअली खेलने का मौका मिलेगा 11 में, एग्जैक्टली। और वहाँ पे टीम सीधा क्वार्टर फाइनल में उतरेगी ग्राउंड पे, आपको टोटली 2 मैच मिलेंगे 3 मैच मिलेंगे खेलने के लिए, तो इसके बाद आपको नहीं मिलता वो मौका। जहाँ तक कमलिनी की बात है, गिविंग हर अ चांस आई थिंक इज समथिंग विच द मैनेजमेंट वुड हैव थॉट अबाउट, बिकॉज दे नो दैट शी हैज द एबिलिटी टू मेक अ चेंज टू दिस टीम।
2: एंड टॉकिंग अबाउट मेकिंग चेंजेस, इट्स आर कॉलर्स हु मेक अ डिफरेंस टू दिस शो। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुद्दता, आइए उनसे बात करते हैं।
1: जी अपना नाम बताएं और आप कहां से शो में शामिल हो रहे हैं। नमस्कार रेड्डी जी, कैसे हैं आप और अपना सवाल हमारे साथ आप शेयर करिए प्लीज।
2: चलिए धार धार प्रश्न आया है लतिका, सीधा आपकी तरफ बात करेंगे। भारतीय फुलबली क्या सही में फ्लॉप हुई है या फिर उनको मौके उस तरह से मिले नहीं है? पिछले मैच में जब बल्लेबाजी करने आई, एक गेंद बची थी, उसमें भी वो रनआउट हो गई, तो कहीं ना कहीं टीम के लिए खेल रही थी, ये कहना उचित होगा या फिर आपको लगता है कि वो मौके भुना नहीं पाई हैं?
0: हाँ देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है भारतीय फुलमाली के लिए कि उनको वो मौके नहीं मिल पा रहे हैं, वो समय नहीं मिल पा रहा है टीम में जाके, आप किस तरीके से शॉट्स खेल रहे हैं, वहाँ पर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए 2 या 3 बार तो वो रन आउट हुई हैं जिसकी वजह से उनको मिला ही नहीं दूसरे को बचाने के लिए जो कि पहले से ही बल्लेबाज खेल रहा है। तो ये सिचुएशन उनके साथ कुछ इस तरीके से घटी है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अच्छा नहीं खेल रही हैं। जितना मौका मिला उन्होंने खूब कोशिश भी की है और उनको हमने देखा है WPL में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इनिंग्स उनके बल्ले से हमेशा आई है जब उनको नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा खेलने को मिली है। तो मुझे लगता है कि इस चेंज में ऐसी कोई खास खराबी नहीं है, क्योंकि ये चेंज मैं काफी पहले देख रही थी, आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड मैच के बाद मैं ये चेंज देख रही थी। कोई नहीं, फाइनल में आया है, इट्स ओके, लेकिन कमलिनी भी कोई कम प्लेयर नहीं है। पिछले डोमेस्टिक सीजन में हमारे ही साथ दिल्ली के साथ मैच था और उन्होंने 150 स्कोर किया था और अकेले अपने बूते पे उन्होंने मैच जिताया था और वहाँ बड़े बड़े हिट्स लगाए थे। तो काबिलियत उनमें भी है और वो भी उसी तरीके की शॉट्स लगा सकती हैं। और T20 एक ऐसा गेम है, अगर वो नंबर 3 पे आती हैं तो काफ़ी कारगर साबित होंगी। यस, प्रेशर जरूर होगा, एक फाइनल में आपको सीधा मौका मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको अगर अपना सारा निकाल के देना है कि आप प्रेशर नहीं लेते हैं और इस तरह के प्रेशर में आप निखर के आते हैं एज अ प्लेयर, तो वो चीज़ आज बहुत बड़ा मौका है कमलिनी के लिए अगर वो बल्लेबाजी के लिए जल्दी आती हैं तो।
2: ऑन दैट नोट, बड़े संक्षेप में, क्या भारतीय फूलमली को बड़े फाइनल में जल्दी भेजने की वो रिस्क उठाएंगी?
0: नहीं, आज तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके का उनका बैटिंग ऑर्डर है मुझे लगता है वो 6-7 के बाद ही वहाँ पर सूट करती हैं, क्योंकि ऋचा घोष, दीप्ति, अभी कमलिनी है, फिर हरमन है, तो इनके बाद ही अगर वो आती हैं तो मुझे लगता है ठीक है,
1: क्योंकि चेंजेस की बात हो रही है। और लतिका आपने भी कहा कि आप पहले दूसरे मैच में ही ये एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी भारत ने प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं किए, इस टूर्नामेंट में पहली बार कोई बदलाव किया है। वहीं श्रीलंका हैव चेंज देयर प्लेइंग 11 इन एवरी सिंगल गेम, व्हाई डिड इंडिया शाय अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड चेंजिंग द टेम्पलेट?
0: देखिए, मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर ये चेंजेस आप एक अपने साथ कुछ प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं और यंग प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं और काफ़ी समय से अपने साथ उनको ट्रैवल करा रहे हैं, तो ये इस तरह के टूर्नामेंट, एशिया कप हो गया या एशियन गेम्स हो गए, ये इस तरह की के टूर्नामेंट्स ही हैं जो उनको एक्सपीरियंस देगा टीम के साथ कि वो किस तरीके से अपना खेल है जो दिखा सकते हैं, क्या काबिलियत है उनमें वो दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट्स, जब बड़ी आप किसी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आपके साथ जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले।
2: चलिए भारतीय बल्लेबाजी की हमने बात की, थोड़ी सी बात श्रीलंका की गेंदबाजी की भी करते हैं। उत्तरा, एक पेसर है उनके पास बेताली अयोध्या जो स्लिंगी एक्शन के साथ गेंदबाजी करती हैं, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, चामुदी प्रबोदा है, सुगंधी कुमारी है, और उसके अलावा चामरी अट्टापट्टू, जिनका आपने कहा बल्ला खामोश रहा है, गेंद से वो कमाल करती हैं, ये 7 फॉर भी लिया पीछे उन्होंने। इंडिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द आज कौन होने वाला है?
3: देखिए, आपने नाम बहुत सारे लिए हैं, पर जब बड़ा मैच आता है तो बड़े खिलाड़ियों पे स्पॉटलाइट रहता है, और जो पिछला भी

0: फाइनल 24 में खेले थे, वो एक तरह से श्रीलंका की जीत का बहुत बड़ा श्रेय जो था वो चमरी अतापत्तू को ही गया था. और वो जितनी बड़ी प्लेयर हैं उनके लिए इतना लंबा पीरियड उस तरह से रन बनाए बिना निकलना, शायद उनके लिए भी ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल होगी. वो एक जेन्यून लेजेंड वाला जो कैटेगरी आता है उसमें आती हैं वो वुमेन्स क्रिकेट के मॉडर्न लेजेंड्स के हिसाब से. और मुझे लगता है जब बड़ा मैच हो और बड़ा प्लेयर उस तरह से अभी तक ना कर पाया हो तो उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसके उसके अंदर जो चीज़ होती है अपने आप को प्रूव करने की और अपनी टीम को जिताने की, वो शायद किसी यंगस्टर से हमेशा ज़्यादा होती है. बिकॉज शी नोज़ दैट द टीम डिपेंड्स ऑन हर फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग द कैप्टेंसी.
1: जी बिल्कुल. तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहते हैं कि लो स्कोरिंग टूर्नामेंट रहा है, केवल 2 बार स्कोर 150 के पार गए और दोनों बार ये कमाल भारतीय टीम ने करके दिखाया है. तीसरी बार सेमीफाइनल में भी 149 तक तो वो पहुंच ही गए थे, दूसरी कोई भी टीम यहां तक नहीं पहुंची है. डज दैट पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन श्रीलंका?
2: मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम जितना अच्छा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और कह सकते हैं कि हर एक प्लेयर परिपक्व है वहाँ पर अपने आप को शो करने के लिए, तो श्रीलंका जरूर ये सोच रही होगी कि आज किस तरीके से स्मृति मंदाना, फिर शेफाली वर्मा, फिर कमलिनी जो ऐड हुई है, फिर हरमन है, फिर दीप्ति है, तो एक लंबी लिस्ट जो है उसके सामने कैसे आप टिकने वाले.
1: जी फटाफट से उत्तरा और लतिका, क्या स्कोर प्रेडिक्ट करेंगे आप भारतीय टीम के?
0: देखिए क्योंकि टीम पहले बैटिंग कर रही है इंडियन टीम, तो समवेयर अराउंड 140 मुझे लगता है शुड बी अ वेरी गुड स्कोर.
1: लतिका?
2: हाँ बिल्कुल, देखिए ये टूर्नामेंट पूरा लो स्कोरिंग रहा है तो आई थिंक 150-140 के आसपास बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा.
1: ठीक है, तो बिल्कुल हम इंतजार कर रहे हैं अब. और इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, अब आपके साथ जुड़ेगी हमारी कमेंट्री टीम. लतिका उत्तरा बहुत शुक्रिया आपका, हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स शो में. नमस्कार.
3: फर्स्ट बॉल 20.
4: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास.
5: नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का. मैं संजय बैनर्जी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं. भारत और श्रीलंका इस बड़े मुकाबले में एक दूसरे के सामने हैं. एशिया कप का T20 का ये फाइनल मुकाबला है जो दुबई में अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाला है. और जहां तक इस मुकाबले का सवाल है, आप जानते हैं दोनों टीमें अपराजित हैं और दोनों ने बिना किसी मैच को गवाए फाइनल तक जगह बनाई है. तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया आप प्रदर्शन कह सकते हैं श्रीलंका का. पाकिस्तान ने श्रीलंका को सेमीफाइनल में कुछ हद तक परेशान जरूर किया था, लेकिन इसके बावजूद अंततः श्रीलंका ने बाजी मारी और फाइनल में जगह बनाई. जहां तक दुबई का सवाल, हमारे प्रोग्राम में आप सुन चुके हैं कि यहां का विकेट थोड़ा सा धीमा है, रन्स कम बन रहे हैं और इस लिहाज से 140-45 के आसपास का स्कोर एक बेहतर स्कोर कहा जा सकता है इस मैदान के ऊपर. टॉस भारत ने जीता और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अब देखना है कि भारत श्रीलंका के लिए कितनी बड़ी चुनौती यहां पर पेश करने वाला है. और अब वक्त है हमारे पास स्वागत करने का अपने मित्र Munish Jolly ka. Welcome, Munish.
6: Thank you so much, Sanjada, and I hope all the listeners around the country and also people who are tuned in within are keeping well. And of course, there's a big game. It's a Super Sunday. Both men and women team are playing. The bigger game here at Dubai is between the Indian women and the Sri Lankan women. Of course, vying for the honors for the Asia Cup. India making one change, Dada. Surprisingly, the words that I heard from Harmanpreet was that Pratika Rawal has been rested. And that word rested in a final doesn't come in so easily. Not able to digest that easily. Kamalini, though, comes in. But I think that's a strategic change that they've made. Your views on it?
5: Munish, ये पहला परिवर्तन किया है भारत ने. जितने मैचेस खेले हैं दुबई के अंदर अब तक अनचेंज टीम के साथ उतरे हैं. पहला परिवर्तन किया और वो भी फाइनल में किया. अब इसकी वजह क्या थी? क्या प्रतिका रावल का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत संतोषजनक नहीं था? उन्होंने 56 रन बनाए थे 4 मैचेस में, तो ऐसे में उन्हें परिवर्तन के तौर पर बाहर रखना और कमलिनी को लाना एक बड़ा जोखिम भरा फैसला हो सकता है. लेकिन आप जानते हैं ये क्रिकेट है और यहां पर जब आप रिस्क लेते हैं तो कई बार

0: बेहतर भी करते हैं। अंपायर्स अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और इस मुकाबले की शुरुआत होने में बस अब चंद लम्हे बाकी हैं। भारत 7 बार ये खिताब जीत चुका है और जाहिर है 8वीं बार भी उसकी निगाहें खिताब पर होंगी।
1: Absolutely, and both the openers coming out in the middle, and that's the strength of India, the left and the right hand combination. But it's a different game, different ball game altogether at Dubai. The temperatures, of course, it's a clear weather, no chances of rain. And two women who walk on in the middle with a tremendous strike rate, which you were mentioning off air also, Dada, 126 for Smriti Mandana. And of course, 176 matches with over 4,600 runs. 8 more runs to reach to 4,700 runs in her T20 career. But Shefali Verma is equally good.
0: बिल्कुल, कम उम्र में ही शेफाली ने जिस तरह से अपने आप को पुख्ता किया है भारतीय टीम के अंदर, उसकी तारीफ होनी चाहिए। और शुरू में शेफाली सिर्फ बल्ले से अपना जौहर दिखाती थी, लेकिन हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय से लगातार वो गेंद के साथ भी बेहतर प्रदर्शन करती आई हैं। मिथाली अयोध्या गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी श्रीलंका के लिए, ये उनका 11वां मैच है, कुल मिलाकर 10 विकेट ले चुकी है। अगर तेज गेंदबाजी का जिक्र किया जाए तो श्रीलंका के पास एक लौता तेज गेंदबाज मिताली के तौर पर है।
1: एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट स्लिंग आर्म एक्शन जस्ट लाइक मलिंगा। दादा, वर यू सरप्राइज्ड? एंड इट्स अ डिफिकल्ट एक्शन दो।
0: बिल्कुल, बहुत मुश्किल एक्शन होता है, लेकिन जब आप उस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो कई बार वो जो बैटर होता है उसे परेशान भी करता है, क्योंकि आप उसे पढ़ नहीं पाते बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की गेंदों को। लेकिन सामने जो दो बैटर्स हैं भारत के, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बैटर्स में उनका शुमार है। पहली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप से बहुत इत्मीनान के साथ प्लेस किया, खाता खोला 4 के साथ। तो भारत ने खाता खोल लिया है इस मुकाबले के अंदर। स्मृति मांधना के बल्ले से निकला ये पहला चौका और बहुत इत्मीनान के साथ ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को प्लेस किया 4 के लिए।
1: And what a timing. She resembles Sourav Ganguly so much, and I've said that in a number of occasions, even while the live commentary. Of course, Smriti Mandhana, Shefali Verma, G. Kamalini is going to come at number 3, Harmanpreet Kaur, Richa Ghosh, Bharati Fulmali, Deepti Sharma, Prema Rawat, Kranti Gaur, Sri Charni and Nandini Sharma are the women in 11.
0: Mithali ki game, ऑफ स्टंप के बाहर, और जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा सा स्लिंगिंग एक्शन है, और गेंद की दिशा अक्सर स्टंप के ऊपर नहीं रहती। मिताली की अगर आप गेंदें लगातार देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रखने में ज्यादा यकीन रखती हैं। और फाइनल है, फाइनल में भारत खेल रहा है, तो दर्शकों की संख्या कैसे कम हो सकती है? खचाखच तो नहीं, लेकिन हां, कई जगहों पर ठीक ठाक भरा हुआ यह स्टेडियम दुबई में। श्रीलंका और भारत फाइनल खेलते हुए, भारत अब तक हर फाइनल में भारत ने जगह बनाई है इस टूर्नामेंट के। मिताली की अगली गेंद शेफाली के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार थोड़ी सी धीमी गेंद, वेरिएशन के तौर पर उन्होंने हल्का गेंद की गति को कम किया, चकमा देना चाहती थी शेफाली को।
1: Absolutely, and the ball keeping low also, Dada. That's very interesting. Just to read out the 11 of Sri Lanka: Imesha Dulani, Chamariya Thapathu, the captain, Vishmi Guna Ratne, Hasini Pereira, Har Stitha, Samara Vikrama, Kavisha Dilhari, Nilakshika Silva, Kaushini Nithyangana, Sugandhika Kumari.
0: पैर पर गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, लेकिन थोड़ी सी धीमी, और शेफाली ने हल्के से केवल गेंद को थपथपा दिया। शुरुआती लम्हे हैं, कोई आक्रामक स्ट्रोक नहीं खेलना चाहते। एक परिवर्तन भारत ने किया, एक परिवर्तन श्रीलंका ने किया। श्रीलंका का जो परिवर्तन है वो संजना काविंदी की जगह विश्मी गुणरत्ने को टीम के अंदर लाया गया है। चल नहीं पाई संजना काविंदी, कुल मिलाकर 29 रन बनाए थे उन्होंने 4 मैचेस के अंदर। इस ओवर की 5वीं गेंद, और इस बार स्टंप पर। आमतौर पर आप उनकी गेंदों को स्टंप पर नहीं देखेंगे, ये पहली गेंद थी जो स्टंप पर आई थी, और इसे रक्षात्मक तरीके से बल्ले के निचले हिस्से से लगने दिया और सीधे खेला। कप्तान चामरी अटापट्टू, इस पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला नहीं बोला, और ये परेशानी का सबब है श्रीलंका के लिए। चामरी अटापट्टू, जिनकी बल्लेबाजी खौफ पैदा करती है विपक्षी टीम के मस्तिष्क में, वो चल नहीं पाई। आखिरी गेंद, ये भी स्टंप पर, और इस बार रक्षात्मक तरीके से, कोई जोखिम नहीं लेना चाहती शेफाली शुरुआती ओवर में, और इस तरह से 5 रन पहले ओवर में खर्च किए हैं।
1: Well then, the first over, and surprisingly 4 dot balls for Shefali Verma.

0: ओवर के लिए। ये दूसरा ओवर होगा श्रीलंका का। भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जाहिर है भारत के सामने एक चुनौती है, कम से कम 145-150 के आसपास का रन रखना होगा। ऑफ स्टंप के बाहर इंतजार किया, बैकफुट पर गई और कवर की दिशा में बढ़िया खेला, गेम को ड्राइव लगाया चार रनों के लिए। तो दूसरा चौका भारतीय पारी में स्मृति के बल्ले से निकलता हुआ।
1: Oh boy, that's experience, isn't it? Smriti Mandhana, just watching the ball very carefully, goes onto the back foot, and that typical back foot punch, she times it from the middle of the bat.
0: Badiya stroke. Aur gaps bhi unhone pehle se talash liye the, kahan par game ko khelna hai. Bharat ka tiranga darshak teerga mein lagatar lehrata hua hai, is ummeed mein ki kya Bharat 8th baar khitab jeetne wala hai. Aur is baar flight karne ki koshish thi. ड्राइव किया था हाफ बॉली पर लेकर के और गेम को फील कर लिया गया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। भारत ने बहुत आतिशी शुरुआत नहीं की। आमतौर पर जिस तरह की शुरुआत के लिए दोनों बैटर जानी जाती हैं, क्योंकि ये दोनों स्मृति मांधना और शेफाली वर्मा, अगर आप इस टूर्नामेंट के तमाम बैटर्स को देखें तो ये नंबर वन और नंबर टू पर हैं। इनका स्ट्राइक रेट शेफाली वर्मा का 171, स्मृति मांधना का 169, लेकिन आज बहुत सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती ओवर में, और इस बार इस गेम को निकाल दिया। एक और चौका, पावर प्ले का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में बढ़िया चौका खेला है शेफाली ने। भारत का स्कोर बढ़ता हुआ अब 14 रन बिना किसी नुकसान के।
1: एंड व्हाट अ शॉट दैट वाज, इट वाज अ फ्लाइटेड डिलीवरी कमिंग अराउंड द विकेट एंड शी वेंट फॉर दैट दैट स्वीप स्लॉग over the deep square leg boundary for a four. There were just two bounces before the ball reached to the boundary and gets the second boundary of the over for India.
0: Kharchila over hai, ab tak 9 run de chuki hai Kavisha. Oh, ye to full toss dal gayi, hawa mein thi, power play ka advantage mil sakta tha aur isiliye unhone uchhal karke khela. Do khiladi uske piche the lekin kisi ki bhi pahunch mein wo gain nahi thi. Run yahan par mile hain aur hamare जो स्कोरर हैं रणजीत सिंह रावत और स्टैटिस्टिशियन अजय गोयल, अब धीरे धीरे वार्म अप कर रहे हैं। अजय गोयल साहब ने बताया है कि हाईएस्ट स्कोर जहां तक सवाल है वो 44 रन है फाइनल में इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 2024 में।
1: वेल देन ऑफ कोर्स दिस इज another delivery that comes in, she's gone high up in the air. Oh, thankfully the ball just landing beyond the fielder again, and Shefali Verma just attacking Kavisha Dilhari. I don't know, Sanjeda, whether that's the right approach or no, because the ball is near, as you rightly said, sometimes it slips away from the bowler, but the length and the timing, you need to find that.
0: Off stump ke bahar, अपने स्टंप्स को कवर किया और जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में। दूसरा ओवर समाप्त, भारत का स्कोर 18 रन। अच्छी बात यह कि भारत ने कोई विकेट गवाया नहीं, अपनी जगह पर दोनों बैटर्स खेल रही हैं और ये दोनों बैटर्स दुस्वप्न हैं किसी भी विपक्षी टीम के लिए। और आज जिस तरह के तेवर और जिस तरह के अंदाज के साथ इन्होंने शुरुआत की है वो ये बताता है कि दोनों आज विकेट पर टिकना चाहती हैं, और जब सेट हो जाएंगी पूरी तरह से तब बड़े स्ट्रोक्स लेना चाहेंगी। मुनीश जॉली,
1: थैंक यू सो मच दादा, एंड ऑफ कोर्स द इंग्लिश एंड द हिंदी कमेंट्री फॉर ऑल आवर लिसनर्स अराउंड द कंट्री। आकाशवाणी ब्रिंगिंग यू द लाइव कवरेज ऑफ द एशिया कप 2026। ऑफ कोर्स इंडिया प्लेइंग श्रीलंका, द विमेन आर द चैंपियंस इन द 50 ओवर फॉर्मैट। मिथाली कंटिन्यूइंग फ्रॉम द अदर एंड, again that slinging arm action, just pitching the ball on the middle and leg for the left handed Smriti Mandhana. The field, of course, five fielders for Smriti Mandhana on the leg side. It was a mid on mid wicket, a short fine leg, a player in the deep. They also had one player at long on for her, but a different field placement for Shefali Verma. The short third man, fine leg inside the circle, which is of course a 23-meter circle for the women cricket. Shefali Verma on strike, she's batting on 8 off 8. She played the four first balls at dot balls, gets a short off length delivery and guides the ball on the right side of the short third man field, and the ball races down to the boundary for a four.

0: Now this looks like to be a better shot by Shefali compared to the couple of runs she took in the previous over from Kavisha Dilhari.
1: बिल्कुल पूरे संयम के साथ उन्होंने इंतजार किया और चूंकि हल्का स्विंग हमेशा मिलता है उसे देखते हुए इंतजार किया और आखिरी वक्त पर सिर्फ गेंद को दिशा दे दी. खूबसूरत स्ट्रोक, एक और चार.
0: Well, they got two fielders outside the 23 meter area circle, one at the deep mid wicket, the other as a sweeper, not as a point or a backward third man. Meanwhile, the next delivery on the middle and leg, and she times the ball beautifully towards the mid wicket boundary for a four.
1: Munish, agar ye jodi set ho gayi aur ye power play ko inhone nikal diya to ye maan kar ke chaliye ki Sri Lanka ki mushkilein badhne wali hain. अमोल मजूमदार जो कि भारतीय टीम के कोच हैं लगातार टीम को संवारते हुए.
0: दादा, वन थिंग इज एब्सोल्यूटली श्योर दैट देयर इज एन इनफ बाउंस ऑन दिस विकेट. इट्स गोइंग टू कीप लो एंड द इंडियन प्लेयर्स एंड ऑफकोर्स द बैटर्स ऑफ श्रीलंका दे हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो यू स्टार्ट रीडिंग द विकेट एज अर्ली एज पॉसिबल. सो इट्स कीपिंग लो एट द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. शेफाली बैटिंग ऑन 16 ऑफ 10. स्मृति मंधना एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड माइंड यू शी इज बैटिंग ऑन 11 एंड बॉय व्हाट टाइमिंग शी इज डूइंग. 11 ऑफ 5 एट द मोमेंट. शेफाली फेसिंग Mithali Ayodhya comes in right arm over the wicket and a short of length delivery. Apesh, then there's a deep point, there's no short point, so the ball does fly in the air for some time near the 23 meter area, drops and then races down to the fielder. So a single, and good to see that there's a rotation of a spike also when there's a good ball. So 10 runs in this over already, and mind you, 5 boundaries have been scored by the Indian batters and they're batting strongly. The total at the moment for India is 28 without loss, and Sri Lanka, of course, they lost the toss. India won the toss and Harmanpreet said that it's a big game and we want to bat first.
1: हालांकि चामरी ने कहा था टॉस हारने के बाद कि वो फील्डिंग ही करना चाहती थी पहले, तो उस लिहाज से जो वो चाहती थी उन्हें मिला, जो हरमनप्रीत चाहती थी वो उन्हें मिला.
0: Next delivery from Mithali Ayodhya, right arm over the wicket, and she comes in short of length delivery, and Smriti Mandhana does it well to watch the ball. It kept low after pitching, a short of length delivery, and she just went back and gently plays the ball back to the bowler. Quickly she goes to the run up. Mithali just walking and now runs to bowl another delivery, this time straying down the leg side and short of length delivery. They've got a deep square leg also plays for Smriti Mandhana. She's a good attacker of the ball. So a single to end this over number 3, and India have had a wonderful start now, and this of course is a single that will take India to 29 without loss. Mandhana batting on 12. Shefali Verma, four dot balls to start with. I tell you what, she's raised up to 17 in 11 deliveries.
1: कमाल की बल्लेबाजी की है पूरे टूर्नामेंट के दौरान शेफाली वर्मा ने. कुल मिलाकर 168 रन बनाए उन्होंने इससे पहले इस टूर्नामेंट में, और उनसे ठीक पीछे हैं स्मृति मांधना. और अगर आप टॉप बैटर्स की फहरिस्त देखें इस टूर्नामेंट में तो टॉप दो की पोजीशन पर शेफाली वर्मा और स्मृति मांधना काबिज हैं. कमाल की बल्लेबाजी कर रही हैं बहुत बढ़िया तरीके से. आज भी जिस तरह से विकेट को पढ़ करके इन्होंने खेलना शुरू किया है, और ये बिल्कुल सही रणनीति के है कि आप शुरू में कुछ गेंदों को सम्मान दें और उसके बाद कमजोर गेंदों पर आक्रामक रुख अख्तियार करें.
0: Sugandhika Kumari has been now invited to bowl. Of course, 106 matches with 81 wickets in her T20 career. And the left-arm spinner starts coming around the wicket. And a slower delivery. It was a floater of a ball coming left-arm around the wicket. And short of a length delivery to Smriti Mandhana. And she's doing just the right thing, Sanjita, that she is waiting for the loose opportunity. Otherwise, she's just timing the ball well and she does it to perfection this time, picks up a single.
1: बिल्कुल यही तरीका भी होना चाहिए मुनीश, के इस समय कोई रन्स बनाने की आपको बहुत जल्दी नहीं, अगर विकेट सुरक्षित हैं तो रन खुद ब खुद बनेंगे और तेजी के साथ बनेंगे.
0: With that single, Shefali will come on strike faces and she steps out to this flatter delivery. Good to see that once she saw Sugandhika just checking that length and bowling a tight line at short of length, she just places the ball to the mid-off fielder. Didn't get a run, so she's on strike once again. Smriti is batting on 13, Shefali on 17. And a short delivery that kept low, and we're going to say that again and again because that's the highlight of this big wicket at Dubai International. She did go for a shot across, plays it down to the deep mid-wicket area for a single. India with that single move on to 31 without loss. But the ball is keeping really low, Sanjeda.
1: ये कई बार परेशान करता है बैटर्स को, लेकिन अब चूंकि लगातार आप इसी

0: विकेट पर खेलना है दुबई में, तो जाहिर है थोड़ा सा अनुमान तो अंदाज हो ही गया है।
1: Another delivery outside the off stump. Mandana times the ball well, but then the fielders inside the 23-meter area circle. Wide-ish, short third man, a backward point, then they've got a cover and an extra cover. There's also one fielder longer for Smriti Mandana. She's got that tendency of stepping out of the spinner. Sugandhika, just two runs conceded and four balls, comes again, once again, short delivery, and she pulls it towards the deep mid-wicket area, and the ball races down to the boundary for a four for Smriti Mandana.
2: एक और चौका, और इस चौके के साथ भारत पहुंच गया है 35 पर बिना किसी नुकसान के। सुगंधिका को परिवर्तन के तौर पर लाया गया और शुरुआत की दो तीन गेंदों पर बहुत इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी की शेफाली वर्मा ने, और जैसे ही एक कमजोर गेंद मिली स्मृति मांधना को, चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिया।
1: सो देन थ्री बाउंड्रीज ईच फॉर स्मृति मांधना एंड शेफाली वर्मा एज अ स्कोरर। रंजीत सिंह रावत टेल्स अस that and he also points out that Smriti Mandana is timing the ball to perfection, and yes indeed, because the next delivery was a short of length delivery way outside the off stump. She didn't go for a cut, and I tell you what, that's a good technique, because the ball is keeping low and the coaches and you know, the guides tell you that you shouldn't go for a cut shot if the ball is keeping low, and that's exactly what Smriti Mandana did. Didn't get a run though, but she went for a back foot punch, raised the ball to the cover fielder. So after the end of the over number 4, India are 35 without loss. Mandana batting on 17. Verma, oh boy, what a start she had. Four dot balls and then racing and overtaking Mandana. I tell you what, 18 happens to be till now her best score in Asia Cup
2: 2026. Bilkul, aur jahan tak Smriti Mandana ka sawal hai,
1: in fact the final, because she hasn't really done well in the final. She had a lovely semi-final, but as far as the finals are concerned, the new stat that came to us from our scorer Ranjit Singh and of course Ajay Goel, our statistician, that this is the best score in a final of a big event.
2: Bilkul, teesra final khel rahi hai wo aur ab tak ka sabse bada score khada kiya. Parivartan Chamari Attapattu, pehli gend aur seedhe char ranon ke liye dispatch. मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकाल दिया शेफाली ने, मिडल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकल रही थी, और सिर्फ शेफाली को सिर्फ अपना बल्ला चलाना था। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, एक और चार।
1: What a shot then. It was a short delivery, and I think that was just a warm-up delivery for the Sri Lankan captain. Short enough for Shefali, who's already set and hits that ball to perfection. Though there was a fielder, but it was hit on the right side and a very powerful shot.
2: सबसे ज्यादा विकेट चामरी के नाम है श्रीलंका के लिए। एक और स्ट्रोक, और इस बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। गैप्स जितनी शानदार तरीके से उन्होंने निकाले, लेकिन बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर के गेंद फील्ड हुई। कवर पर पॉइंट और मिड ऑफ के बीच में से यह स्ट्रोक खेला था, तो लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए शेफाली अब पहुंच गई हैं 24 पर। 15 गेंदों में 24 रन, स्मृति मांधना 11 गेंदों में 17 रन बना चुकी हैं। चामरी अट्टापट्टू, इस बार विकेट तो जरूर उन्हें मिले, लेकिन बल्ले से रन नहीं बने, और ये श्रीलंका के लिए परेशानी है। और ये एक और स्ट्रोक सीधे 6 रनों के लिए, ये पहला छक्का शेफाली के बल्ले से। चामरी अट्टापट्टू जैसे ही आई, अचानक आक्रामक हो गई शेफाली। कुल मिलाकर 12 रन 3 गेंदों में अट्टापट्टू के, कहीं कोई परेशानी नहीं। फ्लाइट कराने की कोशिश, हाफ बॉली पर लिया और अच्छी बैकलिफ्ट के साथ गेम को उठा दिया, एकदम लॉफ्टर ड्राइव 6 रनों के लिए। और अब सेलिब्रेशन का टाइम इंडियन दर्शकों के लिए दुबई के अंदर।
1: We just short of that 50 run mark, and what a start India has. Smriti at the non-strikers and just playing that role of a matured batter. Shefali on strike, batting on 30.
2: कमाल की बल्लेबाजी, इस बार बैकफुट पर गई, और चूंकि गेंद में बहुत ज्यादा गति नहीं थी, स्ट्रोक खेलने का मौका मिला, यहां रन भी मिले साथ ही साथ। तो भारतीय दोनों बैटर्स बिना किसी परेशानी के अब तक चलती हुई, और जो वर्तमान रनों का औसत है वो 10.29 है। पावर प्ले चल रहा है बिना किसी नुकसान के, पांचवा ओवर निकल रहा है, और ऐसा लगता है कि फील्डर के पैर पर थोड़ी सी चोट है, लेकिन चामरी अट्टापट्टू मुनीश बल्ले से कुछ भी नहीं कर पाई इस पूरे टूर्नामेंट में। 63 रन हैं उनके नाम चार मैचेस में। और श्रीलंका की अगर आप बल्लेबाजी देखें तो पूरी तरह से चामरी अटापट्टू पर निर्भर है, और अगर वो ही नहीं चलती हैं तो फिर टीम परेशानी में पड़ती है।
1: Well, she did lead the chase and get close to her half century, but after that, yes, she's scripting, trying to script another victory. But then we see an injury on the field, and that's a twist of an ankle, and that's not a good news for the Sri Lankan team, because I tell you what, there isn't any role that the other batters or the fielders have played till now, because Sri Lanka into the fifth over fielding, and then they don't want to see a player getting injured while fielding. We can understand that if there's a bowler who's coming in and bowling and there's a hamstring pull, or while the batter is batting between the running between the wickets, there is an injury. But then right at the start of the game, in the very first power play, where India have raced on to a blazing start with 48 without loss, the rhythm of the game has been held up because there is an injury right there in the middle. We'll quickly identify the player, because she's been crowded around by the other players. Smriti Mandhana, Shefali right there in the middle and standing quite apart, talking to each other. Smriti doing the much of the talking, and that's needed. And that's not a good sight that we see just now, because the stretcher has been brought in.
2: बिल्कुल, जब इस तरह की चोट होती है, अगर आपका बैट ट्विस्ट कर जाए तो वो आपको परेशान करता है, इसमें कोई शक नहीं। और अब देखना होगा कि जिस तरह से प्रदर्शन करती आई है भारतीय टीम, शेफाली की पल्ले से आज 17 गेंदों पर अब तक 31 रन बन चुके हैं, एक छक्का लगा चुकी हैं, चार चौके लगा चुकी हैं। बढ़िया पारी शेफाली की, और अगर आप सलामी जोड़ी का जिक्र करें तो यह सबसे बढ़िया प्रदर्शन है फाइनल के अंदर, T20 क्रिकेट में, एशिया कप फाइनल में। भारत की इन दोनों बैटर्स का और कुछ लम्हों के लिए खेल में व्यवधान।
1: We still have to figure out what's happening, because the umpires are definitely trying to get things sorted out here, because it's not helping as far as the rhythm of the game is concerned. And of course, at the center, there's a lot of crowd, and it seems that Shefali and Mandhana have also spoken to the umpire in case there is an injury which is really dangerous, and if the player is injured, you need to get the player substituted.
2: बिल्कुल, विश्मी गुणरत्ने को आज टीम के अंदर शामिल किया गया, मौका मिला उन्हें फाइनल के अंदर, लेकिन चोट की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है, और बाहर गई हैं वो, स्ट्रेचर पर उन्हें बाहर ले जाया गया है। इस बार गेम का इंतजार किया चामरी अटापट्टू ने, और हल्के से केवल दिशा दी उसे मिड विकेट पर। स्मृति मंदना और शेफाली दोनों बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं, एक स्वाभाविक सी मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर है। उन्हें पता है कि उन्होंने भारत के लिए गजब का स्टार्ट दिया है, एक सॉलिड स्टार्ट दिया है। 150 रन 140 प्लस निश्चित तौर पर श्रीलंका को परेशान कर सकते हैं। चामरी अटापट्टू की ये गेंद, और इस बार फिर स्ट्रेट खेला एकदम सामने। अब देखना है ये छह है या चार है, जाकर के गेंद रोप के नजदीक लगी है, हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कमाल की बल्लेबाजी कर रही है शेफाली, खासतौर पर चामरी की गेंद पर, उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। ऊंचा शॉट खेला, दूसरा शॉट था इस ओवर में, और गेंद सीधे जाकर के रोप से क्या पहले गिरी या रोप पर गिरी, ये देखना होगा, अंपायर का फैसला करना होगा। मुनीश, आपकी नजरें क्या कह रही
1: हैं? टू मी इट लुक्स लाइक अ सिक्स, एंड नाउ इट्स बीन गिवन बाय द अंपायर एज वेल, एंड विद दैट सिक्स इंडिया क्रॉस द 50 रन मार्क, एंड व्हाट अ स्टार्ट बाय इंडिया इन द वेरी फर्स्ट 5 ओवर्स। 23 मिनट्स ऑफ बैटिंग इंडिया हैव क्रॉस्ड द 50 रन मार्क, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दे हैवंट लॉस्ट अ सिंगल विकेट, सो 55 after the end of 5 overs.
2: Sugandhika ka naya over, naya over ki shuruaat, ye dusra over hai Sugandhika ka. Achhi gendbaaz hain jahan tak Sugandhika ka sawal hai, anubhav hai unke paas, 100 ke aas paas matches khele hain, 35 varsh ki umr hai, 2015 mein Pakistan ke khilaaf debut kiya tha, takriban 11 saal ka safar tay kar chuki hain, aur बढ़िया बल्लेबाजी की है आज, खासतौर पर चामरी अटापट्टू के

0: आत्मविश्वास को हिला करके रख दिया शेफाली वर्मा ने। दायरे पर गेंद को फील करने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटकी और यह मौका मिल गया दोनों बैटर्स को दौड़ करके एक रन ले लेने का। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। करंट रन रेट जो है वो अब लगातार ऊपर जाता हुआ 10.7 पर पहुंच गया है, यानी कि 11 रन प्रति ओवर और भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया है। इससे बढ़िया स्टार्ट और क्या हो सकता है भारत के लिए। स्मृति तैयार और इस बार हल्के से केवल दूर किया अपने शरीर से गेंद को लेकिन कोई रन नहीं। स्मृति थोड़ा सा संयमित होकर के खेल रही है और शेफाली अपनी जो स्वाभाविक शैली है उसके साथ खेल रही है। स्मृति कमजोर गेंद पर हिट कर रही है और शेफाली जिस तरह से खेलती हैं तकरीबन उसी तरह से खेल रही हैं।
1: Absolutely, and the next delivery that we see, Smriti Mandana just does that. She comes onto the front foot and gently plays the ball to the cover fielder. She isn't going after the bowlers, but I think that's a plan where Shefali will be striking to the bowlers, and she's done that in style, playing four dot balls to start her innings. Shefali Varman batting on 38, Smriti Mandana on strike at 19.
0: Sugandhika, oh, is bar off stump ke kafi bahar khel gayi. अश्विनी परेरा ने गेंद को फील किया और यह भी एक डॉट बॉल। सबसे तेज अर्धशतक 30 बॉलों में इस एशिया कप में यह दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है और वो भी फाइनल में। आखिरी गेंद इस ओवर की और इस बार बैकफुट पर एक और डॉट बॉल। 6 ओवर यानी कि पावर प्ले की समाप्ति। भारत का स्कोर 57 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, यानी कि एक स्वप्निल शुरुआत की है भारत ने एशिया कप के इस फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ।
1: वेल देन अगेन ब्रिंगिंग दैट स्टैट वेयर शेफाली वर्मा इज बैटिंग ऑन अ हाईएस्ट स्कोर इन एन एशिया कप फाइनल। ऑफ कोर्स शी इज ब्लास्टेड द बोलर्स अराउंड इन द प्रीवियस गेम एंड शी वाज द लीडिंग स्कोरर फॉर श्योर। स्मृति मांधना फॉलोइंग हर and Harmanpreet Kaur will be very happy with her decision, so will be Amol Mojumdar, because India at the moment are 57 without loss after 6 overs, and of course we have another 14 overs and we will be getting 84 legitimate deliveries for sure. Chamudeep Prabhudha, the baby faced left arm spinner of the Sri Lankan women's team, is getting ready. She's warming up for her spell. She'll be bowling to Shefali, who's on strike. There's a shot, a third man point, cover, extra cover, a long off in the offside. Now, the rules of the women cricket, the fielding restriction from 20th over, there wouldn't be more than 4 fielders allowed outside the 25-yard circle. So, very similar to the men's ODI, where from 11th to the 40th over, there are only 4 fielders are allowed outside the 30-yard circle. In women's cricket, as far as the T20 is concerned, only 4 players outside the 30-yard circle. Dada, you think that's justice for a spinner?
0: मुझे लगता है कि जहाँ तक spinner का सवाल है, उसके साथ थोड़ा सा तो न्याय होना चाहिए, होता भी है। और जहाँ तक चामुदी हैं, इन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की है, ये देखिए ये हवा में है, लेकिन चलिए किस्मत अच्छी है कि वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं।
1: Well, then a single was picked up on the very first ball. Shefali Verma then came at the non-strikers. Then Smriti Mandana was on strike. It was a flighted delivery, short of length, and a half-hearted shot. And that probably, you know, the way Sanjay Banerjee said, it's in air. And we were like, you know, all our pulses stopped for a few seconds. But thankfully, we got our pulses back when we saw the ball landing at a safe area, at the deep square leg area. And Shefali now faces the ball. It's a flighted delivery. She comes onto the front foot, over the extra cover, and the ball races down to the boundary for another 4.
0: Kamal ka ek aur chauka, Shefali ka. 21 gendon par ab 43 run bana chuki hain. Chamudeep Prabhudha, July mein unhone debut kiya hai, sirf 2 mahine pehle. और जाहिर है कि जिस तरह से पिटाई हुई है उनकी कैप्टन की इससे पिछले ओवर में, चामुदी का कॉन्फिडेंस भी हिला है। सब कुछ दिमाग मस्तिष्क में खेला जाता है, कोई भी खेल हो मैदान के अलावा। अगर आप मनोबल आपका मजबूत है तो आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर जरा भी दहशत आपके अंदर होती है तो हाथ कांपने लगता है, गेंद की दिशा आप भूलने लगते हैं।
1: Chamudi got 2 wickets in the semi-final against Pakistan and she bowled a very tight spell this time.

0: in total for India. Shefali gets a delivery, a flighted delivery. Now she's got both the off spinners and the leg spinners in her armory. Probably wants to bring that change. And Shefali just gets a flighted delivery onto the front foot, drives the ball to the long off fielder for a single. India move on to 77 without loss. And we are into the eighth over. One more delivery to come, and what a start by India. It's a big game though. India won the toss, elected to bat. They made one change. So the only change is Pratika Rawal, who wasn't good with the bat, and she's been rested. So Kamalini comes in to fill up that gap in the final over. Meanwhile, Smriti Mandhana gets a delivery, places the ball to the onside, to the deep square leg area for a single. And that will be the end of the over number 8. India onto a solid start, just hovering around that 10 run and over mark. And at the moment, with Mandhana batting on 24, Shefali Verma batting on 53 of 25, and what a strike rate of 212. India 78 after 8 overs. And just to get that more flavor, Sanjay Banerjee is going to bring in this commentary to be very precise with the timing at the moment. It's 8:36 by the Akashwani clock. Very accurate. And I want to ask a question, and I want Sanjay Dada to be very accurate. Dada, any predictions for the total which India can reach to?
1: 150 for sure. इसके बाद भी हालांकि इतना अच्छा स्कोर अब तक भारत ने कर लिया बिना नुकसान के, लेकिन इसके बाद भी क्रिकेट की अनिश्चितता को आप बिल्कुल दरकिनार कर नहीं सकते. लेकिन 150 तो अब कहीं नहीं गए, और ये टोटल श्रीलंका के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है. शेफाली की बल्लेबाजी आज असाधारण बैटिंग की, फास्टेस्ट 50 उन्होंने लगाई, 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. और मुझे सिर्फ एक चीज लग रही है मुनीश, शायद आप भी मेरी बात से इत्तफाक रखें, कि जिस तरह से इन दोनों बैटर्स ने आज बैटिंग की है, जमीन आसमान का फर्क है. क्योंकि अगर आप दोनों का स्ट्राइक रेट देखें, तकरीबन बराबर 170 के आसपास, लेकिन आज स्मृति मांधना सिर्फ और सिर्फ रुक करके खेल रही हैं, और शेफाली लगातार आक्रामक हो रही है. इस बार गेंद गई थी सीधे स्क्वायर लेग की दिशा में, और वहां पर रन बना, एक रन और इस रन के साथ 79. तो क्या इस रणनीति को पहले से तय किया था इन दोनों बैटर्स ने कि आज इस तरह से खेलना?
0: आई थिंक सो, बिकॉज इट्स अ कॉशियस स्टार्ट, बिकॉज स्मृति मांधना इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ सीनियर प्रोफेसर राइट देयर इन द मिडल ऑफ द विकेट, एंड शेफाली इज अ ट्रू ओबीडिएंट स्टूडेंट बैटिंग ऑन 53. शी इज ऑन स्ट्राइक एट द मोमेंट.
1: तकरीबन बराबर गेंदें खेली है दोनों ने, और इस बार बैकफुट पर जाकर के पंच किया, और एक और चौका अपने नाम किया. इतना आसान स्ट्रोक लग रहा है शेफाली के बल्ले से, कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई अटेम्प्ट ले रही हो. और एक बच्चे की तरह एक निश्चल मुस्कुराहट उनके चेहरे से, स्मृति ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े होकर के उनकी तारीफ की, और शेफाली ने मुस्कुरा दिया. कमाल की बल्लेबाजी कर रही है शेफाली. आप भारत के लिए एक इतना शानदार सितारा मिला है शेफाली के तौर पर, कि आप जितनी तारीफ करें कम. और बिल्कुल नई खिलाड़ी हैं चामुदी प्रबोदा, जुलाई में डेब्यू किया है, और आते ही साथ दुनिया के इन दो टॉप महिला बल्लेबाजों से उनका सापका पड़ा है. जाहिर है थोड़ा सा दबाव तो है.
0: बेबी फेस बोलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, फ्लाइट्स द बॉल एंड जस्ट कमिंग ऑन टू द फ्रंट फुट एंड हैमरिंग द बॉल टू द लॉन्ग ऑफ फील्डर फॉर अ सिंगल. बट देन इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन इजंट इट, वेयर द बेस्ट प्लेयर्स एज यू मेंशनड ऑफ द वर्ल्ड, Smriti Mandhana and Shefali in a great nick, and who else but the youngster Chamudi Prabhuda with the ball. A lot of learning for her as well. And this is another delivery coming, and Mandhana steps out. She's hit that ball high up in the air. Where is it going to go?
1: Ek aur chakka Smriti Mandhana ke balle se. Ab Smriti Mandhana ne bhi kaha ki hum bhai kitni der khamosh rahenge. बहुत परेशानी में है चामुदी प्रबोदा. अब क्या करेंगे? क्या उन्हें परिवर्तन के तौर पर किसी दूसरे गेंदबाज को लाया जाएगा चामुदी के बाद? गेंदबाजी में परिवर्तन क्या अपेक्षित है? लेकिन करें तो किसको करें? चामरी अट्टापट्टू तो खुद नहीं चली, उनके खिलाफ भी काफी आक्रामक बल्लेबाजी की है दोनों इंडियन बैटर्स ने. बहुत परेशानी में है चामरी आज. कुल मिलाकर 12 रन 4 गेंदों में.
0: Well then, what a shot that was. It's just silenced the Sri Lankan players in the middle. as Chamadi Prabhuda now comes in and bowls a dot delivery. That must be a sigh of relief for them. So India touching the 10 run and over from here as she comes in and bowls a flight to delivery that's been swept towards the, in fact, towards the wide of deep mid-wicket fielder. And who else but the captain comes in and before she throws the ball back to the wicketkeeper, a single will keep Smriti Mandhana on strike. So after 9 overs, India have finally reached to that run rate of 10 and over. In fact, 10.1. So we are at 91 without loss. And what a start by the Indian opener. Smriti Mandhana on 32. Mind you, she was the first striker. She got 5 runs in the very first 2 balls of the Indian innings, and there were 4 dot balls by Shefali Verma. And of course, our scorer who hails from Shimla, from Nagpur, Ranjit Singh Rawat, and our statistician Ajay Goyal said, reminded us that it's getting a little pleasant in Shimla. Why don't we get that weather in Dubai? So he sent those cool waves, and it's so pleasant if you are an Indian fan, because Shefali Verma is batting on a higher score on in an Asia Cup final, and that is tremendous. Sanjay Banerjee da
1: asadharan ballebazi keh sakte hain aap Shefali ki. Ek bhi stroke ab tak unke balle se kamzor nikla nahi. Aur chaliye ab atapattu khud aayi hain Kavisha Dilhari ki jagah par, kya impact dal payengi?
0: Well, then a flight to delivery, and Smriti Mandhana comes in and lifts the ball over the cover fielder. It's not a six, but it's a beautifully timed shot by Smriti Mandhana. From a straight bat, she made that room over the cover area and hits another boundary. And somebody who's been just pointing towards the screen of our statistician and the scorer, that's our scorer Ranjit Singh Rawat, who reminds me that there have been only 8 dot balls played by the Indian players, 4 each by Smriti Mandhana and Shefali Verma. The next delivery is a tight delivery by Atapattu, comes in and bowls that delivery, and a little shaky there. Smriti wasn't too sure whether to come forward or to go back, and a thick edge that goes to the short third man fielder, but no runs. 95 then for India. 9.2 overs gone. Atapattu comes in, slower delivery, short of length, onto the back foot. She punches the ball to the long on fielder, gets a single. Now the field placement is the third man and the fine leg inside the circle. Now she's got more fielders on the offside for Smriti Mandhana. A typical defensive field, Dada, as we see, there's a short fine leg and then there's a deep square leg, deep mid-wicket, and a long on for Smriti Mandhana. And of course, it's a struggle. It's a big challenge in women's cricket where only 4 fielders are allowed outside the 23-meter area, the circle. And you just think, where can you place the fielder? Meanwhile, that must be happening in the mind of Atapattu also, as she comes in and bowls a delivery short of a length and onto the back foot and just pulling the ball to the deep square leg fielder, which is very finely placed. And Shefali will get a single and moves on to 59 of 28 deliveries. Mind you, she's batting with a strike rate of 210.7. Mandhana is batting on 37. She's on strike. Atapattu just looking at the field on the onside. As I told you, there's 1 fine leg and 3 fielders at the fence. The square leg, mid-wicket and long on fielder. She's just having a look there. So is Smriti Mandhana. Takes her time to settle down. Now she takes the stance. 6 runs in this over. 2 more deliveries to come. A flighted delivery onto the front foot. And very intelligently, she plays with a straight bat. A straight drive, which will go to the long on fielder. And that, of course, is another single, which is taking India to closer to the 100-run mark. It is 98 without loss. Smriti Mandhana on 37. Shefali comes on strike. Another delivery from Atapattu, and that's a faster delivery. And good to see that she is challenging Shefali Verma with a half-volley style delivery that turns into a yorker. And of course, Shefali didn't get a connection, so good collection by the wicketkeeper. And to end the over number 10, where the players will get a little breather in that heat in Dubai. India at the moment 98 without loss. Smriti Mandhana batting on 38 of 31 deliveries. Shefali Verma batting on 59 of 29 deliveries. Mandhana with a strike rate of 122.6. Shefali Verma with a strike rate of 203.4. The stats and the scores coming from a statistician who hails from Shimla, and that is Ajay Goyal, and somebody who brings in that sweet vitamin C styled the orange flavor from Nagpur is our scorer, Ranjit Singh Rawat. And of course, Sanjay Banerjee, wouldn't want to describe where he is from because he's moving around the world, just the way the score of India is moving all around the field. And there he is smiling around. And Dada, I hope your throat is all right now, because the way India is batting just now, we need to save our throat power, vocal cords, because India is on a splendid.
2: Akashwani se samachar sandhya ke saath main Sir Firozi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया. 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया. प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए. इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता. भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता. और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी. वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने. अब समाचार विस्तार से. नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे. दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है.
3: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है. पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है.
2: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा.
3: हम आशा करते हैं इस समिट से, उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा. हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा. हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल राइट में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है. प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी. इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए.
3: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं. ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है. वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी.
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
4: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा. इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे. ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया. पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के जरिए लिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

0: है ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
2: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई परिवर्तन किए हैं।
7: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
2: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स मामलात के हल फराहम करने का एक इको निज़ाम है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नई दिल्ली एलामिया के सभी फैसलों पर मुकर्रर वक्त के अंदर अमल दरामद किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग इख्तिताम को पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं के साथ 15 दोतरफा मीटिंगें की। इसके साथ साथ उन्होंने सरबराह मीटिंग से अलग बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान के साथ भी अपनी सरगर्मियां जारी रखीं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत का मकसद लैब में तैयार किए गए हीरे जवाहरात के शोबे में एक आलम

0: रहनुमा की हैसियत अख्तियार करना है। जावा समंदर में इंडोनेशिया का एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में 6 अफराद हलाक और तकरीबन 130 लापता हो गए हैं। हॉकी में भारत की मर्दों और ख्वातीन की टीमों ने चीन के शहर मोकी में जूनियर एशिया कप के खिताब हासिल किए हैं और क्रिकेट में ख्वातीन के T20 एशिया कप में दुबई में भारत और दिफाई चैंपियन श्रीलंका के दरमियान फाइनल मैच जारी है। उधर नई दिल्ली में 3 मैचों की मर्दों की T20 सीरीज का पहला मैच भारत और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को उजागर करने के साथ इख्तिताम पजीर हुई कि ब्रिक्स के तनवों की बुनियाद पर इसकी शनाख्त ताउन और तहरीक बरकरार रहेगी और इसकी तरक्की से इंसानियत के मकसद को ताउन हासिल होता रहे। दो रोजा सरबराह मीटिंग के आज आखिरी दिन अपने अख्तामी कलमात में वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स महज कोई मुल्कों का एक ग्रुप नहीं है बल्कि ये मामलात के हल का एक इको निज़ाम है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन में जो मुज़ाकरात हुए उनसे इस मकसद को मजीद इस्तेहकाम हासिल हुआ है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: बड़ा मीटिंग में मंजूर किए गए नई दिल्ली एलामिये से एक मुश्तरका तसव्वुर और मुस्तकबिल के ताउन के लिए एक वाज़ह सिमत फराहम होगी। उन्होंने इस जरूरत पर भी जोर दिया कि तमाम फैसलों पर मुकर्रा वक्त के अंदर अंदर अमल दरामद किया जाए जिससे तमाम तर लोगों को फायदा हासिल हो।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी ने अपने इफ्तिताही कलमात में कहा था कि ब्रिक्स ग्रुप में मजबूती में इजाफा करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है क्योंकि वबाई बीमारियों, आबो हवा से मुतल्लिक कुदरती आफात और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से इस बात का अंदाजा हुआ कि आज की बाहम मरबूत दुनिया में कोई बहरान महज एक खित्ते तक महदूद नहीं रहता। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: इस 2 रोजा सरबराह मीटिंग में मजबूती, इख्तिरा, ताउन और पायदार तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई और 50 से ज्यादा हिकमत अमली हैसियत के फैसले किए गए। सरबराह मीटिंग में बड़े आलमी और इलाकाई मामलात पर बातचीत की गई जिनमें आलमी हुक्मरानी में इसलाह, बैन अलाक्वामी तिजारत, दहशतगर्दी, अमन व सलामती, मसनूई जहानत, आबो हवा में तब्दीली, हिफ्जान सेहत और पायदार तरक्की के मौजूद शामिल हैं। रहनुमाओं ने वबाई बीमारियों के तनाजुर में तैयारी के मैदान में एक मजबूत तर ताउन और मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम के लिए पहले से खबरदारी के एक मजबूत निज़ाम की हिमायत की। मगरबी एशिया की सूरत हाल के बारे में ब्रिक्स रहनुमाओं ने ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल इख्तियार करने, मुज़ाकरात व जमहूरियत की हिमायत की और शहरियों व शहरी बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। रहनुमाओं ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की और इसके तई हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई अपने अहद का इजहार किया। उम्मीद है कि नई दिल्ली में एलामिये से इकतसादी तरक्की, टेक्नोलॉजी, हिफ्जान सेहत, आबो हवा में तब्दीली और आलमी हुक्मरानी के मैदान में ब्रिक्स के ताउन को फरोग देने का रास्ता हमवार होगा। नीज आलमी जुनूब की आवाज़ को तकवीत मिलेगी। ये सरबराह मीटिंग आलमी सियासत, मईशत और कसीर मुल्क की ताउन के तनाजुर में इंतहाई अहम रही। मगरबी एशिया में सूरत हाल और बैन अलाक्वामी अमन व सलामती से मुतालिक मामलात पर बातचीत की वजह से ये वाज़ह हो गया है कि ब्रिक्स अब मजीद महज इकतसादी ताउन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि ये आलमी सियासी तनाजुर में इसके रोल की अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। न्यूज डेस्क से अंकित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से अलग आला सतह की बहुत सी दो तरफा सरगर्मियां जान दी। पिछले 3 दिन में जनाब मोदी ने सरबराहान मुमलकत हुकूमत के साथ 15 मीटिंग्स का इनेकाद किया। इसके अलावा उन्होंने बैन अल-अक़वामी इदारों के आलमी रहनुमाओं और सरबराहान के साथ भी बहुत सी मीटिंगें कीं। ان میٹنگز سے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے، باہمی مفاد کے معاملات پر بات چیت کرنے اور علاقائی اور عالمی ترقیات پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک موقع فراہم ہوا۔ وزیر اعظم مودی نے آج قزاقستان، مصر، انڈونیشیا، فلپین، جنوبی افریقہ، برنڈی، نائجیریا اور

0: भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बनाए हैं और श्रीलंका को टारगेट दिया है 184 रनों का. नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स वंस अगेन एंड फ्री हिट 20. मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण तिकिया.
1: जी, स्टार रही स्मृति और शेफाली की वो जोड़ी जिसने 129 की एक लंबी साझेदारी रची टॉप ऑफ द ऑर्डर पर. इस ओपनिंग स्टैंड के बलबूते पर वो नींव रखी गई 183 के स्कोर की. और क्या ये स्कोर काफी होगा मिड इनिंग्स पे 2024 के फाइनल में जब भारत ने 165 बनाए थे. हम सबको लगा था काफी होगा, लेकिन फिर श्रीलंका ने उस स्कोर को भी चेज किया था. आज क्या होगा जानने के लिए, आकलन विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं. हमारे साथ हैं फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर लतिका कुमारी. लतिका, बहुत बहुत स्वागत आपका.
2: थैंक यू सो मच.
1: और साथ के साथ हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्तरा गणेशन, जिन्होंने कई दशकों से भारतीय महिला क्रिकेट की जो एवोल्यूशन है उस पर अपनी पैनी नजर रखी हुई है. उत्तरा, बहुत बहुत स्वागत आपका.
2: धन्यवाद.
1: तो सीधा प्रश्न, कोई घुमाव नहीं, कोई गुगली नहीं, सीधा सटीक प्रश्न लतिका आपसे. 183, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट?
2: देखिए, जिस तरह की बल्लेबाजी आज हुई है, मुझे लगता है कि श्रीलंकाई टीम के सामने एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया है. क्योंकि अभी तक अगर हम श्रीलंका की बल्लेबाजी की बात करें तो शुरुआत उनकी भी इतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन मिडल ऑर्डर ने कहीं ना कहीं संभाला है. बट अभी तक इतना बड़ा चेज उनकी तरफ पे भी नहीं आया. 130-135 रन का ही उनको चेज करने का मौका मिला है. बट 183 एक ऐसा स्कोर है जहां पर अगर आज भी ऊपर से बल्लेबाज नहीं चले, चमारी अटापटू नहीं चली, या उनके साथ ओपनिंग नहीं हुई अच्छी, जो हम कहते हैं कि पावर प्ले का यूज करना चाहिए, जो कि अभी तक श्रीलंकाई टीम के सामने से उसका यूज इतना नहीं हो पाया, तो बहुत चैलेंजिंग रहेगा 183. बट क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कह नहीं सकते हैं. तो जब तक ये कंप्लीट आखिरी बॉल नहीं डलती, तब तक हम यही उम्मीद रखेंगे कि भारतीय जो टीम है उसका दबदबा बना रहे, जैसे कि बल्लेबाजी में बनाया.
1: उत्तरा, वी हैव बीन टॉकिंग दैट दिस इंडियन टीम इज स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द टीम्स इन द कंपटीशन. तो वो जो अपने खुद के मानक हमने तय कर रखे हैं, उस हिसाब से अगर देखें, 130 पर शून्य थे 13 ओवर के बाद, और उसके बाद आखिरी के 5-7 ओवरों में श्रीलंका ने कमबैक किया. एक समय पर लग रहा था 200 से ऊपर यह आंकड़ा जाएगा. उसको मद्देनजर रखते हुए आप 183 को कैसे देखते हैं?
2: देखिए, बिल्कुल वैसे ही गया है जैसे अभी तक भारतीय टीम का चला है, कि बहुत कमाल का स्टार्ट और बीच में थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई मिडिल ऑर्डर, और फिर नीचे आके किसी प्लेयर ने 2-3 बड़े हिट्स लगाए ताकि थोड़ा सा स्कोर आपको बेटर होता दिख गया एंड की तरफ. उसी ट्रैक पे एक तरह से चला है. 125 रन के आसपास का ओपनिंग पार्टनरशिप गई है, तो बहुत लग रहा था उस टाइम पे कि जिस पेस पे स्कोरिंग हो रही थी, ना सिर्फ ये कि जो रन बन रहे थे बल्कि जिस रेट पे रन बन रहे थे, तो उससे लग रहा था कि काफी अच्छा जा सकता है स्कोर. और क्योंकि भारत ने 150 रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में 2 बारी, तो एक उम्मीद थी कि उसके आसपास तक जाएंगे. पर रन जरूर उसके ऊपर गए, बल्कि 183 शायद बहुत अच्छा स्कोर है, एक विनिंग टोटल हो सकता है. पर वही है कि जिस तरह का स्टार्ट था, उसके बाद जो उम्मीद थी जहां तक जाएंगे वहां तक नहीं गए. तो इस मैच के हिसाब से मुझे लगता है कि 183 जो है वो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग टोटल रहेगा श्रीलंका के लिए. पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा भारत को देखना पड़ेगा कि सिर्फ ऊपर के 2 प्लेयर्स के भरोसे वो कब तक खेलने वाले हैं.
0: बिल्कुल, और ऊपर के 2 प्लेयर्स की फिर से हम बात करते हैं लतिका. ये टूर्नामेंट शेफाली वर्मा का टूर्नामेंट है. आज फिर से हाईएस्ट स्कोर 68 रन्स, 129 रनों की पार्टनरशिप रही उनकी और स्मृति के बीच. और फिर से हमने देखा है कि ये दो ओपनर्स के जाते ही पारी लड़खड़ी

0: आने लग गई थी।
1: देखिए इस शो से पहले ये बातचीत हुई थी हम लोगों के बीच में कि स्मृति मंदाना फाइनल्स में अभी तक वो स्कोर नहीं कर पाई हैं, तो देखिए उनका जो मैंने पहले भी कहा है कि एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है और स्किल कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती जा रही है, अब बिग शॉट्स उनके बल्ले से हमें ज्यादा दिखाई देते हैं, तो आज की इनिंग में भी हमें वो दिखाई दिया। और शेफाली वर्मा की तरफ से जो बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में हुई है तो उसमें एक कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस के साथ साथ एक ठहराव दिखाई दिया है उनके बल्लेबाजी में। पहले जो एग्रेशन उनकी बल्लेबाजी में दिखता था वो एग्रेशन है, लेकिन अब गेंद को देख के उसको भाप के किस तरीके से आप एक लंबी इनिंग को यहाँ पर कर सकते हैं अपनी, वो एक जो बदलाव है शेफाली वर्मा की बल्लेबाजी में देखने को मिला कि आप शॉट सिर्फ ताकत से नहीं नजाकत से भी खेल सकते हैं।
2: जी, स्मृति और शेफाली की तो चर्चा होगी, लेकिन एक और प्लेयर है लतिका जिनके बारे में मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा जिक्र करें, क्योंकि आप उनसे बहुत प्रभावित हैं। अंत में केवल 5 गेंदें मिली, लेकिन उन 5 गेंदों में 15 रन मारे। जी कामेलिनी की शायद इस छोटी सी पारी की उतनी ज्यादा चर्चा होगी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस पर थोड़ा सा तवज्जो दें।
1: देखिए इस पारी से उन्होंने अपनी दावेदारी साबित की है कि अगर आप मुझे मौका ऊपर देते तो शायद ये थोड़े से और जो है रन इकट्ठा कर सकती थी अपनी टीम के लिए। और मैं पहले भी कह रही थी कि ये काफी अच्छी हिटिंग, क्लीन हिटिंग करती हैं और एक लेफ्टी बल्लेबाज आपकी टीम में एक शामिल हुए हैं तो नंबर 3 पर ही अगर उस टाइम पर आती, क्योंकि मेरे ख्याल से 12-13 ओवर हुए थे और 130 पे हमारी टीम थी जब हरमन आई थी, अगर उस वक्त इनको 5 से 6 ओवर या 4 ओवर मिलते तो शायद ये स्कोर और 10-15 रन या 20 रन और ऊपर होता।
0: जी बिल्कुल ऊपर हो सकता था। बात करें हम उत्तरा श्रीलंका की बॉलिंग की, तो आज फिर से हमने देखा चामुदी प्रबोदा को और हम सब बात कर रहे थे 17 साल की हैं केवल, पहले भी अपनी पारियों में प्रभावित कर चुकी हैं और आज फिर से उन्होंने शेफाली वर्मा का विकेट लेके वो ब्रेक थ्रू दिलाया श्रीलंका को।
3: बिल्कुल, और वो श्रीलंका की बॉलिंग जिस तरह की रही है थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटेड एज अ टीम जरूर रहेंगे, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग के मुकाबले उनकी बॉलिंग और फील्डिंग ने ज्यादा इंप्रेस किया है। चामुदी के अपनी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और उन्होंने वही किया जो उनका रोल था, जिस चीज के लिए उनके कप्तान ने उन पर भरोसा दिखाया था। पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो एज अ टीम थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे अपनी बॉलिंग को लेके, क्योंकि थोड़ी सी वेवर्ड थी, थोड़ी सी कंट्रोल्ड नहीं थी, आपको दिख रहा था कि वो सिर्फ रन पढ़ने की बात नहीं होती है, वो बॉलर का बॉडी लैंग्वेज भी एक होता है कि आपका अपनी गेंद पे कितना कंट्रोल है उस टाइम पे, और वो कंट्रोल थोड़ा सा मिसिंग देखा खिलाड़ियों में, खासकर कि जब हमारे ओपनिंग पेयर बैटिंग कर रहे थे शेफाली और स्मृति का, प्लस उनकी फील्डिंग और फील्ड प्लेसमेंट थोड़ा सा वियर्ड जरूर लगा, क्योंकि जनरली चमरी अतापत्तू जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ फील्ड प्लेसमेंट्स, और वो उस तरह की लेजी क्रिकेटर नहीं मानी जाती कि एक जगह खड़े हो गए तो वो वहीं खड़े रहेंगे, वो शी इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट एंड सीइंग वेयर थिंग्स कैन गेट बेटर। बाय दैट यार्डस्टिक आज उनकी फील्डिंग, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, उन सब चीजों में मुझे लगता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर उनको रहेगा।
2: जी चमरी अतापत्तू की हम बात कर रहे हैं, आपको याद दिला दे 2024 में जब श्रीलंका एशिया का चैंपियन बना था तो उस टूर्नामेंट में इनकी 3 अर्धशतक थे, वो अपने आप में एक कीर्तिमान था, और आज उस कीर्तिमान की बराबरी शेफाली वर्मा ने कर ली, इन्होंने अपना 3rd हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट का बनाया। चामरी तो इंपॉर्टेंट होने वाली है लतिका, और इसलिए भी शायद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमने देखा विश्वी गुणारत्न, उनको इंजरी हुई, स्ट्रेचर पर उनको बाहर ले जाया गया, तो शायद वो बल्लेबाजी करने के लिए अवेलेबल ना हो। वो 1 बैटर शॉट होना, इतना बड़ा टारगेट होना, फाइनल का प्रेशर होना, अगर इस वक्त आप अपने आप को चामरी की जगह देखें तो आप कैसे अप्रोच करेंगे इस इनिंग्स को?
1: देखिए ये बात जरूर है कि एक आपके प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं जो कि आपने चेंज भी किया था और उनको स्पेशली इस मैच में उतारा भी था, फाइनल का मैच, और वहाँ उनकी इंपॉर्टेंस भी दिखती है अगर आप टीम में कोई चेंज कर रहे हो और वो वही चेंज अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो जाते हैं, तो चामरे के लिए बहुत बड़ा अभी टास्क होने वाला है क्योंकि वो एक बेहतर शुरुआत जरूर करना चाहेंगी यहाँ पर अपने बल्लेबाजी से। पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला खामोश रहा है, सिर्फ एक बार ही 40 का आंकड़ा पार किया है उन्होंने, तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से बैटिंग लाइनअप यहाँ पर श्रीलंका कि कप्तान हैं जो रखना चाहेंगी, कोच हैं वो रखना चाहेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने अभी तक अलग अलग प्लेयर्स ने यहाँ पर करके दिखाया है, मैच निकाला है, लेकिन टॉप ऑर्डर दो से तीन, तीन से चार नंबर तक पावर प्ले या आठ ओवर तक वापिस पवेलियन गए हैं। तो आज ये और भी बड़ा टास्क होगा कि आपका एक प्लेयर जो मेन प्लेयर है वो इंजर्ड हो जाते
2: हैं। एंड टॉकिंग अबाउट इंडियाज पर्सपेक्टिव, उत्तरा भारतीय बॉलिंग में आप किसको देखते हैं, कौन तुरुप का इक्का साबित होने वाला है, क्या श्री चरणी पर दोबारा दारमोदार होगा या फिर आप पेसर्स की भूमिका को देखते हैं, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा का एक अहम रोल देखते हैं?
3: देखिए दीप्ति शर्मा हमारी टॉप विकेट टेकर हैं तो, और सीनियर हैं ऑब्वियसली श्री चरणी के मुकाबले, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़रूर ज़्यादा होगी और प्रेशर श्री चरणी पर ज़रूर होगा क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ दोनों से एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, लेकिन जितना टोटल सेट किया है तो बॉलर्स को थोड़ा सा लीवे ज़रूर एक्स्ट्रा मिल जाता है, आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता कि एक एक रन के लिए आपको फाइट करना हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाउंड्रीज खा सकते हैं या बहुत इजी रन्स दे सकते हैं सामने, पर जब आपकी बैटिंग आपको इतना बड़ा टारगेट एक देती है डिफेंड करने के लिए, तो थोड़ा सा आपके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रेशर हल्का सा कम होता है। मुझे लगता है श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा दोनों के ऊपर प्रेशर तो नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी जरूर रहेगी कि वो अर्ली ब्रेक थ्रूज दिला पाए ताकि टॉप ऑर्डर जैसा लद्दिया ने कहा कि वो नहीं चल पाया उस तरह से उनका श्रीलंका का, तो अगर आप ऊपर से जल्दी विकेट ले लेते हैं तो जिस तरह से उनके मिडिल ऑर्डर ने अभी तक चीज़ें संभाली हैं वो 120 से 135-145 तक का टारगेट जो है उसके लिए शायद काफ़ी रहा हो, लेकिन 184 के लिए शायद ऊपर के तीन चार जल्दी निकल गए तो वो मिडिल ऑर्डर ना संभाल पाए उस चीज़ को।
0: जी बिल्कुल, तो 184 का टारगेट सेट करके बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है और अब बारी है भारतीय बोलर्स की। इट्स इंडियन बोलर्स अगेंस्ट श्रीलंकन बैटर्स नाउ, और इसके साथ ही हम लेंगे आपसे इजाजत, हमारी कमेंट्री टीम आपसे जुड़ेगी और हम फिर से हाजिर होंगे मैच के बाद।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। भारत क्या आठवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर सकेगा? 184 रन बनाने हैं श्रीलंका को। जाहिर है एक बहुत बड़ी चुनौती है श्रीलंका के सामने। इस चुनौती से निपटना कितना मुश्किल होगा उनके लिए, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चामरी अट्टापट्टू जो कि टीम की कप्तान हैं, जिनकी बल्लेबाजी पर श्रीलंका लगातार आश्रित रही है, बहुत दारुमदार है उनके ऊपर श्रीलंका की बल्लेबाजी का, वो पिछले कुछ मैचेस में बिल्कुल भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रही हैं। एक भी बड़ा स्कोर उनके बल्ले से नहीं निकला है इस एशिया कप में, और कुल मिलाकर 64 रन बनाए उन्होंने इससे पहले चार मैचेस में। तो चामरी अट्टापट्टू का चलना बहुत जरूरी है अगर श्रीलंका को इस मुकाबले में अपनी चुनौती को मजबूती के साथ पेश करना है। 170 मैचों में 4100 रन, स्ट्राइक रेट 114 के आसपास, और जहां तक शतकों का सवाल है, चार शतक उनके बल्ले से लग चुके हैं। और उनका साथ देंगी इमेशा दुलानी, 24 मैचों में 484 रन। श्रीलंका की एक और परेशानी है कि उनका जो शुरुआती बल्लेबाजी का क्रम है वो पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल भी नहीं चल पाया है। क्रांति गौड़ पारी की शुरुआत कर रही है गेंदबाजी में, हालांकि क्रांति गौड़ को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। 4.8 की औसत से उन्होंने रन खर्च किए और इकलौता विकेट इस पूरे टूर्नामेंट में मिला है। भारत की तेज गेंदबाजी नंदिनी शर्मा और क्रांति गौड़ पर निर्भर करेगी। क्या स्पिनर्स पर दारोमदार रखेंगे या तेज गेंदबाजों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे? बढ़िया शॉट, गेंद को एकदम निकाल दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। इमेशा के बल्ले से निकला हुआ खूबसूरत स्ट्रोक, अपने आप को पोजीशन किया और सिर्फ एक दिशा दे दी। तकरीबन लेग स्टंप पर गेंद थी क्रांति गौड़ की और उसका भरपूर फायदा उठाया, पहले से कमिट हुई और हल्के से केवल गेंद को दिशा दी, मोड़ दिया अपने कलाइयों के सहारे चार रनों के लिए फाइन लेग की दिशा में। तो शुरुआत

0: श्रीलंका ने अपने खाते की। बढ़िया एक फ्लिक शॉट, लेकिन पहले से कमिटेड थी स्ट्रोक के लिए। क्रांति के इस ओवर में अगली गेंद निमेशा को, और इमोशा की पैड पर जाकर के गेंद लगी, जोरदार अपील, लेकिन जाहिर है ऐसा बिल्कुल साफ देखने में लग गया था कि गेंद की उछाल भी ज्यादा थी और गेंद लेग स्टंप से संभवतः बाहर भी निकल रही थी। 184 का लक्ष्य जब आपके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य होता है तो आप खुद ब खुद उस लक्ष्य के सामने परेशानी महसूस करते हैं। पैड पर लगी थी, लेकिन उससे पहले बल्ले का भी स्पर्श हुआ था, इसलिए वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इमेशा दुलानी नहीं चली इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, 64 रन उनके, चामरी अठाफट्टू के 63 रन है, और जाहिर है ये सलामी जोड़ी पर बहुत दारोमदार होगा। अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप पर, रक्षात्मक तरीके से इमेशा ने सिर्फ अपने बल्ले से लगने दिया। श्रीलंका ने शुरुआत की एक चौके के साथ, पहला ओवर चल रहा है। अगर भारत को कुछ शुरुआती सफलताएं मिल गई तो यह मुकाबला भारत के खाते में आसानी के साथ जा सकता है, लेकिन श्रीलंका की टीम फाइटर है। आपको याद होगा सेमीफाइनल पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट देखते देखते निकल गए थे, और इस बार साफ विकेट गिर गए। क्रांति गौड़ को मिल गया पहला विकेट। इमेशा ने जिस तरह का स्ट्रोक पहली गेंद पर खेला था वही स्ट्रोक खेलने की कोशिश, विकेट्स पूरी तरह से छोड़ दिए उन्होंने और हट करके गेंद को लेग स्टंप के बाहर निकालना चाहती थी, फ्लिक करना चाहती थी, पूरी तरह से चूक गई और गेंद उनके संभवतः बल्ले से लगती हुई उनकी गिल्लियां बिखर गईं और पहला विकेट भारत को मिल गया। तो श्रीलंका पर अब दोहरा दबाव बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। पहला विकेट इमेशा दुलानी के रूप में, सिर्फ 4 रन बनाए उन्होंने, क्रांति गौड़ ने उन्हें बोल्ड किया और क्रांति गौड़ ने फाइनल में अपना पहला विकेट निकाल लिया। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, पहली गेंद पर चौका खाया उन्होंने और लगभग वही कोशिश उनकी इस गेंद पर भी थी, और क्रांति गौड़ की इस गेंद पर पूरी तरह से अपने स्टंप्स को छोड़ दिया उन्होंने। ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलना चाहती थी, फाइन लेग की दिशा में गेंद निकालना चाहती थी, लेकिन गेंद और बल्ले का जो संपर्क है वो नहीं हुआ और गेंद सीधे जाकर के स्टंप पर लग गई। तो दबाव, प्रेशर अब श्रीलंका पर, और इस तरह का प्रेशर आप समझ सकते हैं, जब बड़ा स्कोर होता है तो फिर ये प्रेशर अपनी जगह पर बिल्कुल दिखाई देता है। संजना काविंदी आज नहीं है टीम के अंदर और उनकी जगह विश्मी गुणरत्ने को शामिल किया गया है। विश्मी गुणरत्ने, आपको याद होगा फील्डिंग करते समय उनका पैर अचानक से मोच खा गया था और इस वजह से उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर के बाहर निकाला गया था, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करने के लिए वापस आ गई हैं। ऑफ स्टंप पर टप्पा दिया क्रांति गौड़ ने, गुड लेंथ गेंद थी, थोड़ा सा अंदर की ओर लेकर के आई और इसको विश्मी गुणरत्ने ने रक्षात्मक तरीके से खेला। पूरे स्टंप्स दिखा दिए थे क्रांति गौड़ को इससे पहले इमेशा दुलानी ने, और उसका भरपूर लाभ मिला। पहला विकेट श्रीलंका ने गंवा दिया और भारत निश्चित तौर पर अब कमांडिंग पोजीशन में है। विश्मी और चामरी अठाफट्टू, विश्मी गुणरत्ने को मौका मिला है। श्रीलंका ने अपने कुल मिलाकर 15 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है 17 में से, और इस बार एक मिसफील्ड, जहां रन की गुंजाइश नहीं थी वहां पर रन बना। पीछे से शेफाली वर्मा ने कवर अप करते हुए इस गेंद को फील किया, लेकिन 2 रन मिल गए, यहां पर रन नहीं मिलने चाहिए थे। ओवर की समाप्ति हुई, पहला ओवर समाप्त हुआ और श्रीलंका का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 184 रन बनाने श्रीलंका को इस मैच को जीतने के लिए। क्रांति गौड़ का पहला ओवर, 6 रन दिए, 1 विकेट लिया, और अब देखना है कि 178 रन का फासला और तय करना है। विश्मी गुणरत्ने को मौका मिला है, इससे पहले भी वो इस टूर्नामेंट में 1-2 मैचेस खेली हैं। आज देखना है कि किस तरह की बल्लेबाजी करती हैं विश्मी गुणरत्ने। चोट लगी थी उन्हें और उस स्ट्रेचर पर जाने के बाद श्रीलंका के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने वापस लौट के आई हैं। नंदिनी शर्मा गेंदबाजी के लिए, एक बेहतर गेंदबाज। गेंदबाज, भारत की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा पर बहुत कुछ दारोमदार है। 7 विकेट निकाले इससे पहले। नंदिनी शर्मा ने 4.36 का उनकी इकोनॉमी है। और दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगी नंदिनी। क्रांति गौड़ को पहले ओवर में सफलता मिली। चामरी एटापट्टू बाएं हाथ की बल्लेबाज ऑफ स्टंप पर स्टीयर करना चाहती थी लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट के साथ नहीं। और यहां पर पहली गेंद पर नंदिनी की जो कि ऑफ स्टंप के बाहर थी कट करना चाहती थी लेकिन बाएं का इशारा, क्योंकि इतना गेंद अंदर की ओर आई कि विकेट कीपर भी उसे तरीके से अपने दस्ताने में नहीं ले पाई। ऋचा घोष, उनके दस्ताने के निचले हिस्से में लगती हुई गेंद गिर गई। 1 रन 22 के तौर पर, यानी कि अतिरिक्त 2 रन कुछ समय पहले मिसफील्ड के तौर पर भारत ने दिए पिछले मैच में। आपको याद होगा भारत ने 4 कैचेस ड्रॉप किए थे। तो अगर आपको कोई मुकाबला जीतना है, खिताब अपने नाम करना है, तो सिर्फ बल्ला चलाने से काम नहीं होगा, आपको फील्ड के अंदर भी वही चुस्ती फुर्ती और मुस्तैदी दिखानी होगी। एक बार फिर गार्ड ले रही हैं, अपने आप को तैयार कर रही हैं नंदिनी की गेंदों के सामने। बढ़िया गेंद की है नंदिनी ने इस टूर्नामेंट में। विकेट उन्हें 7 मिले हैं क्रांति गौड़ की तुलना में। एक स्लिप मौजूद है और लहराती हुई गेंद हवा में थोड़ा सा लहराती हुई लेकिन गेंद चली गई 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी हल्की स्विंग होती हुई गेंद और उसको केवल एक दिशा देने का प्रयास था विश्मी का। इस चौके के साथ विश्मी पहुंच गई अब 6 पर। और हमारे साथ ही मुनीश जौली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम मुनीश।
1: थैंक यू सो मच दादा। एंड इंडिया हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे डिड गेट अ विकेट बट देन श्रीलंका विल नॉट बी प्लेइंग एस अ डेट नाउ, दे विल बी गोइंग आफ्टर द इंडियन बोलर्स एट द मोमेंट। 11 ऑन द बोर्ड इन द सेकंड ओवर। विश्मी ऑफ कोर्स स्कोरिंग दैट बाउंड्री व्हिच हैपेंस टू बी द फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द श्रीलंकन इनिंग्स। Right arm over the wicket comes in Nandini, short of length delivery, just flicking the ball down to the deep square leg area. Of course, there was a long chase as well for Deepthi. And a single picked up then in the end. The score moves on to 12, the loss of 1 wicket.
0: Vishmi, 4 gendon par ab tak 7 run bana chuki hai aur Attapattu ko khata khola hai. Attapattu nahi chal saki. Ye ek pareshani ka sabab hai Sri Lanka ke liye. इमेशा दुलानी पूरे टूर्नामेंट में अच्छा नॉक नहीं खेल पाई। कुल मिलाकर 67 रन हैं उनके इमेशा के पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप में 5 मैचेस में 67 रन। आप पारी की शुरुआत कर रहे हैं और अगर इतना कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतना कम योगदान दे रहे हैं टीम को, तो टीम की परेशानी स्वाभाविक है। ऑफ स्टंप के बाहर करारा शॉट लेकिन गैप्स नहीं तलाश पाई। सीधे गेंद वहां पर क्रांति गौड़ के पास गई। अच्छी फील्डिंग, चुस्त फुर्त क्रांति गौड़। अगले ओवर के बारे में सोच रही होंगी कि किस तरह की गेंदें रखी जाएं ताकि विश्मी या चामरी अटापट्टू का विकेट निकल जाए। एक और विकेट भारत को बेहद मजबूती के साथ खड़ा कर देगा 8वें खिताब की दिशा में। कुल मिलाकर 4 गेंदें इस ओवर की हो गई है नंदिनी की। हरमनप्रीत इस समय नंदिनी को कुछ समझाइश दे रही है, बता रही कि आपको किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए। तजुर्बा, अनुभव, एक कप्तान के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर एक मिसाल है वो निरंतरता की, जिस तरह से भारतीय टीम के साथ जुड़ी हैं, लगातार चल रही हैं, क्या शानदार कप्तानी कर रही हैं। भारत को उन्होंने एक अलग ही लेवल तक पहुंचाया है। और इस बार गुड लेंथ गेंद और हल्का सा केवल स्ट्रोक अटापट्टू का। अटापट्टू के बल्ले से अब तक रन नहीं निकला है और ये अटापट्टू की स्वाभाविक शैली कतई नहीं है। वो जिस तरह से खेलती हैं, जिस आक्रामक अंदाज के खेलती हैं, वो सचमुच बहुत शानदार होता है। लेकिन आपको वक्त के हिसाब से, टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना होता है और जरूरत यही है कि आप अपना विकेट सलामत रखें। आखिरी गेंद इस ओवर की और इस बार मिडिल स्टंप पर अच्छी फील्डिंग क्रांति गौड़ की। एक बार फिर दूसरा ओवर समाप्त। श्रीलंका का स्कोर 2 ओवर के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 184 का टारगेट सेट किया है भारत ने और सिर्फ 12 रन बने हैं पहले 2 ओवर में, यानी कि

0: ऊपर से, हवा में बहुत ऊपर नहीं थी गेंद, लेकिन लंबाई में बहुत सॉलिड स्ट्रोक सीधे छह रनों के लिए.
1: And I think that's a gamble that the captain Harmanpreet Kaur is playing, because Shefali tends to bowl slow and she's just trying to bind that wicket, and probably that's the ploy and that's the intention why they've got Shefali Verma with the bowling. And she's bowled with the new ball in the previous occasions also.
2: Harmanpreet har gendbaz ke paas jaati hain, unhein samjhati hain कि आपको किस तरह की गेंदें करनी चाहिए, बतलाती हैं उनका अनुभव, उनका तजुर्बा सब कुछ बोलता है मैदान के अंदर. बहुत ही खूबसूरती के साथ टीम का संचालन, और इस बार पहले निकल आई, आगे निकल आई, गेंद का जैसे ही टप्पा पड़ा कदमों का इस्तेमाल किया दो तीन स्टेप लेने के बाद, लेकिन ऐन वक्त पर अपने स्ट्रोक को चेक किया. शायद आगे निकली थी स्ट्रोक के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर अपने स्ट्रोक को चेक करते हुए केवल बल्ले से लगने दिया. और इस बार अच्छा खासा टर्न, काफी टर्न मिल रहा है यहां पर शेफाली वर्मा को. एक गेंदबाज के तौर पर, एक ऑलराउंडर के तौर पर पिछले कुछ समय में शेफाली ने अपने आप को स्थापित कर लिया है, और एक यूटिलिटी प्लेयर हैं. जरूरत पड़ने पर काफी आक्रामक हो जाती हैं, काफी बड़े स्ट्रोक्स खेलती हैं, और गेंदों से भी लगातार एक बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करती हैं. और फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली, शेफाली ने थोड़ा सा ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट को तब्दील किया, हरमनप्रीत से डिस्कस किया, और अब तैयार हैं विश्मी गुणरत्ने. मौका मिला है विश्मी को आज इस फाइनल मुकाबले में, और उन्हें मौका मिला है संजना काविंदी की जगह पर, जो कि इससे पहले चार मैचों में सिर्फ 29 रन जोड़ सकी थी. पहले कदम निकाले थे, कदम बाहर किए थे विश्मी ने, लेकिन ऐन वक्त पर गेंद को हल्के से केवल बल्ले से थपथपाया. जिस लेंथ पर गेंद गिर रही है वो बैटर को अट्रैक्ट कर रही है कि आप कदमों का इस्तेमाल करें और सामने आकर के बड़ा स्ट्रोक लगाएं, लेकिन वो साहस, वो जोखिम लेने का साहस फिलहाल श्रीलंकाई बैटर्स नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें पता है कि एक विकेट चला गया, इस बार ज्यादा फ्लाइट दिया, हवा में थी गेंद, एक टप्पा खाते हुए सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई चार रनों के लिए. अटपट्टू के बल्ले से निकला चौका, और श्रीलंका का स्कोर अब पांच ओवर के बाद बढ़ता हुआ 33-1. श्रीलंका के सपोर्टर्स भी अच्छे खासे मौजूद हैं दुबई में. एक चौका लगता है, एक छक्का लगता है, उम्मीद की एक नई किरण जागती है. ऐसा लगता है कि कहीं श्रीलंका ये संभव कर सकता है क्या. क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उस असंभव को संभव बनाने के लिए आपको बहुत कुछ दांव पर लगाना होता है, और ऐसा लगता नहीं है कि अभी श्रीलंका उस स्थिति में है. लेकिन हां, फील्डिंग आज, खासतौर पर ग्राउंड फील्डिंग, भारत की अब तक पांच ओवर्स में बेहतर दिखाई दी. क्रांति गौड़ की तारीफ है, उन्होंने कई बार अच्छे स्ट्रोक्स रोके, और अब तक कोई कैच ड्रॉप नहीं हुआ. पिछले मैच में चार कैच ड्रॉप हुए थे, और वो एक परेशानी की वजह थी भारत के लिए. तो पांच ओवर यहां पर पूरे हो चुके हैं, और पांच ओवर के बाद 33 एक विकेट के नुकसान पर.
1: So 15 more overs to go, but then Sri Lanka slowly and steadily building up the innings, Dada, and that's an area of concern. So Nandini Sharma will continue bowling from the other end. This is the last over of the power play.
2: बिल्कुल, थोड़ा सा प्रयास जरूर दिखाई दे रहा है भारतीय फूलमाली, जिन्हें बल्लेबाजी के लिए आखिर में मौका जरूर मिला, बहुत ज्यादा इस्तेमाल उनका नहीं हो पाता, बल्ले से भी नहीं, गेंद से भी नहीं. और उसकी वजह है इंडिया की जो बैटिंग है वो ऊपर के स्तर पर, यानी कि टॉप बैटिंग जो है इंडिया की वो बहुत सॉलिड है, और इसलिए निचले क्रम के बल्लेबाजों को बहुत मौका नहीं मिलता. नंदिनी की ये गेंद ऑफ स्टंप पर, और इसे कट करना किया उन्होंने खूबसूरती के साथ, शेफाली मौजूद थी, और यहां मौका जरूर मिला रन लेने का. दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके दो रन पूरे किए. श्रीलंका की जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है और भारत की जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. अगर आप श्रीलंका को देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 33 रन पर चार विकेट गंवाए सेमीफाइनल में, बांग्लादेश के खिलाफ 44 रन पर पांच विकेट गंवाए, इंडोनेशिया के खिलाफ 45 रन पर पांच विकेट गंवाए,
0: तो शुरुआती विकेट्स जल्दी गिर जाने से वो एक बड़ा टोटल नहीं बना पाते। और क्या फील्डिंग की यहां पर, कमाल की फील्डिंग, कोई मौका नहीं दिया वहां पर। प्रेमा रावत मौजूद थी, उन्होंने अच्छा फील किया, बहुत करारा स्ट्रोक था, बाउंड्री मिलनी चाहिए थी अगर जरा भी दाएं बाएं होता। अच्छा कट था, बहुत शानदार, थोड़ा सा हल्का सा हाथ से लग करके मिसफील्ड हुआ, लेकिन उस गेंद की जो गति थी, उस जो स्ट्रोक की गति थी, वो बहुत हद तक धीमी करती। तो श्रीलंका तीन मैचेस में उनके बल्लेबाज, उनके बैटर्स 40-45 रन बनाकर कम से कम 5 विकेट गिर गए उनके। तो ऐसी स्थिति में आज थोड़ा खड़ा संभल करके खेलने की कोशिश, गुडलैंड गेंद मिडिल स्टंप पर रक्षात्मक तरीके से खेला और दौड़ते हुए इत्मीनान के साथ एक रन पूरा किया। बूंद बूंद से सागर भरने की कवायद है, एक एक रन ले रहे हैं, लेकिन ये सागर नहीं महासागर है जहां आपको 184 रन का लक्ष्य मिला है, वहां एक एक रन के साथ आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते।
1: Absolutely, and I think this should be remembered by Sri Lanka, that you just have to remain in the game somehow or the other. Athappatthu gets a delivery and hits the ball high over the long, in fact the mid off fielder, which is the Indian captain Harmanpreet Kaur. The ball goes over her but not racing down to the boundary, so before the ball touches the ropes, it's been cut off by Harmanpreet Kaur, and two more runs have been collected by her. So Athappatthu moves on to 21 of 20, Sri Lanka 38 for 1.
0: आखिरी गेंद पावर प्ले की, और पावर प्ले में मुनीश इस तरह के स्ट्रोक्स खेले जा सकते हैं।
1: Why not? I think they have no other choice but to take chances in power play if they have to reach to the target of 184.
0: आखिरी गेंद इस ओवर की, और एक बार फिर करारा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद और मुस्तैद फील्डर स्मृति मांधना, बढ़िया गेंद उन्होंने रोकी। 6 ओवर पूरे, यानी कि पावर प्ले समाप्त। पावर प्ले में श्रीलंका का स्कोर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भारत ने पावर प्ले में अपेक्षाकृत बेहतर बल्लेबाजी की थी।
1: And I think you're mentioning about the 57 runs that India scored in the power play, and that was of course a great start by India, getting on to 57, and then after the 10 overs they were hovering around the 100 run mark, 98 without loss or the score for India after 10 overs. So they were very close to the 10 run and over mark. So end of the power play as signaled there by the umpires. India will of course breathe a sigh of relief. Any team would if you fail to collect a couple of wickets in the power play. But India with all their experiments bring in Sri Charni, the left-arm spinner. 30 matches, 50 wickets, and what a performer she has been. And of course, this reminds me of that heroic effort by the Indian team winning the 50-over format. Sri Charni played a very, very important role. And at the moment, she has to play an important role here as well at the Dubai International Cricket Stadium. India, of course, setting a target of 184 for Sri Lanka. 38 for 1 is the score after 6 overs now. Sri Charni getting ready to bowl her first over. Vishmi Gunaratne on strike. And simultaneously, there's some interesting facts. And of course, the stats of the past that we'll bring in. Sri Charni comes in, flighted delivery, onto the front foot, played it back to the bowler. Now, statistician Ajay Goel reminds us about the final between India and Pakistan way back in 2012, which was played at Guangzhou, China. And that was the Asia Cup final. And it was a low-scoring game. We'll talk about that as we witness the delivery by Sri Charni that's been swept reversely by Vishmi Gunaratne to such a perfection that the fielder at the short third man was beaten, and the ball races down to the boundary for another four for Vishmi Gunaratne. Not too sure whether there was something wrong with the Sri Charni's delivery, but these are the kind of moments where slowly and steadily, if you fail to pick up wickets on regular intervals, I think that's a threat to any fielding side. India at the moment, not that they are under threat for that matter. 42 for 1. Vishmi Gunaratne on 16 with that boundary of 13 deliveries. A partnership of 38 runs in 34 balls. Sri Charni, left arm coming diagonally. That means between the stumps and the standing umpire. and then bowls a delivery, gets a bit of turn on the off stump, and the ball pitching and moving away, a short of length delivery outside the off stump. Good collection there by Richa Ghosh, the wicket keeper. Sri Charney for the fourth time in this over. Left arm diagonal, flight to delivery, and that's played uppishly. It was a chance dropped by Sri Charney in the follow through. Harmanpreet Kaur knew how close it was. It was hit hard, agreed. But the bowlers do practice catching the ball on their follow through, and Sri Charney, the flight to delivery. And just a one hand attempt on the left side. And this will be, of course, going down as far as the records are concerned for this match, a dropped opportunity by the Indians. Sri Charney just speaking to Harmanpreet Kaur, the 37-year-old captain of India. He's just speaking about the low-scoring game that India won way back in 2012. There was a T20 Asia Cup final led by, Mithali Raj, where she was injured in the final. And Harmanpreet Kaur served as a stand-in captain then. And it was such a low-scoring game that India scored 81. And then they bowled out Pakistan for 63 in 19.1 overs. And in that game, Poonam Raut was the player of the match because she was the highest scorer in that low-scoring game. She scored 25. Thanks for those lovely stats. Our statistician, Ajay Goel from Sri Lanka. Back to the game at the Dubai International Cricket Stadium. Sri Charney bowling this over number 7, 43 for 1 at the moment. Sri Lanka, Atapattu on strike. Oh, that's a delivery that came the other way, pitched onto the off stump of the left-handed Atapattu. She expected the ball to come in, but the ball moved away, and then that was a thickish edge. There was no slip, good for her. Not that the ball raised down to the boundary, but a single picked up, and that comes to the end of the over number 7. 44 for 1, and the best thing that Sri Lanka are doing at the moment are they keeping their wickets intact. So no chance of rain, Sanjay Banerjee, da, but then we also get a stat of the DLS, which says that at the moment, if there was an interruption due to any inclement weather, Sri Lanka should have been around 54 runs, but they are 44 for 1. The weather forecast clearly says that Dubai is experiencing a pleasant weather. There's a pleasant breeze that is moving across the Dubai International Stadium. And I'm sure the players are enjoying that. Big moment for India. It's a Super Sunday. India and Afghanistan are playing a game in Delhi's Arun Jaitley Stadium. And that is hosted by Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi. Simultaneously, this game, a big game, the Sri Lanka-India. The Women's T20 final is going on in Dubai. 44 for 1 after 7 overs. Atapattu on strike. For the first time, the highest wicket taker of this edition, Deepti Sharma, comes in. And of course, she was the highest wicket taker, overtaken by Atapattu. But speaking about Deepti Sharma, what experience she has, and she understands the dimension of the wicket, slows down her pace of flight to delivery, dot delivery, played towards the point. She comes in and bowls another delivery wide to Atapattu, who slashes her bat to that wide delivery to the deep cover fielder, which is Kranti Gaur. So single picked up with that shot as well. And the score now moves on to 45 for the loss of one wicket. Speaking about Atapattu, she was lucky that she finished her spell conceding just 34 runs in 4 overs, because her first overs were so expensive that went beyond 10 and over. She picked up one wicket. So Deepti has to pick up one wicket first to level the 12 wicket mark, so that she becomes the top wicket-taking bowler, along with Chamari Atapattu. At the moment, she's getting ready to bowl to Vishmi Gunaratne, batting on 17, the right-handed batsman. Just looking around the field, flighted delivery, slower delivery, pitched on to the leg stump. She shuffled a bit towards the off stump. Just looking at the umpire, wide not given. And Deepti has that art, Sanjay, that she knows how to bowl that slow one. And along with that speed, she tends to bowl the right line. pitching at the right area, right arm over the wicket, flighted delivery once again onto the off stump, flicking ball to the short mid-wicket fielder, which is the Indian captain, dives onto the right, and then gets onto her knees and throws the ball back to the wicketkeeper, Richa Ghosh, with a powerful throw. Four deliveries gone. One run scored. Over number 8. 45-1 Sri Lanka. Vishmi Gunaratne steps out to Deepthi Sharma. And all that she can do is flick the ball towards the deep square leg fielder, which is Smriti Mandhana. Picks up the ball wearing the number 18 t-shirt. And sends the ball into the gloves of Richa Ghosh. So it has all happened here. If you've just tuned in, let me remind you that you listen to the live commentary on Akashwani of this game between India and Sri Lanka being played at the Dubai International Stadium. The finals of the T20 Asia Cup. India winning the toss, electing to bat. And of course, Harmanpreet Kaur never believed that India will go on to one of these, the bright starts of this game. 129 run start by Shefali Verma and Smriti Mandhana. We'll talk about that as the next over begins. And of course, before the start, Sri Lanka have just managed to crawl to 50 runs in 8 overs. India got on to their 50 runs in 5 overs. So they have a massive, massive target of reaching to 184 in 20 overs. They've got 12 more overs, and the asking rate at the moment is 11.2. All these details given to us by our scorer, who's sitting on my right, Ranjit Singh Rawat. Our statistician is Ajay Goyal. My name is Manish Jolly, and with me is Sanjay Banerjee, our Hindi commentator. Dada, there's a little delay that we see, and of course the umpire is having a word with the players. There's some moisture on the ground as well, which has been wiped by the towels. Looking at the comparisons, if we look at where India were after 8 overs, they were on 78. Sri Lanka at the moment are 50, so a deficit of 28 runs. So bowling change from the Indian captain. This is Prema Rawat. 6 T20 internationals, 6 wickets. And is getting to, just looking around the field and getting ready to bowl her first delivery. The leg spinner comes in. And she bowls on the right spot on the middle stump. Just flicking the ball towards the deep square leg area for a single is Vishmi Gunaratne. So 8.1 overs, 51-1. Sanjay Banerjee is getting ready for his Hindi spell of commentary. But Dada, this is a very intelligent start by Sri Lanka, because if they can manage to hold on to the wickets, you never know what can turn around. Maybe a long partnership. Maybe those hits in the closing overs. Everything at stake at the moment.
2: बिल्कुल मुनीश, श्रीलंका की कोशिश वही है कि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक विकेट पर टिकें, लेकिन रन्स भी बनाते रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिर के ओवर्स में बहुत ज्यादा आक्रामक होना आसान होगा नहीं. अब दोनों टीमों का जहां तक सवाल है, भारत और श्रीलंका का, दोनों स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा इस टूर्नामेंट के दौरान स्पिनर्स के साथ खेलते हुए दिखाई दिए. भारत ने सबसे ज्यादा 26 और उसके बाद श्रीलंका ने 25 विकेट उनके स्पिनर्स ने लिए थे. तो प्रेमा रावत, इसके अलावा दीप्ति शर्मा, श्रीचरणी, ये तीनों स्पिनर्स लगातार जो सामने वाली टीमें हैं, विपक्षी टीमें हैं, उनके खिलाफ अपना प्रदर्शन शानदार करती रहीं. दो डॉट बॉल, सिर्फ इकलौता रन प्रेमा रावत के इस ओवर में अब तक बना है. और चामरी अटापट्टू अब तैयार हैं स्ट्राइक लेने के लिए, 26 रन 28 गेंदों पर. प्रेमा रावत की ये गेंद, और इस बार ज्यादा फ्लाइट कराने की कोशिश, गेंद हवा में और ये सीधे बाहर स्टेडियम के मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकाल दिया चामरी अटापट्टू ने. एक और छक्का, और इस छक्के के साथ श्रीलंका ने अपने 50 रन तो पहले ही पूरे कर लिए थे. पार्टनरशिप जो है वो दोनों की मिला करके अब 53 रन की हो गई है. श्रीलंका 57 पर पहुंच गया है एक विकेट के नुकसान पर. अच्छी साझेदारी, पहला विकेट जल्दी गंवाने के बाद चामरी अटापट्टू ने विश्मी गुणरत्ने के साथ यहां पर एक अच्छी साझेदारी निभाई है. और कहीं ना कहीं मन के अंदर ये जरूर है कि अगर विकेट सुरक्षित हैं तो रन निकल सकते हैं, प्रयास किया जा सकता है. और एक बार फिर नीचे रहती हुई गेंद, अंदर आती हुई गेंद, और एक और चौका.
0: डाइव जरूर किया था बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को पकड़ने के लिए क्रांति गौड़ ने, जो कि खुद बहुत अच्छी फील्डर हैं, लेकिन इस बार गेंद उनकी पहुंच से बाहर। तो एक और चौका, श्रीलंका पहुंच गए 61 पर एक विकेट के नुकसान के साथ।
1: प्रेमा रावत थोड़ी सी खर्चीली साबित हो रही है जिस तरह से ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलती हैं अटापट्टू, और आप अगर ऑफ स्टंप पर गेंद को डाल करके मिडल और लेग की तरफ निकालेंगे तो उन्हें सिर्फ एक दिशा देने की जरूरत होगी और वही कर रही हैं। पिछली दोनों गेंदों में वही हश्र हुआ। हरमनप्रीत पहुंची प्रेमा रावत के पास, बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है प्रेमा का 6 मैचेस खेले इससे पहले। हरमनप्रीत ने उन्हें समझाया कि आपको बेहतर लेंथ और लाइन के साथ बॉलिंग करना चाहिए इस समय, और जब आप आक्रामक बल्लेबाज के सामने खड़े हों तो कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता के साथ गेंदबाजी करके विकेट निकाल सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, बिल्कुल सही किया। पिछली दो गेंदों पर बड़े स्ट्रोक लगे थे, 9 ओवर पूरे हुए यहां पर और श्रीलंका का स्कोर 61 रन एक विकेट के नुकसान पर।
3: टेल यू व्हाट, चमरिया अत्तापट्टू इज अ डेंजरस प्लेयर बिकॉज शी इज प्लानिंग हर इनिंग्स। शी चोज, शी न्यू दैट द इनएक्सपीरियंस बोलर्स आर गोइंग टू कम इन एंड शी माइट एज वेल वेट एंड नॉट अटैक क्रांति गौर फॉर दैट मैटर श्री चारनी, बट देन शी चोज प्रेमा रावत फॉर दैट ह्यूज सिक्स व्हिच वेंट डीप इनटू द गैलरीज and a boundary to top it up. So 11 runs conceded by Prema Rawat in a very first over, 61 for 1 after 9. I'm not too sure whether the required 123 runs in 66 balls is easily chaseable, but if Sri Lanka have to chase, they need somebody like Chamri Attapattu in the middle.
1: Bilkul Munish, agar aapko Bharat ke target ko हासिल करना है तो एक्सेलरेटर पर पैर अभी रखना होगा, क्योंकि बहुत समय निकल चुका है। 9 ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं और जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 9.2 से बढ़कर 11.2 हो गया है। आखिर के 3-4 ओवर में 11 का रेट चलता है, लेकिन उससे पहले मुश्किलें पैदा करेगा। और यहां पर विकेट कीपर के ऊपर से गेंद निकल गई, वो भी बहुत सफाई के साथ इस गेंद को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाई, तो अतिरिक्त रन यहां पर मिले। उछाल था इस गेंद में टप्पा खाने के बाद, बल्ले से लगती हुई गेंद और रिचा के ऊपर से गेंद निकल गई, हाथ से लगी थी बल्कि क्लब्स के दस्तानों के नजदीक से, तो एक आप कह सकते हैं मौका भी था, लेकिन रिचा काफी आगे निकल गई थी उस गेंद पर और इसलिए चूक गई। और यहां पर गिल्लियां भी बिखेर दी। पिछली गेंद में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दी, लेकिन इस बार उन्होंने मामले को बराबर कर दिया। दीप्ति को मिल गया विकेट, श्रीलंका ने गवा दिया दूसरा विकेट, और न सिर्फ दूसरा विकेट बल्कि बहुत बड़ा विकेट चामरी अट्टापट्टू के तौर पर। डिसीजन पेंडिंग है, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत के फेवर में यह डिसीजन आना चाहिए। 10वां ओवर चलता हुआ, चामरी अट्टापट्टू क्या विकेट पर रहेंगी या बाहर जाएंगी, एक बार फिर देखना होगा। बिल्कुल सही गेंद, वैलिड गेंद दीप्ति शर्मा की, और यहां पर काफी आगे निकल गई थी चामरी अट्टापट्टू, और इतना आगे निकल गई थी कि लौटने की गुंजाइश ही नहीं थी। गिल्लियां बिखेर दी रिचा ने और दूसरा विकेट गवा दिया श्रीलंका ने। डिसीजन अब भी पेंडिंग है, लेकिन आना वो भारत के हक में है। और एक बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट चामरी अट्टापट्टू का, यानी कि अब दबाव पूरी तरह से श्रीलंका पर। चामरी अट्टापट्टू एक बार फिर अच्छी शुरुआत के बाद कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाई, 36 रन उन्होंने बनाए और कुल मिलाकर इस पूरे टूर्नामेंट में 5 मैचों के दौरान कुल 99 रन का स्कोर बनाया चामरी अट्टापट्टू ने। टीम की कप्तान, श्रीलंका की बल्लेबाजी जिनके इर्द गिर्द घूमती है, श्रीलंका की बल्लेबाजी का सारा दारोमदार जिनके ऊपर है, वही चामरी अट्टापट्टू पूरे टूर्नामेंट में कोई बहुत बड़ा नॉक नहीं खेल पाई। फाइनल में जरूर अच्छा प्रयास किया, लेकिन उनका जाना मुनीश श्रीलंका के लिए परेशानियों का सबब होगा।
3: Yeah, absolutely, and she was of course one of the most experienced players of Sri Lanka, 36 years of age, and it's not the age, but a true warrior she is. She's one of the trailblazers for the Sri Lankan side, and of course got a captaincy way back in 2014. She's the former best batter in women's cricket.
1: at the Sri Lanka Cricket Awards. And under her captaincy, Sri Lanka registered the first T20 series win over South Africa in England, which was huge. And of course, a maiden ODI series win against New Zealand. So, a lot of records with Athapattu. And way back in 2011, she got her first ODI 100 also. She's got three T20 hundreds to her name, Sanjeda. And that's the reason she is one of the most experienced players and one of the most dangerous players. And look who took her wicket, Deepti Sharma. Now levels her with 12 wickets in this format, in this tournament. And one more wicket will take Deepti Sharma and make her as the highest wicket taker in the tournament. Of course, we are into the 10th over, and as the wicket has fallen, there is a short drinks interval which is taking place at Dubai International Stadium. And to win, 122 runs are more required by Sri Lanka. But I just wonder, when you see the most experienced batter depart back to the pavilion, how much damage can that do to the momentum and also the morale of the other players sitting in the dugout. India were 98 without loss after 10 overs when the drinks interval were held right there in the middle. And this is a small breather. And I think that the wait will be pretty long for the Sri Lankan batters, and that's not going to help their rhythm.
2: बड़ा विकेट श्रीलंका ने गंवा दिया और सच कहें तो पूरा दारोमदार भारतीय बल्लेबाजी पर रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान खासतौर पर स्मृति मानधना और शेफाली वर्मा हर्षिता आई हैं नई बैटर के तौर पर हर्षिता समर विक्रमा दो मैचेस में हर्षिता ने ही अपनी टीम को जीत दिलाई अच्छा फाइट बैक किया पाकिस्तान के खिलाफ भी और अब देखना है कि आज कितना फाइट बैक कर पाती हैं क्योंकि रनों का जो रिक्वायर्ड रेट है वो अब 12 की दहलीज पर पहुंचता हुआ ऑफ स्टंप से बाहर और इस बार गैप्स का इस्तेमाल एक रन पूरा किया दौड़ करके जब तक गेंद क्रांति फील करती और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ श्रीलंका का 63 रन दो विकेट के नुकसान पर दुबई में अच्छी खासी गर्मी है खासतौर पर दिन में लेकिन अब इस समय थोड़ा बेहतर तापमान 10वें ओवर की आखिरी गेंद आनी है यानी कि आधा सफर तय कर चुके हैं श्रीलंकाई बैटर्स मोड़ना चाहती थी गेंद को और गेंद सीधे विकेट के अंदर मिस किया स्वीप शॉट खेलना चाहती थी अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाई विश्मी और अब विश्मी भी चलती बनी 22 गेंदों पर 20 रन बनाए श्रीलंका ने अपना तीसरा विकेट गंवाया और ये सेलिब्रेशन का मौका टीम इंडिया के लिए मुनीश
1: व्हाट अ ग्रिप इन दैट बॉल शी हेल्ड द बॉल बाय द सीम द वे द फास्ट बॉलर इज होल्ड एंड शी इज जस्ट मैनेज टू गेट दैट फ्लोटर एंड अनदर सेट बैटर दैट्स विश्मी गुणरत्ने डिपार्टिंग बैक टू द पवेलियन ऑफ कोर्स विश्मी गुणरत्ने अलोंग विद चमरी अथापत्तु sent back to the pavilion in the very same over by Deepti Sharma. So two overs, two wickets and eight runs conceded. And those two wickets take Deepti Sharma now on the top of the charts as far as the wicket takers are concerned. And what a way to come back, Deepti Sharma. Any captain would want to rely on her. And that's exactly what Harmanpreet Kaur has done when the going was looking a little tougher with Chamari Athapattu scoring. Of the inexperienced bowlers, the partnership was building. Deepti Sharma comes in and picks up that wicket of Chamari Athapattu and also Vishmi Gunaratne. So India back into the game, 63 for 3. And after the end of the 10th over, this is where Sri Lanka stand. Mind you, they have a target of 184 to achieve if they have to win this game. But 183 for 5, India, a solid start. We were a little disappointed that India could have reached 200, but then there were a lot of thinkers, the cricket thinkers, who said that though India went on to a flying start with 129 on the board for the opening wicket, Shefali Verma scoring 68, Smriti Mandhana getting a 50, she got 59 of 39. Some felt that no wonder what the others think, but it was a great start and India were on a very competitive score of 183 and they set a target of 184. Shefali Verma comes back into the attack and, of course, bowling those slow off-spinners. And she is the one who will be, of course, bowling the next over. And comes in and bowls the first delivery, a dot one. Gets the ball back very quickly. Comes in and bowls the next delivery, short one. The ball pulled towards the deep mid-wicket area. Kranti Gaur is the fielder. Strong throw comes in. Not collected well by Shefali Verma. I was a little disappointed with her approach there. But then very well backed up by the Indian fielders and just restricting the Sri Lankan batters for a single. 119 runs needed of 58 balls. Shefali Verma comes in, bowls a slower delivery, and that's the intention. Of course, a lot of the cricket thinkers, they say that if the wicket is flat, you need to bowl slow. And that's exactly what Deepthi Sharma and now Shefali Verma are doing. So, just a correction that Deepthi Sharma now has 13 wickets. In fact, Chamari Attappattu had 12 wickets. So, highest wicket taker from India, Deepthi Sharma is now on to 13 wickets. But at the moment, this is Shefali Verma bowling a delivery and an inside edge by Neelakshi. The ball runs down to the fine leg area. The batters will come back for the second run. Yes, they do. And the score now moves on to 68 for the loss of 3 wickets. So the main batter of Sri Lanka, their captain Chamari Attappattu, is back into the pavilion. And Shefali Verma now bowls to Neelakshi, who faces the ball and plays the ball to the deep cover area. So single then in this over, 4 singles in all, along with that double. And India are very happy to see how they can stroll back to victory and take that crown and the cup of being the Asia Cup champions, bring the cup back to our country. Another delivery now short of length, a little flatter in trajectory by Shefali Verma, and a dot delivery to end this over. So 6 runs, and in that over, India of course just consolidating their position, keeping Sri Lanka to 69 for 3 after 11 overs. But Sanjay Banerjee, that this is not the only occasion where India and Sri Lanka will be meeting. Very shortly in this month, they'll be meeting in the Asian Games, which is being organized in Japan. And what I got to know about the venue there, the 3 baseball fields combined together have been turned into a cricket field. How the wicket is going to play, that is a big question mark. And India, along with Sri Lanka in the men's and the women's format, with all the teams that appeared in the Asia Cup, will proceed from the hot and humid conditions from Dubai to a lesser humid but a very pleasant place in Japan.
2: Bilkul Aichi Prefecture Nagoya mein ye muqable khele jayenge, Nagoya City mein. Aur cricket is baar ek alag tevar ke saath hoga Munish, kyunki Team India apni puri team ke saath जा रही है, जो मेन टीम है उसके प्लेयर्स जा रहे हैं, तो जाहिर है और जापान के लिए बहुत बड़ा अनुभव होगा, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, जहां धीरे धीरे क्रिकेट ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया है.
1: एंड जस्ट वाइल बैक वी रेड अबाउट द स्टैट्स, वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट, हाउ इंडिया वन द एशिया कप इन 2012, द T20 वर्जन, वेयर दे बोल्ड आउट फॉर 81 एंड दे बोल्ड आउट पाकिस्तान फॉर 69. We'll talk about that as well as Deepthi Sharma comes in to bowl her third over, flighted delivery, and the ball has been hoisted over the cover fielder and it races down to the boundary for a 4. So Harshita getting a first boundary of the match. The Sri Lankan fans stand in, cheer that shot from Harshita, and they have that moment of celebration. But they all know that the task is getting much tougher, because the required run rate for Sri Lanka to win this game is hovering around 13 runs and over. And this is where a solid knock is needed, as Deepthi comes in, bowls a slow delivery. She came and bowled from the over the wicket in the previous ball. Now it's to bowl around the wicket, angling the ball onto the off stump. And all of a sudden, the Indian players just cheering to that dot ball bowled by Deepthi Sharma. Another delivery, a similar one, but then a shorter trajectory, short of length delivery. Didn't time the ball well, so the dimension and the way the wicket at Dubai has played It's been a wicket where it supported the slow bowlers. But talk about the swing that the Indian bowlers were getting today. Kranti Gaur along with Nandini. That was tremendous. And they got the early breakthrough as well. Meanwhile, Deepthi comes in and bowls a delivery, a similar one. And it was a different intention by Harshita, who stepped out but then edges the ball down to the short third man area. Litten on the right of the short third man. So she manages to get a single after playing two dot balls. 6 runs in this over. One more delivery to come. Right arm over the wicket to the right-handed Neelakshi, who just plays a cross-batted sweep, stepping out and then playing that cross-batted sweep to the deep square leg area for a single. So 7 runs in that over. Number 12, Sri Lanka 76 for 3. And they have to reach to 184 in the remaining 8 overs. They require around 108 runs, and that is a daunting task. 108 in 48 balls. Sanjay Banerjee is going to give his views, and of course he's going to bring that flavor in the Hindi commentary. But we were looking for a close finish, Dada, but I think the whole idea and the plan of a close finish, you know, it just got over when India reached 183 in their stipulated 20 overs.
2: बहुत बड़ा लक्ष्य है T20 क्रिकेट के लिए, खासतौर पर महिला क्रिकेट के लिए, और 184 रन हासिल करना कोई आसान काम नहीं है इस विकेट के ऊपर, जहां ऑलरेडी श्रीलंका अपने 3 विकेट गंवा चुका है. 8 ओवर बाकी हैं. पहली गेंद पर 1 रन दौड़ करके पूरा किया. शेफाली को लगाया गया गेंदबाजी में, चूंकि शेफाली ने इससे पहले 1 ओवर किया है, 2 ओवर कर चुके हैं. ये तीसरा ओवर है शफाली का. 19 रन खर्च किए उन्होंने. हर्षिता तैयार स्ट्राइक लेने के लिए. फ्लाइट हिट गेंद, कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़ करके गेंद को मिड विकेट की दिशा में निकालना चाहती थी, लेकिन गेंद थोड़ा सा हटते हुए तकरीबन मिड ऑन पर थोड़ा पीछे की ओर गई. 1 रन और बनाया यहां पर. बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है श्रीलंका को. रनों का औसत अब 14 रन प्रति ओवर की औसत के आसपास है, और जाहिर है ये एक ऐसा लक्ष्य है जो कतई आसान नहीं हो सकता किसी भी टीम के लिए दुनिया की. दीप्ति शर्मा की अच्छी फील्डिंग, और ये आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो सब कुछ बयां कर देती है कि आप इस मुकाबले में कितना मजबूती के साथ खड़े हैं. श्रीलंका की जो बैटर्स हैं वो जहां एक तरफ थोड़ा सा परेशानी महसूस कर रहे हैं, और गेंद पर ऐसा लग रहा है कि जो ओस है दुबई के मैदान की वो लगातार उस पर लग रही है, और नहीं, उसकी सीएम के साथ शायद थोड़ा सा परेशानी थी और उसको निकाला गया है, ठीक किया गया अंपायर के द्वारा. शेफाली की पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स बने, लेकिन अब वो समय चला गया जब आप सिंगल्स के सहारे इस मुकाबले को अपने हक में कर सकते थे. ओह, बैकफुट पर जाकर के इस गेम को कट करना चाहती थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेम को मेडल नहीं कर पाई, और ऋचा भी बहुत सफाई के साथ गेम को गैदर नहीं कर पाई. गेंद आकर के उनके हेलमेट के सामने वाले हिस्से पर लगी, बल्ले से लगी थी गेंद, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं थी कि ऋचा उस कैच को ले पाती. ये डॉट बॉल. 105 रन चाहिए 44 गेंदों में. 13वां ओवर चल रहा है. नीलाक्षी 8 पर खेल रही हैं, हर्षिता 9 पर खेल रही हैं. अब चूंकि हेलमेट पर लगी हैं ऋचा घोष के, तो कंकशन के लिए यहां पर उनसे पूछा जा रहा है. कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, आप ठीक से देख पा रही हैं, या आप कोई परेशानी तो महसूस नहीं कर रही. तो और ये एक औपचारिकता है, क्योंकि खेल में जो खिलाड़ियों की सुरक्षा है, खिलाड़ियों की जो सेफ्टी है, वो सर्वोपरि है. और ये एक नया नियम है कि अगर आपके हेलमेट पर बॉल लगेगी तो खेल कुछ क्षणों के लिए रोकेगा. ये तय किया जाएगा, ये कन्फर्म किया जाएगा कि आप पूरी तरह से ठीक हैं, कोई असर उस गेंद के लगने का आपको नहीं हुआ है, और तभी आप ग्राउंड पर बने रह सकते हैं, अन्यथा आपको बाहर ले जाकर के जो भी चिकित्सा होगी वो किया जाएगा. शेफाली की अगली गेंद और इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहती थी, पूरी तरह से गेंद की लाइन को चूकी। एक और डॉट बॉल लीजिए, इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हैं शेफाली ने। जब आप इस समय यानी कि 13वें ओवर में, जबकि एक बहुत बड़ा लक्ष्य बाकी है, तब अगर आप इस तरह की गेंदबाजी कर रही तो कमाल। एक और डॉट बॉल लीजिए ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, अच्छा ओवर समाप्त शेफाली का, सिर्फ 3 रन खर्च किए उन्होंने 13वें ओवर के बाद। श्रीलंका का स्कोर अब बढ़ता हुआ 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका को अब 15 रन प्रति ओवर की औसत से बनाने हैं। तकरीबन तय है कि भारत 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है, और जैसा कि हम इससे पहले भी चर्चा करते रहे कि अब एशियन गेम्स जो कि अब दस्तक दे रहे हैं लगातार, उसमें भारत की टीम क्रिकेट की, खासतौर पर महिलाओं और पुरुषों की, जो बेस्ट पॉसिबल टीम है, पूरी स्ट्रेंथ वाली जो टीम है वो खेलेगी, और ऐसे में पूरी उम्मीद की जा रही है कि 2 स्वर्ण पदक क्रिकेट के कहीं नहीं जाने वाले, वो भारत के पास ही आने वाले हैं। और दोनों टीमें अच्छी खासी तैयारी भी कर रही हैं उसके लिए। कुल मिलाकर एशियन गेम्स की क्रिकेट को भी भारत ने गंभीरता से लिया है, और ये एक अच्छा संकेत है क्रिकेट के लिए भी, एशियन गेम्स के लिए भी, और जापान के लिए भी, जहां पर क्रिकेट लगातार लोकप्रिय हो रही है। हवा में थी गेंद, पहली गेंद थी नए ओवर की श्रीचरणी के, लेकिन वहां कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था, और पहला रन बहुत तेजी के साथ पूरा किया। क्रांति गौड़ पर थोड़ा सा नाराज हैं ऋचा, लेकिन चलिए 2 रन पूरे किए। पहला रन काफी तेजी के साथ दौड़ी दोनों बैटर्स, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि ऋचा घोष ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक वो गेंद को अपने दस्ताने में गैदर करके स्टंप्स पर मारती, तब तक बैटर्स अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी। 103 रन चाहिए 41 गेंदों में श्रीचरणी इस ओवर में अगली बार। जहां तक श्रीचरणी का सवाल है, उनका दूसरा ओवर, अब तक 7 रन खर्च किए उन्होंने। अक्रॉस द लाइन ऑफ स्टंप की गेंद को उन्होंने ऑन साइड पर खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन के नजदीक। क्रांति गौड़ और प्रेमा रावत दोनों वहां पर मौजूद थे, गेंद को फील करके उन्होंने वापस बोलर के पास फेंका। 83 रन यानी कि पूरा 100 रन पीछे है श्रीलंका भी, और जीत के लिए उसको 101 रन बनाने हैं 40 गेंदों में। तकरीबन असंभव की श्रेणी में जाता हुआ यह मुकाबला, 12 गेंदों से कोई बाउंड्री नहीं लगी। इस बार हवा में, क्या कोई नीचे है, बिल्कुल नीचे थे हरमनप्रीत, और साथ में ऐसा लगा कि क्या कोई कंफ्यूजन था, या हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा के बीच में एक गलत फहमी थी कि वो बॉल बीच में गिर गई। ऐसा लगा जैसे उस प्रयास को बीच में रोक दिया गया हो, कोई गलत फहमी दोनों फील्डर्स के बीच में, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज इस बार हवा में है, और अंपायर के नीचे गेंद जाकर के गिरी। भारती ने पूरा अपना प्रयास किया, लेकिन जाहिर है उनके प्रयास का कोई फल नहीं होना था। 2 बार कैच निकले, लेकिन किस्मत अच्छी, अपनी जगह पर सुरक्षित भारती ने प्रयास किया वहां, लेकिन उनकी पहुंच से बाहर। 98 रन अब भी चाहिए 38 गेंदों में, इस ओवर की सिर्फ 2 गेंदें बाकी हैं। श्रीलंका का स्कोर 86 पर 3। नीलाक्षी खेल रही हैं 15 पर 11 गेंदों के बाद, और हर्षिता का स्कोर है 9 रन 13 गेंदों का सामना करने के बाद। श्रीलंका की मुट्ठी से यह मुकाबला फिसल चुका है, इसमें शायद कोई बहुत ज्यादा शक की गुंजाइश नहीं है। श्रीचरणी के इस ओवर की अगली गेंद हवा में, और आखिर तक श्रीचरणी ने खुद अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद को कैच किया। एक और विकेट, चौथा विकेट गिर गया है श्रीलंका का। लगातार तीसरी गेंद पर कैच लिया, और आखिर तक हर्षिता का विकेट गिर गया। हर्षिता समर विक्रमा इससे पहले 2 मैचों में अपनी टीम को जीत दिला चुकी हैं, लेकिन आज उनका यह प्रयास नहीं चल सका, और उछाल लेते हुए अपनी जगह से बिल्कुल सही समय पर उछाल लिया श्रीचरणी ने, और हर्षिता का विकेट अपने हाथों में कैद किया। चौथा विकेट गिर गया श्रीलंका का। कॉटन बोल्ड श्रीचरणी, 9 रन बनाए उन्होंने 14 गेंदों का सामना करने के बाद। तो अब एक औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले के अंदर, भारत खिताब की दहलीज पर पहुंच गया है,
0: भारत खिताब पर लगातार दस्तक दे रहा है। ये आठवां खिताब होगा भारत का। एशिया कप के तमाम फाइनल्स में भारत ने शिरकत की है और ये आठवीं बार मौका मिला है भारत को जब वो फाइनल जीत सकता है, जीतने की दहलीज पर पहुंच के आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर 183 रन भारत ने बनाए 5 विकेट पर कुल 20 ओवर्स में। 184 रन बनाने थे जीतने के लिए श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंका ने अब तक 86 रन बनाए हैं, 4 विकेट उनके गिरे हैं। 14वां ओवर चल रहा है, 14वें ओवर की आखिरी गेंद आनी है, यानी कि श्रीलंका के हाथ से यह मुकाबला निकल चुका है। कविशा दिलारी 93 मैचों का तजुर्बा है, 791 रन है, इकलौता अर्धशतक है इनके नाम। अगर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करेंगी तब भी शायद अपनी टीम को पार नहीं लगा पाएंगी। चलिए पहली गेंद पर आखिरी वक्त तक इंतजार किया और हल्के से केवल प्लेस कर दिया, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। नंदिनी शर्मा गेंद के पीछे थी लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर और इन 4 रनों के साथ अब श्रीलंका का स्कोर 14 ओवर के बाद 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों में बाकी रन यानी कि 94 रन बनाने होंगे श्रीलंका को इस मुकाबले को जीतने के लिए, भारत को खिताब से दूर करने के लिए।
1: And what a catch there by Sri Charni in her own bowling, getting rid of Harshita Samarawickrama. It's a dangerous player. And what a way to dismiss her. So the Women's Asia Cup 2026, of course, clearly going India's way at the moment. And 94 to win. The Duckworth Lewis also going simultaneously as calculated by our scorer. And of course, he's telling us that it's a daunting task for Sri Lanka. No signs of rains. Of course, the weather gods clearly dictating that it's going to be a clear weather today. And our scorer Ranjit Singh Rawat telling us that 119 was the score if the DLS had to come into play. So we're trying to cover all the aspects and the dimensions of the game here. Prima continues the attack and now gets a delivery that's been swept towards the backward square leg area. And an overthrow? No, not really. A backed up effort by the Indian fielders. And they know that the chance is coming to win this Asia Cup. 94 runs needed in 35 balls now. There was a mix-up though. Both the batters were stranded at one end. It was an opportunity that's been missed. Richa Ghosh was at the batter's end. And a wide throw that saved another dismissal for Sri Lanka. Though Harmanpreet was backing up, she took a shy at the non-strikers end. But by the time that all happened, of course, Neelakshi was back at the non-strikers end. So Prima comes in right above the wicket. The leg spinner flighting the delivery, very impressively and confidently bowling that delivery to Kavisha. Dot delivery as the ball has been played back to the bowler. Of course, India vying their chances to win this Asia Cup. And what a tremendous start of 129 runs by the Indian openers. Shefali Verma, who got 68 in 39 deliveries. As a single comes up for Sri Lanka, they move on to...
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
0: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
4: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
0: हम आशा करते हैं इस समिट से
5: उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
5: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल राइट में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
6: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions

0: भारत बना है 8वीं बार एशिया कप चैंपियन। भारतीय स्पिनर्स की फिरकियों ने श्रीलंका को ऑल आउट किया है 111 के स्कोर पर, और हम हाजिर हैं कौन बनेगा प्लेयर लेकर। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट दर्पण तिखिया।
1: जी हाँ, सभी भारतीय प्रशंसकों को बहुत बहुत बधाई। भारत 8वीं बार एशिया का चैंपियन बना है महिला क्रिकेट में, T20 एशिया कप का खिताब अपने नाम करने के बाद, और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने यह मैच जीता है। और भारतीय स्पोर्ट्स के लिए, इंडियन स्पोर्ट्स के लिए आज का दिन शानदार रहा है। एक तरफ चाइना से खबर आई कि हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत की महिला टीम ने चीन को फाइनल में 1-0 से हराया, भारत की पुरुष टीम ने 4-1 से दक्षिण कोरिया को मात दी, तो वहां दो एशिया कप के टाइटल भारत ने अपने नाम किए, यहां महिला क्रिकेट में अपने नाम किया। तो वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को पहले T20 में मात दी। और वहीं एक खबर मेक्सिको से भी आ रही है, जहां पर आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल्स में धीरज बोमा देवरा मेंस रिकर्व आर्चरी में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय आर्चर बन चुके हैं, यानी वहां से भी सिल्वर मेडल आना तो कंफर्म है। थोड़ी देर में पुष्टि होगी कि गोल्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो ओवरऑल इट हैज बीन अ टेरिफिक डे फॉर इंडियन स्पोर्ट्स, बट हेयर वी आर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द इंडियन वुमेन्स टीम। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, हमारे साथ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर लतिका कुमारी है, जो शायद इन इमोशंस को बहुत बेहतर से जानती है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगता है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जीत पाना। लतिका, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू सो मच।
1: और साथ में हमारे साथ उत्तरा गणेशन है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक लंबे अरसे से बड़े करीब से देखा है। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्व है इस जीत के। वेलकम उत्तरा।
2: धन्यवाद।
1: तो लतिका, आपसे ही शुरुआत करते हैं। एज अ प्लेयर, जब आप इन विजुअल्स को देखते हैं, टीम को सेलिब्रेट करते हुए, लंबे टूर्नामेंट में जीत हासिल करते हुए, अनडिफीटेड रही है भारतीय टीम, कैसा महसूस करता है खिलाड़ी?
2: देखिए, सबसे पहले जिस चीज के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, महीनों के कैंप्स लगाते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, यंगस्टर्स को लेकर आते हैं टीम, सीनियर प्लेयर्स होते हैं, तो ये एक कह सकते हैं कि काफी लंबो भरा है ये जो रास्ता रहा है, उसकी जर्नी जो आज एक कप के साथ फिनिश होती है, तो इस चीज की फीलिंग एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल है। और इसी चीज के लिए तो हम लोग ग्राउंड पे उतरते हैं कि जब हम अपना 100% दे रहे हैं, उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह की ट्रॉफीज की ना अब आदत लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हरमन जिस तरह का काम कर रही है, जिस तरह की कप्तानी वो कर रही है, तो उनके साथ ये जो सफर है, यंगस्टर्स भी हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं स्मृति जैसे, तो अच्छा लगता है जब एक ट्रॉफी घर पर आती है।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब एक ट्रॉफी घर पर आती है। उत्तरा, 10वां एडिशन है ये एशिया कप का, पहले एडिशन में भी श्रीलंका और भारत का मुकाबला हुआ था, भारत हर बार फाइनल में पहुंचा है और ये 8वीं बार ट्रॉफी उठाने जा रहा है भारत, इससे ज्यादा और क्या सबूत होगा भारत के डोमिनेंस का एशिया में?
3: मुझे लगता है कि अगर, हालांकि उम्मीद थी भारत के जीतने की ही, पर जितना बड़ा गैप है इस वक्त भारतीय क्रिकेट और बाकी एशियन टीम्स के बीच में, महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में, बट महिलाओं में और ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि अब भारत को अपने आप को एशिया के हिसाब से सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप जीतने लगते हो, जब आपको आदत हो जाती है, तो आपको अपने टारगेट्स, अपने सपने बड़े करने चाहिए। और मुझे लगता है कि कॉन्टिनेंट अब आप प्रूव कर चुके हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत बार प्रूव कर चुके हो कि इस कॉन्टिनेंट में, एशिया में आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपके आसपास भी कोई नहीं है। आज इन्होंने फिर से इस चीज को प्रूव किया है, और जितने बड़े मार्जिन से ये जीते हैं, T20 जैसे टूर्नामेंट में 70-75 रन से जीतना कोई छोटी चीज नहीं होती है, जहां पे टोटल ही कई बार टीमों के इतने बनते हैं, उसमें इतने बड़े मार्जिन से जीतना, तो मुझे लगता है अब भारत को अपना सपना और अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए, थोड़ा सा अपने एम्बिशंस और बड़े करने चाहिए, अपना लालच और बड़ा करना चाहिए और विश्व की ओर देखना चाहिए। चाहिए क्योंकि अगला टारगेट विश्व कप ही होना चाहिए इनका।
1: जी बिल्कुल, 72 रन से भारत ने इस मुकाबले को जीता है। सामने श्रीलंका थी जो कि इस टूर्नामेंट में आज से पहले अपराजित थी और उनको एक तरफा अंदाज में भारत ने हराया है। और अभी भी हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के जो स्टैंड है वो खाली नहीं हुए हैं, भारतीय प्रशंसक अभी भी बने हुए हैं स्टैंड में क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं उस लम्हे का जिस जब हरमनप्रीत कौर को वो ट्रॉफी दी जाएगी और जश्न मनाया जाएगा भारतीय टीम द्वारा। लेकिन इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। लतिका उत्तरा ने कहा कि हमें अब और आगे की सोचनी है, उस लिहाज से क्या लगता है कि कौन सी चीजें हैं, कौन से वो पहलू हैं जिन पर भारत को इंप्रूव करने की जरूरत है जो आपने इस टूर्नामेंट में देखे?
2: देखिए, सबसे पहले हमने देखा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, कैचेस की अगर मैं बात करूं, तो वो थोड़ा सा लैक दिखा है, उसमें थोड़ी कमियां जरूर नजर आई हैं। और आई होप के जो कोचिज हैं, मैनेजमेंट है, उन्होंने भी इस चीज को देखा होगा और इस पे काम करने के लिए आगे प्लान्स भी जरूर बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज होती है जो अपने हाथ में रहती है। एक बल्लेबाज किसी भी अच्छी गेंद पर आउट हो सकता है, एक गेंदबाज की किसी भी अच्छी बॉल पर बड़ा हिट लग सकता है, लेकिन फील्डिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ही एफर्ट करना है, वही एफर्ट जो है वहां पर रन बचा सकता है या किसी की बॉलिंग में वो विकेट दिला सकता है। तो जो आज भी हमने देखा है कि काफी आसान से कैच इतने आसानी से छोड़ दिए, आप उस बॉलर से पूछिए जिसने इतनी मेहनत की उस कैच को करवाने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं क्योंकि कोई क्रूशल अगर मैच होगा और वहां ये सिचुएशन आती है तो थोड़े आपको कह सकती हूं मैं कि लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये एक चीज होती है जब आप क्रिकेट में कोई भी चीज को नजरअंदाज करते हैं, तो छोटी से छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और आज की इस जीत में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो अभी दिखा हमें वो था भारत के स्पिन अटैक का, लेड बाय दीप्ति शर्मा, नाउ वी हैव चरणी, देन प्रेमा रावत। कैसे देखती हैं उत्तरा इस स्पिन अटैक को आप भारत के, क्या वो और ज्यादा धारदार होता जा रहा है? और काफी इंप्रेस किया है उसने इस पूरे टूर्नामेंट में।
3: बिल्कुल, और जिस तरह से एज अ नॉर्मली कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स, बट ये सिर्फ फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं है, आपकी बॉलिंग यूनिट पूरी अटैक, व्हेन दे अटैक इन अ पैक, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और अगर हम इसमें देखें तो हाँ, दीप्ति शर्मा ज़रूर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने काफ़ी मैचेस खेले हैं, मैचेस जिताए हैं, काफ़ी विकटें ली हैं, इसमें भी वो टॉप विकेट टेकर बन गई हैं। पर श्रीचरणी और प्रेमा रावत को देख के आपको लगता है कि कम से कम वो लेगेसी आगे कंटिन्यू होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिस तरह से क्योंकि दोनों यंगस्टर्स हैं, अभी बहुत साल और खेलना है। और हमारी बैटिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है, पर बॉलिंग में कभी ना हमेशा ये रहा है कि शायद एक कम पड़ गया है या एक एंड पे जब हो रही होती है तो दूसरे एंड पे उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जब इस तरह से आपके पास तीन चार एक जैसे विश्व स्तरीय स्पिनर्स होते हैं, तो वो जो बीच के ओवर होते हैं जिसमें आप एक्चुअली रन्स को चोक कर सकते हैं, वो एक अकेले इंसान का काम नहीं होता है। और इसीलिए मिडिल ऑर्डर में जब आप सद के खेलते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, T20 हो या वनडेयर्स हो, तो वहां पे फिर रन ज्यादा इजीली आते हैं। जब आपके पास एक की जगह तीन इस तरह के होते हैं जो किसी भी बैटिंग टीम को परेशान कर सकते हैं, बैटिंग साइड को, तो आपको आपके बैटिंग को भी एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कोई भी टारगेट सेट करें उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है कि अगर बाय चांस 5-10 रन कम भी बनाए हमने तो हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं, चाहे वो शुरू में तेज गेंदबाज हों या बीच में स्पिन गेंदबाज हों, जो सामने वाली टीम की रन फ्लो को रोक सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम जश्न मना रहे हैं भारत के एशिया कप जीतने का, वुमेन्स एशिया कप 2026 का टाइटल भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया है। इस जश्न में आप भी शरीक हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 2342-1085 या 1084 पर, और अगर दिल्ली के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई शेफाली वर्मा, और स्मृति मानधना की तो तारीफ होगी ही। मैं चाहूंगा लतिका एक बार फिर आप इनकी बल्लेबाजी का आकलन करें, और साथ के साथ शेफाली जो कि एक छठे बॉलर के तौर पर अब लगातार कंट्रीब्यूशन दे रही है, थोड़ा सा उस पर भी हमें बताएं।
2: बिल्कुल, देखिए ये विश्व कप के बाद से ही ये चीज हमने देखी कि शेफाली के हाथ में गेंद अब लगातार जो है दिखाई देती है जब भी कभी मैच होते हैं, और इस तरह के मोमेंट में आप देखिएगा पावर प्ले के आसपास भी उनको गेंदबाजी कराई जाती है। तो कह सकते हैं कि एक और गेंदबाज यहां तैयार हो रहा है भारतीय टीम के लिए, जो कि विस्फोटक बल्लेबाज भी है, और ओपनिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरे एशिया कप में उन्होंने बल्लेबाजी की है, और अपने खेल का जो तरीका उन्होंने इस एशिया कप में दिखाया है तो उससे ये पता चलता है कि काफी मेहनत इन्होंने अपने स्किल पे भी की है, और जो इनका माइंडसेट है उस पे भी इन्होंने काफी काम किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन प्लेयर जो है ये बनकर आई हैं, और इस तरह की जब कोई प्लेयर बनते हैं ना तो उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो प्लेयर ही जानता है कि उसने कितनी मेहनत की।
1: वो थोड़ी सी पीछे की मेहनत आपने देखी है, हम जानते हैं, थोड़ा सा वो बताएं हमारे दर्शकों को।
2: ओके, मैं यही कहूंगी कि शेफाली जब ड्रॉप हुई थी इंडियन टीम से, भारतीय महिला क्रिकेट टीम से, उस टाइम पे उन्होंने यही जो सपना था उनका यही था कि मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, और मैं लगातार अपनी जगह वापस लेने के लिए वो मेहनत करती रहूंगी, और उनको जैसे ही वो मौका वर्ल्ड कप के टाइम पे मिला और उन्होंने करके दिखाया, उसके बाद से वो शेफाली वर्मा हमें देखने को मिली है जो उससे पहले कभी हमें देखने को नहीं मिली थी, और हम यही चाहेंगे कि वो भारतीय टीम के लिए लंबे अरसे तक इसी तरह का प्रदर्शन करती रहे।
0: जी बिल्कुल, और शेफाली वर्मा पे हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आज हमारे श्रोता भी काफी उत्साहित हैं, तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। जी अरविंद जी, अपना सवाल पूछें। आपको भी बहुत बधाई। इसके बारे में हम आपको शायद कुछ समय बाद बता पाएंगे, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे शेफाली वर्मा की, आपने बात करी, इससे पहले वाले कॉलर दोनों ने डिक्लेयर ही कर दिया था कि शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच देना चाहिए और दीपी शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे देना चाहिए। तो उत्तरा और लतिका, मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि कौन होगा आपका प्लेयर ऑफ द मैच और देन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट?
3: बहुत मुश्किल है, पर प्लेयर ऑफ द मैच मेरे हिसाब से, हाँ, बहुत अच्छी बैटिंग की थी शेफाली ने, और जिस तरह से नॉर्मली होता है ये बैटर्स हमेशा स्पॉटलाइट में ज़्यादा रहते हैं, और जिस उसकी उनकी बैटिंग की वजह से जो स्टार्ट मिला उसकी वजह से बाकी जो नीचे जितने भी थोड़े से रन आए, हालांकि मिडल ऑर्डर थोड़ी सी लड़खड़ाई, लेकिन जो स्टार्ट मिला शेफाली की बैटिंग से, और सिर्फ इस मैच में नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से उनकी बैटिंग रही है, तो मुझे लगता है कि प्लेयर ऑफ द मैच जरूर बनती है वो। श्री चरनी को भी देखा जा सकता है, क्योंकि चार विकेट फाइनल में आके लेना, और जिसमें आपका पूरा मिडिल ऑर्डर एक तरह से आपने उनका खत्म किया है, जो इस पूरे टूर्नामेंट में लगातार श्रीलंका की ताकत रही है, उनके ऊपर के बल्लेबाज फेल हों तो भी तीन चार जब ऊपर के निकल जाते हैं तो उनके पांचवें छठे सातवें आठवें नंबर के खिलाड़ियों ने ही रन बनाए हैं लगातार, उस पॉइंट पे आके उनको वो ना स्पेस देना और वो चार विकेट लेके एक तरह से उनकी पूरी मिडिल ऑर्डर को तोड़ना, इन दोनों में से किसी को भी मिल सकता है। और जहां तक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात है, तो अगेन शेफाली और दीप्ति में से मुझे नहीं लगता दोनों में से किसी को भी कोई तकलीफ होगी, अगर किसी को भी मिले इन दोनों में से तो।
1: जी, श्री चरणी ने आज 38 विकेट अपने पूरे किए हैं 2026 में, और किसी भी कैलेंडर ईयर में भारतीय स्पिनर द्वारा लिए गए ये सबसे ज्यादा विकेट है। और लतिका, लगातार बात होती आई है एक लंबे अरसे से कि आपके पास बेंच पर राधा यादव है, जो ना ही सिर्फ इन्हीं की तरह लेफ्ट आर्म स्पिन डालती हैं बल्कि एक बेहतर बल्लेबाज भी है, बेहतर फील्डर भी है, फिर भी भारतीय टीम हमेशा चरनी को प्रेफरेंस देती आई है और उन्होंने डिलीवर किया भी है। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा हमें समझाएं कि ऐसा क्या है चरनी की गेंदबाजी में जो उनको सेपरेट करता है अपने कॉम्पिटिशन पोजीशन से?
2: देखिए चर्नी जिस तरीके से गेंदबाजी करती हैं, पेस वेरिएट करती हैं, लाइन और लेंथ का इस्तेमाल करती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि बल्लेबाजों को काफी परेशान करता है। और जिस जो फील्ड सेट वो करती हैं, जिस तरफ फील्ड लगाती हैं उसी तरफ गेंद आप देखिएगा कि वहीं वो गेंद जाती है। अगर राधा यादव की बात करूं, गेंदबाजी उन्होंने भी बहुत अच्छी की है जब भी उन्होंने मैच खेले हैं, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस मुझे दिखाई दिया है अभी तक, जो बॉल रिलीज होती है तो वो किस तरीके से हवा में जाती है और बल्लेबाज तक वो पहुंचती है, तो वो एक डिफरेंस है गेंदबाजी में दोनों की, कि गति का परिवर्तन बहुत बेहतरीन करती है श्री चर्नी
1: जी। और एक बड़ी खबर इस वक्त मेक्सिको से आ रही है, जैसा हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, धीरज बोमा देवरा वर्ल्ड कप फाइनल्स में, आर्चरी की बात कर रहे हैं हम, तीरंदाजी की बात कर रहे हैं, रिकर्व मेंस इंडिविजुअल इवेंट में वो गोल्ड मेडल के बेहद करीब पहुंच चुके थे, और अब खबर आ रही है कि वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जापान के नाकानिशी को उन्होंने फाइनल में हराया है और आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को गोल्ड जिताया है। तो आप भारतीय स्पोर्ट्स के अगर आप फैन हैं तो आपके पास एक और रीजन है सेलिब्रेट करने का, एक और वजह है आपके पास जश्न मनाने की, क्यों मुद्दता?
0: बिल्कुल है, और जश्न मनना चाहिए, चलता रहना चाहिए ये जश्न, और अब आने वाले एशियन गेम्स में भी हमें लगता है ये जश्न जारी रहेगा। चर्नी की बात हम कर रहे थे लतिका अभी, तो चर्नी टुक हर 50th T20 इंटरनेशनल विकेट इन सेमीफाइनल अगेंस्ट बांग्लादेश, और फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बनी है वो मेन या वेमेन में टू गेट देयर। 39 T20 विकेट्स ले चुकी हैं इस साल, और इसके साथ ही हमारे साथ फिर से एक कॉलर जुड़ गए हैं। आज बहुत सारे सवाल हैं हमारे श्रोताओं के पास, तो नमस्कार, अपना नाम बताएं और साथ ही अपना सवाल पूछें। गुड इवनिंग, जी प्रकाश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें अपना। आपको भी हम सब की तरफ से
1: जी, ये खुशियां मैं नहीं दे रहा, ये भारत के खिलाड़ी दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको भी। जी पूछिए।

0: जी उतरा हम चाहेंगे, आप हेड ऑन लेते हैं चीजों को, इस सवाल को भी आप हेड ऑन लें। हम बात कर रहे थे कि हमें कैसे एशिया से बाहर निकलना है, कुएं का मेंढक नहीं बनना है, और बेहतर बनना है, विश्व स्तर पर ऐसा बनना है कि कोई भी टीम हमसे कम्पीट ना कर सके। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो हो रही हैं, इस पर हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं?
1: देखिए बिल्कुल, और जैसे लतिका ने कहा, जो प्रेमा की बॉल पे लगातार एक ही ओवर में दो या तीन कैच ड्रॉप हुए हैं, तो वो किसी भी खिलाड़ी को भी डिमोटिवेट करने के लिए काफी होता है। और हालांकि जिस टाइम पे वो कैचेस ड्रॉप हुए उससे रिजल्ट पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था, तो आपको भारतीय खिलाड़ी भी थोड़े से हंसते मुस्कुराते नजर आए, उन्होंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अगर उस वक्त टोटल 107 पे 8 की जगह 177 पे 8 होता तो शायद चीजें बिल्कुल अलग हो जाती, क्योंकि तब आपके पास करीब डेढ़ ओवर में आपको सिर्फ 5 या 6 रन बनाने रह गए थे या 8 रन बनाने थे, तो सिचुएशन शायद बिल्कुल अलग हो जाती। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे काम करने की बिल्कुल ज़रूरत है, फील्डिंग पे काम करने की ज़रूरत है। हालांकि आज बहुत ही दो एक्सट्रीम्स पे थे भारतीय फील्डिंग, कुछ तो इतने कमाल के इन्होंने कैचेस लिए जो शायद किसी भी हॉल ऑफ फेम में जा सकते हैं, और कुछ ऐसे कैचेस थे जो 10 में से शायद 9 बारी ये लोग नींद में भी ले सकते थे और आज ड्रॉप हुई हैं कैचेस। तो वो कंसिस्टेंसी लानी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो एक चीज ऑस्ट्रेलिया या इवन इंग्लैंड जैसी टीमों को अलग बनाती है या थोड़ा बेहतर बनाती है, वो मुझे हमेशा से लगता है कि जो एक किलर इंस्टिंक्ट होता है, एक किलिंग स्पिरिट होती है, कि आपके पास बिल्कुल आपके पास 70-72 रन का अभी कुशन है, आपको पता है कि अगले 6 गेंदों में या 2 विकेट जरूर गिर सकते हैं लेकिन 70 रन नहीं बन सकते, पर आपको उस स्टेज पे क्यों जाके लगता है कि यहाँ पे हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ दो चार कैच ड्रॉप हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे। वो 18.3 ओवर में क्यों नहीं खत्म हो सकता? क्योंकि उस चीज से ओवरऑल आपके रन रेट पे फर्क पड़ता है, जो गेंदबाज है उसकी इकोनॉमी रेट पे फर्क पड़ रहा है, उसमें आपकी टीम की सीरियसनेस नजर आती है उससे। और जब आप बड़े खिलाड़ियों के साथ बड़े लेवल पे खेलते हैं तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हर्ट करती हैं, और हमने लगातार देखा है कि इन छोटी छोटी चीजों से ही भारतीय टीम ने कई बारी विश्व स्तर पे अपने मैचेस हारे हैं बड़ी टीमों के साथ। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाना, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाना, थोड़ा सा वो किलर इंस्टिंक्ट लाना कि किसी भी पॉइंट पे आपको गेम को खत्म जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी खत्म किया जाए, 20वें ओवर तक 120वीं गेंद तक लेके जाने का उसका कोई मतलब नहीं है आपका। तो वो चीज मुझे लगता है कि वाकई थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, वो तभी आएगा जब आप सीरियसली, जब आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल होंगे, थोड़ा सा और सीरियस होंगे इस चीज को लेकर।
2: जी बिल्कुल, वो किलर इंस्टिंक्ट और वो विनिंग माइंडसेट बिल्कुल चाहिए। लतिका, फिर से बात की उत्तरा ने प्रेमा रावत की, श्रियंका और पाकी की इंजरी के बाद सीधे वर्ल्ड कप में डेब्यू हुआ था और उसके बाद अब एशिया कप, पिछले 4 मैचेस में 6 विकेट, आज फाइनल में खाता खोला है उन्होंने। हाउ वुड यू रेट हर परफॉर्मेंस?
3: देखिए, मैच के बाद मैच में वो इंप्रूव करती नजर आई है, और इस एशिया कप में एक खास बात ये देखने को मिली है उनकी गेंदबाजी में, जो कि वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मिसिंग थी। अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां पर लाइन लेंथ इतनी प्रॉपर नहीं थी, इतने अच्छे से गिर नहीं रहा था, लेकिन इस एशिया कप में उनके हाथ से बहुत ही अच्छा गेंद जो है सीम से निकल रहा है, अच्छा टप्पे पे गिर रहा है, अच्छी लाइन जो है उनकी पड़ रही है, और अच्छा वहां से स्पिन भी करा पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है गेंदबाज में, जब वो एक मैच में इंप्रूवमेंट करता हुआ आ रहा है। अब विकेट टेकिंग की बात करें उनकी, तो विकेट टेकिंग एबिलिटीज हैं और वो हर मैच में दिखा भी रही हैं। आज अनफॉर्चुनेटली उनके कैचेस पकड़े नहीं गए, अदरवाइज ये एक की जगह 2 या 3 यहाँ पर विकेट होते। तो मुझे ये लगता है कि अच्छा काम वो अपनी गेंदबाजी पे कर रही हैं, और जिसका असर हमें मैचेस में दिख रहा है कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रही हैं, और बहुत ही सटीक और डिसिप्लिन जो गेंदबाजी है उनकी तरफ से हो रही है। और वही है कि किस तरीके से हम कहते हैं ना बॉलिंग में लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो बहुत बेहतरीन कर रही हैं एज ए लाइक स्पिनर।
0: अच्छा, स्पिनर्स की तो बात हम करने ही वाले हैं, होनी भी चाहिए, और दुबई में क्योंकि ये टूर्नामेंट था इसलिए स्पिनर्स बहुचर्चित रहेंगे, ये तो हमें मालूम था। लेकिन वो जो दो पेसर्स हैं लतिका, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, स्पॉटलाइट उन पर आ नहीं रहा, लेकिन उनका परफॉर्मेंस भी शानदार रहा है इस टूर्नामेंट में। थोड़ा सा मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को हम बताएं, अपने लिसनर्स को हम बताएं उन दोनों के बारे में कि क्या है जो आपने आकलन किया उनको इस टूर्नामेंट में खेलते हुए देखते हुए, उनके परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करते हैं?
3: देखिए काफी इम्प्रूव गेंदबाजी, मैं ये कहूंगी कि विश्व कप के बाद से सभी गेंदबाजों में इम्प्रूवमेंट नजर आई है, खासकर हमारी पेस अटैक पे, क्योंकि हम काफी थोड़ा निराश थे कि वहां पर हमारी गेंदबाजी इतनी बेहतर तरीके से हो नहीं पाई। क्रांति गौड़ की बात करें तो उनकी लाइन और लेंथ पे अच्छा काम किया है, विकेट टू विकेट वो गेंदबाजी यहाँ कर रही है, पहले काफी शॉर्ट गेंदबाजी वो करती थी, लेकिन अब उन्होंने बल्लेबाज के हिसाब से गेंदबाजी की है, अपनी लाइन लेंथ पे काम किया है। वहीं अगर नंदिनी की बात करें तो हमने देखा है कि WPL में किस तरीके गेंदबाजी करती थी और अब थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव जरूर किए हैं और उसकी वजह से जो एक विकेट टू विकेट गेंदबाजी हम ज्यादा उनकी गेंदबाजी में देख रहे हैं। हमें पता है कि इन स्विंग अंदर की तरफ आती हुई गेंद वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डालती है, तो कंसिस्टेंसी इस टूर्नामेंट में हमारे
0: लोअर बॉल डालती है बैक ऑफ द हैंड
3: वो परफेक्ट है उनकी नंदिनी की। मैंने बहुत कम बॉलर्स देखे हैं जो इतने परफेक्शन से वो गेंद डालते हैं और उनपे उनको विकेट भी मिलती है। पिछले मैच में हमने देखा लास्ट बॉल में उन्होंने कैसे विकेट लिया था।
2: लतिका, हर प्लेयर का जिस तरह आप एनालिसिस कर रही हैं, तो आपका पिक कौन होगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए?
3: देखिए प्लेयर ऑफ द मैच बिल्कुल जिस तरह गेंदबाजी श्री चन्नी ने यहाँ पे की है कि यंगस्टर्स हैं, उभरता हुआ सितारा भी हैं और उनको ये इसीलिए मिलना चाहिए क्योंकि जब कोई यंगस्टर इस तरह गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में करता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका अलग होता है और उन्होंने अपनी काबिलियत भी दिखाई, अपने स्टैंडर्ड भी सेट किए हैं कि वो किस लेवल के गेंदबाज हैं और चाहे हम किसी भी बैटर को उनके सामने ले आते घबराती नहीं है बॉल को डालते टाइम और जो रिटर्न कैचेस वो पकड़ रहे हैं आजकल, मतलब कह सकते हैं कि हवा में होते हैं वो पूरे और उसके बाद, तो एक ये भी देखने को मिलता है कि फिटनेस पे भी वो अच्छा काम कर रही हैं, तो ये देखते हुए अच्छा लगता है कि कोई यंगस्टर इस तरीके से आपकी टीम में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और वुमन ऑफ द मैच तो मैं कहूंगी कि एक गेंदबाज को, मैम से भी मैं एग्री करूंगी कि गेंदबाज को मिलना चाहिए क्योंकि बैटिंग डोमिनेटिंग ये गेम बनता जा रहा है, तो जहां वहां बॉलर अगर 4 विकेट ले रहा है उसका ये मतलब, और एक मेडन भी डाला है उन्होंने, तो इसका ये मतलब है कि कितनी बेहतरीन उन्होंने गेंदबाजी की होगी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुझे लगता है कि शेफाली या दीप्ति, क्योंकि दीप्ति एक ऑलराउंडर है, अच्छी गेंदबाजी भी करती हैं, समय आने पर अच्छी बल्लेबाजी भी वहां करती हैं और शेफाली के इसलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि जब इनिंग की शुरुआत करनी होती है वहां पर भी एक प्रेशर होता है, जब चाहे आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो या आप चेज करते हुए बल्लेबाजी करने हैं, तो वो एक अहम समय होता है वहां पर एज अ ओपनर कि आप शुरुआती दौर में वो ओवर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में आपका रन रेट अच्छा होना चाहिए अगर आप दूसरी टीम पे प्रेशर डालें, तो दोनों ही अपनी तरफ से एक, मैं कहूंगी मेरी तरफ से तो ये टाई नजर आता है, तो अब देखते हैं फाइनली किसको मिलता है।
0: चलिए कठिन निर्णय है लेकिन हमारे कॉलर्स की क्या राय है वो हम जानना चाहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी कहां से बात कर रहे हैं आप? जी सवाल पूछिए अपना। जी और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी खुशी जाहिर की है, उसी से हम बहुत खुश हैं। पुत्रा, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द प्लेयर्स बट देयर इज वन प्लेयर हु वी हैवंट डिस्कस्ड इन लेंथ, Smriti Mandhana. We talked in the pre-show that at times, you know, they say that she doesn't deliver at the big stages. Ye un par ek lalchan lagaya jata tha fans dwara. Aaj 150 ke strike rate se ardhshatak banaya hai. Run out ho gayi, zarur badkismat rahi, lekin aaj khamal ki pari khelkar wo neev unhone rakhi bade score ki.
1: देखिए मुझे लगता है कि हमारे देश में सिर्फ फैंस नहीं, इन जनरल हमारे देश में लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और वो अक्सर एक्सट्रीम्स पे ज़्यादा जाते हैं, तो जो लोग ये कह रहे होंगे इतने टाइम इतने वक्त से कि स्मृति मानना बड़े स्टेज पे नहीं परफॉर्म करती या वो नहीं अपने रन्स बना पाती या वो बड़ी टीमों के साथ नहीं खेल पाती, वही लोग आज शायद सबसे बड़े फैंस होंगे स्मृति के, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आज पारी खेली है और जिस तरह से जो ओपनिंग पार्टनरशिप तैयार की है, और उसके बाद जब हरमनप्रीत के साथ वो मिसकम्युनिकेशन हुई तो वो बहुत आसानी से अपनी जगह पर खड़ी रह सकती थी और हरमन आउट होके जा सकती थी, तो उन्होंने अपना एक सेट बैट्समैन होते हुए एक अच्छा स्टार्ट लेते हुए एक बहुत बहुत सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने जो अपना विकेट सैक्रिफाइस किया है एक तरह से टीम के लिए, तो जैसा मैंने कहा कि वही लोग शायद इस वक्त उनको सबसे बड़ा हीरो भी मान रहे होंगे। तो हमारे देश में फैंस की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो किसी भी तरह की कोताही को उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, और स्मृति जितनी बड़ी खिलाड़ी हैं उनसे हर बारी ये उम्मीद होती है कि वो एक मैच विनिंग इनिंग्स खेलेंगी वो किसी भी फॉर्मेट में हो, तो जब वो नहीं प्रदर्शन कर पाती तो लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो भी इंसान है और इंसान का खराब फॉर्म आ सकता है, इंसान खराब खेल सकता है, और जानबूझ के कोई भी खिलाड़ी खेलने के लिए नहीं उतरता कि आज मेरा मन नहीं है तो आज मैं खराब खेलूंगा। तो फैंस का ओपिनियन सर आंखों पर स्मृति जितनी बड़ी खिलाड़ी हैं बहुत लंबा समय उनका कभी जाता नहीं है कि उनका फॉर्म खराब हो या रन ना आए। इस पूरे टूर्नामेंट में पहला एक हांगकांग वाला मैच छोड़ के उनके उस तरह से रन्स नहीं आए थे, तो शी वॉज ड्यू फॉर अ बिग स्कोर, एंड अगर वो आज रनआउट पे अपना विकेट नहीं छोड़ती तो शायद शी कुड हैव बीन द टॉप स्कोरर ऑल्सो द वे शी वॉज बैटिंग। तो प्लेइंग फॉर द टीम एंड प्लेइंग द वे शी डज एंड द काइंड ऑफ प्लेयर शी इज, इमोशंस अपनी जगह पे हैं बट देर कैन बी नो क्वेश्चंस ऑन द क्रेडिबिलिटी एंड हर क्रेडेंशियल्स।
2: जी बिल्कुल, स्मृति मानना के क्रेडेंशियल्स पे कोई शक नहीं है, और हमारे कॉलर्स आज फिर बहुत उत्साहित हैं दर्पण, तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए और अपना नाम बताएं। जी

0: आपको एक बात बता दे जनाब कि जो भारत ने पहला एशिया कप टाइटल जीता था वो 2004 में ही जीता था, तो शायद भारतीय टीम के लकी चाम आप ही हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी, हमारे साथ जुड़ते रहिए। आप जैसे श्रोता जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा हौसला भी बढ़ता है, हमारी प्रोडक्शन टीम जो मेहनत करती है इस कॉमेंट्री को प्रोड्यूस करने में उनका भी हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत बधाई आपको और पूरे भारतवर्ष को।
1: जी जी जी आपके जैसे श्रोता हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपका फोन कॉल, आपकी हर ओपिनियन, हर राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दर्पण, एक और वोट आ गया है श्री चढ़नी के लिए, क्या आपका वोट भी चढ़नी के लिए ही है?
0: देखिए, अब प्लेयर ऑफ द मैच कोई भी बने, मुद्दा यह है कि ट्रॉफी भारत के पास आ रही है और उससे हम बहुत खुश हैं। पुरुष क्रिकेट में भी भारत एशिया कप का चैंपियन पिछले साल बना था, इस बार महिलाओं ने भी जो 2024 में जो हार मिली थी श्रीलंका के खिलाफ, कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ा है। लेकिन अब एक थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। लतिका, हमने देखा, ठीक है, भारत को हमने देखा, पाकिस्तान को देखा, श्रीलंका को देखा, बांग्लादेश को देखा, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने इंडोनेशिया की भी भागीदारी देखी, थाईलैंड की भी भागीदारी देखी, हांगकांग की भी भागीदारी देखी। तो वर्ल्ड क्रिकेट की जो ग्लोबलाइजेशन है, जो हर एक क्रिकेट फैन चाहता है कि विश्व भर में ये खेल खेला जाए, उस लिहाज से आप इस टूर्नामेंट को कैसे देखते हैं?
2: देखिए, मैं यही बोलूंगी कि बहुत अच्छा लगता है ये सुन के भी और देख के भी कि बाकी के जो कंट्रीज है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि ये जो स्पोर्ट है ये काफी अच्छे लेवल पे चल भी रहा है। भारतीय भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ WPL स्टार्ट हो गया है, कैरेबियन लीग स्टार्ट हो गई है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो हर जगह पर ये जो लीग्स हैं इससे एक उत्साह बनता है, जो बच्चे देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं, और वही तो अगली पीढ़ी है इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा रीजन है कि जितना ये टेलीकास्ट हो रहा है टीवी पे या जितना ये सोशल मीडिया में आ रहा है, उसकी वजह से जो है लोग क्रिकेटर्स को जान रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों। तो इस वही एक रीजन मुझे ऐसा लगता है बड़ा कि जो यंगस्टर्स हैं इस गेम को फॉलो कर रहे हैं, खासकर लड़कियां इस गेम को फॉलो कर रही हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हैं जो हमें टीम बनती हुई नजर आ रही है, और इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें हम उनका पार्टिसिपेशन भी देख रहे हैं।
1: जी, एसोसिएट नेशंस की बात हम कर रहे हैं उत्तरा, तो आपको किसकी परफॉर्मेंस ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया इस टूर्नामेंट में?
3: देखिए, काफ़ी टीमें हैं, और जब हम एसोसिएट की बात करते हैं तो जिस तरह से चीज़ें फैल रही हैं, तो हांगकांग में काफ़ी लोग खेल रहे हैं, थाईलैंड में क्रिकेट अभी से नहीं है, बहुत से लोगों को शायद नहीं आइडिया होगा कि थाईलैंड में काफ़ी सालों से क्रिकेट खेली जा रही है, और थाईलैंड काफ़ी पहले से एसोसिएट नेशन है।
1: शायद यही राज है इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस का।
3: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इन टीमों को आपस में और ज़्यादा खेलना चाहिए, और जितना हो सके हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट जिस लेवल पे है वो ऑब्वियसली विश्व स्तरीय है, पर जब आप अपने आसपास के, जिसे कहते हैं ना कि जब पड़ोस मजबूत होगा तो आपकी अपनी ताकत बढ़ती है, तो एशिया में क्रिकेट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितनी ज़्यादा टीमें अच्छा खेलेंगी और ऊपर आएंगी, उतना ही आपका खुद का कंपटीशन लेवल भी इम्प्रूव होगा, और जब तक आप आपस में और ज़्यादा नहीं खेलेंगे, हालांकि BCCI काफ़ी हेल्प करती है, आज अगर दिल्ली में भारत अफगानिस्तान मैच चल रहा है तो एक तरह से वो अफगानिस्तान का होम मैच है, वो होस्ट हैं हमारे इस सीरीज़ के, लेकिन वो दिल्ली में चल रहा है, वो अपने ट्रेनिंग कैंप भी यहीं पे लगाते हैं इंडिया में ही, तो चल रहा है काम, लेकिन मुझे लगता है कि महिला क्रिकेट में भी इस तरह की चीजें करने की जरूरत है, और जो एसोसिएट नेशंस हैं उनको यहां बुला के, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे ही क्यों ना हो, हमारे टूर्नामेंट्स में खिलाने की जरूरत है, क्योंकि भारत का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि अगर वो अपनी नेशनल टीम्स भेजते हैं कुछ समय के लिए यहां पे, और यहां पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और उनको सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा।
0: जी बीसीसीआई की हमेशा एक अहम भूमिका रही है। हम जानते हैं कि भारत की जो पुरुष टीम है अभी जापान के साथ भी एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आने वाले दिनों में खेलने वाली है। इस वक्त हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं, भारतीय टीम जश्न मना रही है एक हडल में और बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइका वहां पे मौजूद हैं और फील्डिंग के लिए मेडल दिया जा रहा है नंदिनी शर्मा को। ये एक ऑफिशियल प्राइस तो नहीं है लेकिन टीम अपने ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट करती है बेस्ट फील्डर को, तो आज नंदिनी शर्मा को वो मेडल दिया गया है। राजीव शुक्ला भी वहां पर मौजूद हैं और फील्डिंग कोच जो है भारतीय टीम के मुनीश बाली वो नजर आ रहे हैं, हेड कोच अमोल मौजूमदार नजर आ रहे हैं और साथ के साथ भारत के सारे प्लेयर्स हैं। एक हडल में जश्न मनाया जा रहा है, इंतजार हालांकि किया जा रहा है ACC के जो प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी साहब उनका, ताकि वो आए और ट्रॉफी दें। वो प्रेजेंटेशन अभी से कुछ देर में होगी लेकिन तब तक हम अपने श्रोताओं को कुछ रोचक आंकड़े बता दें कि 10 संस्करण एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर 10 संस्करण महिलाओं के एशिया कप के खेले गए हैं, जिसमें हरमनप्रीत कौर ने चौथी बार एज अ कैप्टन ए टाइटल जीता है। इनसे पहले मिथाली राज की कप्तानी में 3 बार भारत ने टाइटल जीता था, तो 3 बार एशिया कप जीतने वाली कप्तान मिथाली राज दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं उस सूची में और हरमनप्रीत कौर नंबर 1 पर आ गई हैं। लतिका एक बार फिर हम बात कर रहे हैं कि यहां से आगे कैसे इंप्रूव करना है, 2-3 वो वीक स्पॉट्स अभी भी दिख रहे हैं, एक वो नंबर 3 की पोजिशन, आपने प्रतिका को ट्राई किया, अभी एशियन गेम्स के स्क्वाड में भी आपने उनको डाला क्योंकि जमीमा रॉड्रिग्स फिट नहीं है, आज कामलिनी को आपने खिलाया जरूर लेकिन नीचे भेजा, दूसरा वो भारती फूलमली का जो स्पॉट है नंबर 5 नंबर 6 पर वो कहीं ना कहीं अभी पक्का नहीं हुआ है।

0: इन दो वीक पॉइंट्स को आप आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं इम्प्रूव होते हुए?
1: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है ये इस चीज़ पे काम करना, क्योंकि आपकी जो ओपनिंग साझेदारी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अभी बल्लेबाजी कर रही है, और वन डाउन के लिए मुझे ऐसा लगता है अगर कमलिनी को आपने चेंज किया है प्रतिका रावल से, और जो आज उन्होंने सिर्फ पांच गेंदों में वो कमाल करके दिखाया, तो उनको भी वो मौका जरूर मिलना चाहिए कि वहां पर आके वो बल्लेबाजी करें, कुछ शॉट्स खेले, कुछ कॉन्फिडेंस उनमें भी आए आगे के मैचेस खेलने के लिए। तो वहां से यहाँ पे अगर इनको नंबर तीन पर लेकर आते हैं तो वो जस्टिफाई भी करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे कमलिनी ओपनिंग करती हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी उनके पास काफी है, और वहां पर ये काफी अच्छी जो है बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी करती है, बड़े बड़े शॉट्स लगाती हैं, तो वो एक्सपीरियंस इनको यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर उन्होंने आज वो कॉन्फिडेंस भी दिखाया, पहला मैच फाइनल मैच, प्रेशर बहुत था, आपको नंबर तीन पे नहीं भेजा गया, चार पे नहीं भेजा गया, आप वहां डगआउट में बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब आपके बल्लेबाजी करने को मिलेगी, और उसके बाद जब आप बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं तो आपके पास एक ही मकसद होता है रन बनाने का। तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो कमलिनी ने आज दिखाया है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको नंबर तीन की जो समस्या, अभी जेमिमा रॉड्रिक्स जो कि हालांकि इंजर्ड चल रही है, उनकी जगह पर खिलाएं तो बेहतर होगा, और उसके बाद हरमन आती है, फिर ऋचा घोष मुझे लगता है कि 15वें ओवर के आसपास आए, उसके बाद आए तो ज्यादा इंपैक्टफुल उनकी इनिंग नजर आएगी। भारती फुलमल्ली को मैं हरमनप्रीत के बाद देखती हूँ, क्योंकि उनको पूरा मौका वहां मिलेगा अपनी बल्लेबाजी करने में, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि एक दो गेंद उनको लगती है समझने में, देखने में, और उसके बाद वो बेहतरीन जो है बल्लेबाजी करती है। उनको हमने पहले डोमेस्टिक में भी देखा है, WPL में भी देखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बल्लेबाजी नहीं करती या रन नहीं बनाती, तो सही नंबर पर उनको भेजना बहुत जरूरी।
0: तो एशियन गेम्स आने वाले हैं, वहां पर हर मुकाबला भले ही नॉकआउट है, सामने आप जापान से पहला मुकाबला खेलेंगे, आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की गुंजाइश देखते हैं वहां पर, या फिर आप कहेंगे नहीं जी नॉकआउट है, एशियन गेम्स का सवाल है, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे?
1: देखिए, जिस तरीके से अभी तक जो परफॉर्मेंस दिखाई है इस एशिया कप में, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर कुछ इसी तरीके की सोच वहां पर मैनेजमेंट की है या कोच की है, कप्तान की है, तो एग्जीक्यूशन लाने में कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को।
2: एग्जीक्यूशन लाने में दिक्कत नहीं है, पर उत्तरा हम देख रहे हैं स्क्वाड में और भी प्लेयर्स थे, रेणुका सिंह ठाकुर थी, कमलिनी को अभी मौका दिया गया है, क्या ये एक अच्छा मौका था कि हम उन सबको ट्राई करते अलग अलग जगहों पर, उन सबको मौका दिया जाता खेलने का, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी टीमों का सामना करना है, और शायद ये एक अच्छा मौका था टीम को तैयार करने का।
3: बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लानिंग की बहुत सख्त जरूरत है, कि हर टूर्नामेंट आप जीतने के लिए उतरते जरूर हो, लेकिन हर टूर्नामेंट का मेन मकसद सिर्फ जीतना नहीं हो सकता है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा टूर्नामेंट्स को, कॉम्पिटिशन्स को, अपने प्लेयर्स को और उनकी उनके तैयारी को, उनके एक्सपोजर को, उनके रिहैब को, अगर इंजरी या निगल्स चल रही हैं, और ये एक या हर, और ये आप हर दो महीने या हर तीन महीने में क्वार्टरली रिव्यूज नहीं हो सकते हैं, ये इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा, आपको साल के हिसाब से एटलीस्ट सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हर टूर्नामेंट में सिर्फ ये सोच के उतरेंगे कि हम चांस नहीं लेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम पहले अपना जीत जाएं उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है, तो फिर आपके पास कभी एक्सपेरिमेंट करने या टेस्टिंग का कभी मौका मिलेगा ही नहीं आपको।
0: जी, आपको बता दें कि भारतीय टीम ने आज 72 रन से इस फाइनल मुकाबले को जीता है, और किसी भी वुमेन्स T20I के मल्टी नेशन टूर्नामेंट में ये फाइनल में आई दूसरी सबसे बड़ी जीत है। पहले नंबर पर 85 रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था मेलबर्न में 2020 में। पुराने जख्म ताजा हो जाएंगे अगर उसकी बात करेंगे तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो जीत है भारत के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है। आठवीं बार भारत चैंपियन बना है एशिया का, और हम लगातार बात कर रहे हैं हम कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनके प्रदर्शन की, लेकिन कप्तान को कैसे भूल सकते हैं लतिका। हरमनप्रीत कौर भले ही बैटिंग वाइज थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म रहा उनका यह प्रदर्शन, आप उनकी कैप्टेंसी को कैसे रेट करेंगे?
1: देखिए, जिस तरीके की कप्तानी वो करती हुई आ रही हैं वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक, हमने देखा है कि बहुत ही बेहतरीन कप्तानी यहाँ पर की है।
2: हम आपको रोकना चाहेंगे, हम चलते हैं पहले।

0: The final, unbeaten, but beaten by a formidable Indian side by 72 runs. But Sri Lanka certainly can hold their head high with some amazing performance on the day, as I invite Chamari Attapattu for a quick chat. Chamari, not the best of the days when the Indian side started the way they batted. You know, the first thing itself, safely say, that was game very hard to win.
1: Yeah, definitely. Sometimes this is the part of the game. So one team will win, one team will lose. But end of the day, I know we are not playing our best cricket. All three departments, especially bowling, in the power play, we struggle a lot. They are playing really good. But, you know, we will bounce back, because after this we have Asian Games coming up. So we need to improve a couple of areas and we will bounce back.
0: Like the spirit of you, Chamari Attapattu. Just one thing going into the Asian Games, lots of positive take from this tournament, isn't it?
1: Yeah, apart from this game, we played really good cricket throughout this tournament. We beat a couple of teams and today we struggle a little bit, but it doesn't mean we are not good enough. But the thing is, we need to execute our plans and I hope we can bounce back in next series as well.
0: Who are your standout performers in the Sri Lankan side?
1: So I feel a lot of players improve a lot. They are playing really good cricket, and especially Harshita Neelakshi Silva and Chamudi Prabodha. We have good positive things in this tournament, so we carry all these things for next series as well.
0: Certainly lots of positives. Bad luck today, but very well done throughout the tournament, and good luck in the Asian Games.
1: Thank you very much,
0: Chamari. That's Chamari Attapattu Hugh. That's it from the presentation. Back to the comms.
2: देखिए भारत के लिए सिर्फ एक ट्रॉफी की
3: तो ये थी श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टु। एक खास बात जो लतिका देखने को मिली कि जितना मुस्कुराते हुए उन्होंने पूरा टाइम दिखा है उनका चेहरा, और शायद खेल यही सिखाता है आपको। उन्होंने कहा भी कि वी विल बाउंस बैक, तो खेल जीतना तो सिखाते हैं आपको, लेकिन साथ ही हार में भी कैसे आप मुस्कुरा सकते हैं, कैसे आप ग्रेसफुली उस हार को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी आज दिखाया अट्टापट्टु ने।
4: बिल्कुल, और देखिए हर टीम किसी भी टूर्नामेंट में शिरकत करती है तो सिर्फ जीतने के लिए ही करती है, और उस टूर्नामेंट को खेलते हुए पार्टिसिपेट जब वो करती है, दूसरे टीमों के साथ कंपटीशन होता है, तो वहाँ कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिन पे हमारी नज़र नहीं गई होती, और वो जब नज़र जाती है तो उसकी प्रिपरेशन हम करना चाहते हैं। तो कई बार इस तैयारी में और इस प्रोसेस में कप जो है हमसे थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो जब हम नए किसी कंपटीशन की तैयारी, तो उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, बॉलिंग की हो, फील्डिंग की हो, बल्लेबाजी की हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर टीम, चाहे वो भारतीय टीम हो, श्रीलंकन टीम हो, चाहे एशियन की और कोई भी टीम हो, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के गए होंगे। और भारतीय टीम ने कप जीता है, लेकिन एशियन गेम्स को किस तरीके से लेते हैं, वहाँ क्या प्लान्स होंगे, उनके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे जिनका वो जो है जवाब ढूंढ रहे होंगे।
5: जी, तो Chamari Attapattu ने कहा कि वी विल बाउंस बैक इन द एशियन गेम्स। जी हाँ, एशियन गेम्स पर अब नजर होने वाली है, जहां पर क्रिकेट तो हिस्सा होने ही वाला है, साथ के साथ करीब 36 खेलों में भारत के अलग अलग खिलाड़ी शिरकत करते हुए नजर आएंगे, और आकाशवाणी के जरिए हम सब साक्षी बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो मेडल्स का आंकड़ा है वो ट्रिपल फिगर्स में जाएगा। भारतीय टीम ने वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप 2026 को अपने नाम किया, और आपने सुना आकाशवाणी पे सीधा प्रसारण इसका, और इसके बाद जैसा हम कह रहे हैं अब नजरें होने वाली है एशियन गेम्स पर।
3: बिल्कुल, और एशियन गेम्स का फॉर्मेट थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ सीधे क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। 17 तारीख को पाकिस्तान और थाईलैंड के बीच होगा, और दूसरा मुकाबला उसी दिन होगा बांग्लादेश और चाइना के बीच। वहीं 18 सितंबर को इंडिया का सामना होगा जापान से, और श्रीलंका मुकाबला करेगा मलेशिया से। इसके बाद इन क्वार्टर फाइनल्स के जो विजेता होंगे वो सेमीफाइनल में भिड़ेंगे 20 सितंबर को, और ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल मैचेस होंगे 22 सितंबर को। तो उसके लिए हमारी तैयारी, स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं उत्तरा, उसमें कोई खास कमेंट आपका उस स्क्वाड पे, क्योंकि लगभग वही नाम है जो अभी एशिया कप में हमें दिख रहे थे।
4: मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फेरबदल करेंगे भी, और क्योंकि यही टीमें आपको फिर से वहां पे मिलने वाली हैं, और कुल मिला के दो या तीन मैक्सिमम अगर आप फाइनल खेलते हैं तो मैचेस हैं, तीन मैच के लिए आप क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल में बहुत ज्यादा चेंजेस करेंगे नहीं, और करने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये करना चाहते तो किसी यंगस्टर को जरूर चांस दे सकते थे, जैसा हम इस टूर्नामेंट के लिए भी लगातार बोल रहे हैं, पर अब जब स्क्वाड अनाउंस हो चुका है तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं है। पर उम्मीद यही है कि वहां पे भी गोल्ड मेडल आएगा, क्योंकि जो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जितना बड़ा गैप है भारतीय टीम और बाकी टीमों के बीच में, तो गोल्ड से कम जो होगा वो एक तरह से आपके लिए हार के बराबर ही होगा।
5: जी, why fix what is not broken? तो उस स्क्वाड पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन एक स्क्वाड यहां पर भी रहा जिसने आप तक ये प्रसारण पहुंचाया, उसका धन्यवाद करना बहुत बहुत जरूरी है। उत्तरा लतिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
6: थैंक यू सो मच।
5: और मेरी को एंकर मुदिता को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने संचालन करने में मदद की। थैंक यू सो मच मुदिता।
3: शुक्रिया दर्पण।
5: और बिहाइंड द सीन्स हमारी टीम जो बहुत मेहनत करती है, टेक्निकल टीम जयराम, मनोज सिंह, त्रिलोक गुप्ता, राम आशीष यादव का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ के साथ हमारे प्रोडक्शन क्रू का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें आज थे माधवी तिवारी, वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर, एंड ऑफकोर्स द मैन हु रन्स द शो, द प्रोड्यूसर ऑफ दिस प्रोग्राम, शाहनवाज खान, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप आकाशवाणी से जुड़े और साक्षी बने इस एशिया कप वुमेन्स 2026 के फाइनल का। इसी के साथ मैं दर्पण त्रिकिया आपसे विदा लेता हूं, सुनते रहिए आकाशवाणी।
7: एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। रात के 12:21 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।